मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव व FM पर आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

कण कण में समाई है तेरी निर्मल पावन धारा। हर संकट को हरने वाली माँ, तू ही तो है सबका सहारा। इस भंवर में फंसी है नैया, हे विश्वतारिणी, तेरे चरणों में ही मिलता है हमें किनारा।

न जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार का, तेरे मेहर का कोई जवाब नहीं, तेरे जैसा कहीं दीदार नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के कलाकार थे सुखवीर सिंह, हरिहरन, मोहम्मद अहमद व साथी, गोपाल सिंह रागी, राजेंद्र जैन और हेमंती शुक्ला। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अहिंसा परम धर्म, इस विषय पर आज का चिंतन।
1: विश्व के लगभग सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में अहिंसा पर बल दिया है। वास्तव में धर्म का उदय ही मनुष्य में अहिंसा की चेतना के साथ हुआ। आदि मानव असभ्य ही नहीं बल्कि क्रूर भी था। वो हिंसक पशुओं के समान आचरण करता था। आपस में लड़ना और एक दूसरे का सिर काटकर उत्सव मनाना तो उन लोगों का दैनिक कर्म था। उन्हीं में से कोई प्रबुद्ध व्यक्ति पैदा हुआ होगा और उसने आपस में मिलकर रहने की चेतना जगाई होगी। परस्पर आचरण के नियम निर्धारित किए होंगे। आपस में प्रेम भाव से रहो, घृणा मत करो, दया और क्षमाशीलता की भावना उत्पन्न करो, सद्भावना रखो इत्यादि इसी तरह की बातें समझाई होंगी। बस यहीं से धर्म आरंभ हो जाता है और यही ही अहिंसा भी है। आमतौर पर किसी को शारीरिक कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। शारीरिक बल प्रयोग, मारना पीटना या किसी डंडे या हथियार से शरीर पर आघात करना ही आम आदमी के लिए हिंसा है। लेकिन शारीरिक कष्ट ना पहुंचाना तो अहिंसा का मात्र एक अंग है। अहिंसा को तो बहुत ही व्यापक अर्थों में लिया जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें समस्त अध्याय समाया हुआ है। मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना ही संपूर्ण अहिंसा है। न मन में बुरा विचार लाओ, न मुख से कटु वचन बोलो। अगर कोई सत्य भी कटु है तो उसके कहने से परहेज करो, क्योंकि उसके बोलने से दूसरे के मन को कष्ट होता है। कर्म भी कल्याणकारी होना चाहिए। ऐसा कर्म मत करो जिससे दूसरे का अहित होता हो। इस प्रकार अहिंसा संपूर्ण सांस्कृतिक एवं नैतिक अनुशासन है जो मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, कुविचार मात्र हिंसा है, उतावली हिंसा है, जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा करना भी हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा जाना हिंसा है। अहिंसा में प्रेम, सहानुभूति, दया और निर्भयता के साथ उपवास, ईश्वर प्रार्थना और प्रायश्चित भी आते हैं। अहिंसा एक ऐसा सर्वव्यापी सिद्धांत है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सार्थक है। जीवन की जिस दिशा में इसका लोप हो जाता है उसी दिशा में मारकाट, अराजकता, अव्यवस्था, नैतिक पतन और शोषण की प्रक्रिया फैल जाती है। मानव मूल्य कुचले जाने लगते हैं और समाज में कमजोर वर्ग किसी ना किसी प्रकार की दास्ता में धकेल दिए जाते हैं, चाहे वो आर्थिक दास्ता हो या राजनीतिक या फिर सामाजिक अथवा धार्मिक। महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रयोग लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में किया है। राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह तथ्य कि दुनिया में अब भी इतने अधिक लोग जीवित हैं, ये दिखलाता है कि दुनिया शस्त्रों की शक्ति पर नहीं बल्कि सत्य और प्रेम की शक्ति पर आधारित है। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी ने शोषण संस्थाओं के साथ असहयोग करने और कुटीर उद्योगों पर जोर देने का उपदेश दिया है। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी एवं साम्यवादी व्यवस्था को हासिल करने के लिए वर्ग संघर्ष, युद्ध और रक्तपात को आवश्यक बताया था। गांधी जी की धारणा थी कि जो समाजवाद हिंसा से अर्जित किया जाएगा वो अंततः कभी मानव के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता, उसमें सदा हिंसा ही लिपटी रहेगी। सच्चा और जीवन उपयोगी समाजवाद तो वो ही हो सकता है जो प्रेम और सद्भावना से लाया जाए। वास्तव में प्रेम और अहिंसा का टूट संबंध है और प्रेम ही मानव की समस्त स्वस्थ भावनाओं को पुष्ट करता है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, यही अहिंसा का सार है।
0: अहिंसा परम धर्म। इस विषय पर अभी आपने सुना आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए आंख संबंधी समस्या और घरेलू नुस्खे, इस विषय पर ये जानकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश में। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आंख, नाक और कान मनुष्य की अत्यंत महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। इनमें थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न होने पर वह असामान्य हो जाता है, अतः इन अंगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके प्रति लापरवाही बरतने पर इन अंगों के रोगग्रस्त होने की संभावना होती है। आंख के रोगों के अंतर्गत आंखों में दर्द, सूजन और जलन, मोतियाबिंद, गुहेरी, रतौंधी, कमजोर दृष्टि एवं रोहे आदि आते हैं। आंखों में दर्द, सूजन और जलन आदि में घरेलू उपचार इस प्रकार किया जा सकता है। आंखें दुखने पर एक तोला हल्दी को एक पाव पानी में औटाकर कपड़े से छानकर इस जल के सहने योग्य हो जाने पर बूंद बूंद करके आंखों में टपकाएं। इससे आंखों की जलन एवं सूजन जल्दी मिट जाती है। आंखों की सूजन अथवा लाली में धनिया कूटकर पानी में उबाल लें, फिर उस पानी को कपड़े से छानकर आंखों में टपकाएं। इससे लाली मिटती है, दर्द कम होता है और आंखों से पानी बहना बंद हो जाता है। त्रिफले का चूर्ण घी और शहद के साथ लगातार कुछ दिन खाने से आंखों का दर्द, जलन, सूजन और पानी बहना आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। दही की मलाई का लेप पलकों पर करने से आंखों की सूजन, जलन दूर हो जाती है। हल्दी, फिटकरी और इमली के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर पीस लें, फिर उसकी पुल्टिस बनाकर आंखों पर सिकाई करें। आंखों की जलन में काफ़ी फायदा होता है। गुलाब जल में फूली फिटकरी डालकर आंखों को धोने और बूंद बूंद कर आंखों में टपकाने से दर्द, जलन और सूजन में लाभ मिलता है। गुहेरी, आंखों में गुहेरी होने पर इस प्रकार उपचार करना चाहिए। रसौत घिस कर लगाने से आंखों की गुहेरी जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा छोटी हरड़ को गुलाब जल में घिस कर लेप करने से गुहेरी की सूजन और दर्द शीघ्र मिट जाता है। अरहर की दाल को पानी के साथ घिस कर लगाने से गुहेरी ठीक हो जाती है। रोहे, रोहे नेत्रों का सबसे हानिकारक रोग है। प्रारंभ में इसका कुछ पता नहीं चलता और छोटे बड़े लोगों को नेत्रहीन बना देता है। इस रोग का प्रारंभ आंखें दुखने के साथ होता है। आंखें लाल हो जाती हैं और इनसे पस निकलने लगती है। आंखें साफ न करने से पस आंखों के पास लगा रहता है और जीवाणुओं के संक्रमण से रोग अधिक बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप आंखों से अधिक शोथ होता है, साथ ही पलकों में भीतर की ओर दाने निकल आते हैं। रोहे, जिन्हें पोथकी भी कहते हैं, एक संक्रामक रोग है। घर में किसी एक को हो जाने पर दूसरे स्वस्थ लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। परिवार में सब इसे आंख दुखना ही समझते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पलकों में शोथ हो जाता है, फिर नन्हे नन्हे दाने निकल आते हैं, आंखें खोलने में बहुत कष्ट होता है। रोहे की समस्या होने पर उपचार इस प्रकार किया जा सकता है। रात्र को त्रिफला यानी हरड़, बहेड़ा और आंवला पानी में भिगो कर रख दें। प्रातःकाल उठने पर कपड़े से छान कर उस जल से नेत्रों को साफ करें। इससे नेत्रों की गंदगी नष्ट होती है, रोहे समाप्त होकर नेत्र ज्योति तीव्र हो जाती है। फिटकरी भून कर पीस कर गुलाब जल में घोल कर रख दें। जब दोनों अच्छी तरह मिल जाएं, तो प्रतिदिन सुबह शाम नेत्रों को शीतल जल से धोकर एक एक बूंद उक्त मिश्रण डालें। इससे नेत्रों की लालिमा व शोथ नष्ट होकर रोहे ठीक हो जाते हैं। आंवले के स्वरस को जल में मिलाकर नेत्र साफ करने से गंदगी दूर होती है और रोहे ठीक हो जाते हैं। सहजन के पत्ते को लेकर उसका रस निकालकर शहद और सेंधा नमक मिलाकर नेत्रों में लगाने से शोथ, लालिमा नष्ट होती है तथा रोहे ठीक हो जाते हैं। तो श्रोताओं, इस प्रकार घरेलू उपचार के माध्यम से हम नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं और आंखों से संबंधित कुछ समस्याओं का निदान कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस यहीं तक। नमस्कार।
0: आंख संबंधी समस्या और घरेलू नुस्खे, इस विषय पर अभी आपने सुनी ये जानकारी। कार्यक्रम था स्वास्थ्य संदेश। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आप आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर यानी 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। सवेरे 7 बजे समय रहेगा कार्यक्रम लोक रंग का। आज कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे मदन मोहन ब्रजवासी के कुछ लोकगीत।

सुबह 7:31 पर होगा फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह 9:25 पर सुनिएगा गौरव भारत देश के इस कार्यक्रम में सूफी अंबा प्रसाद की गौरव गाथा। 9:30 पर सुनना ना भूलिएगा उर्दू प्रोग्राम।

आज दिन के 11 बजे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत आप सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष इस विषय पर एक भेंट वार्ता लोकप्रिय उद्घोषक श्री कमल शर्मा से मनोज कुमार की ये भेंट वार्ता। समय याद रखिए दिन के 11 बजे 11:30 पर होगा श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भवन। 12:10 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। एक ओर श्री राम तो दूसरी ओर रावण के जयघोष के साथ दोनों ओर के वीर सेनानी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। वानर और भालू भीमकाय शिलाखंड किले पर फेंकते हैं, राक्षसों के पैर पकड़ उन्हें धरती पर पटक देते हैं। श्री राम के प्रताप से वानर सेना राक्षसों के झुंड के झुंडों को मसल कुचल डालती है और चारों ओर राम का जयघोष गूंज उठता है। राक्षसों के समूह युद्धस्थल से भाग खड़े हुए। नगर में स्त्रियों, बच्चों और विकलांगों का क्रंदन सुनाई देने लगा। नगर निवासी इस विपत्ति के लिए रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना के पस्त होकर युद्धभूमि से भागने का समाचार सुना तो भागते सैनिकों को रोक चेतावनी दी, जो भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर भागेगा मैं अपनी तलवार से उसे मार डालूंगा। मेरे दिए हुए भोजन पर पलने और भोग विलास करने के बाद अब तुम लोगों को प्राणों का मोह हो गया है। रावण से अपनी भर्त्सना सुनकर राक्षस योद्धा एक बार फिर युद्ध में आ डटे। सोचा, रावण के हाथों मरने की अपेक्षा लड़ते हुए शत्रु के हाथों मरना ही श्रेयस्कर है। नए उत्साह के साथ राक्षसों ने वानर सेना को त्रस्त कर दिया। अब भयभीत वानर भागने लगे। जिस समय हनुमान ने अपनी सेना में भगदड़ का समाचार सुना उस समय पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से उनका युद्ध हो रहा था। द्वार तोड़ना कठिन लग रहा था। हनुमान को अतिशय क्रोध हो आया। काल की भांति गर्जन करते हुए एक भीमकाय शिलाखंड लेकर वे लंका के किले पर जा चढ़े। फिर मेघनाथ के रथ को सारथी समेत छिन्न भिन्न कर दिया और लात से मेघनाथ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो धराशायी हो गया।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिझा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति इष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षी विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षित रूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। आज कार्यक्रम में सुनिए मदन मोहन ब्रजवासी के कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग, जिसमें आज आपने सुने मदन मोहन ब्रजवासी के कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वागथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल नमस्कार ये आकाशवाणी है 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:18 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
4: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
3: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता क्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208

0: करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
1: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
1: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
3: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
4: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
5: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
7: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
8: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे का।

श्रोताओं, एक बार पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। और आज मैं हूं आपका साथी अंकुर राजपूत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह का वक्त यानी कि अपने अपने कामकाज में इंसान लगा होता है, तैयारियां होती हैं दिन की शुरुआत की। कोई ऑफिस जाने की तैयारी में, कोई अपनी दुकान जाने की तैयारी में, हर इंसान किसी न किसी काम में मशरूफ रहता है। और सुबह के वक्त अक्सर देखा गया है कि हम रात में कुछ सामान या कोई ऐसी चीज़, कोई कागज़ या कुछ भी ऐसा जो हम सुबह हमें चाहिए होता है, हम रख कर भूल जाते हैं और सुबह ढूंढते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती। ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है ना श्रोताओं। तो अगर चीज़ों को रखकर आप भी भूल जाते हैं तो स्मार्ट टैग्स उपयोगी साबित होते हैं। आज आपको हम बताएंगे कि ये स्मार्ट टैग्स क्या है और कैसे काम करता है। श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि आप किसी दूसरे शहर या देश की यात्रा पर गए हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चलता है कि सूटकेस आपके साथ पहुंचा ही नहीं, या फिर ऑफिस जाने की जल्दी में घर की चाबियां कहीं भूल गए। ऐसी स्थिति न केवल परेशानी पैदा करती है बल्कि समय और पैसा दोनों का ही नुकसान कर देती है। तकनीक ने इस समस्या का समाधान भी खोज लिया है। जैसे स्मार्ट टैग या ब्लूटूथ ट्रैकर कहा जाता है, छोटे आकार के ट्रैकिंग डिवाइस लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हाल ही में दो कंपनियों ने स्मार्ट टैग बाजार में उतारे हैं, जिनमें से खोई वस्तुओं को ढूंढने में मदद मिलती है। ये होता क्या है? ये छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे किसी वस्तु के साथ जोड़कर उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। ये ब्लूटूथ तकनीक की मदद से काम करता है और स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट रहता है। आकार में ये एक सिक्के या फिर छोटे की चेन जैसा है। इसे चाबियां, बैग, वॉलेट, लैपटॉप बैग, कैमरा बैग, ट्रॉली बैग्स या अन्य कीमती सामान के साथ लगाया जा सकता है। यदि वो वस्तु कहीं खो जाती है तो मोबाइल ऐप से लोकेशन देखी जा सकती है। और श्रोताओं, इन दिनों इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी खासियत है कि ये केवल सामान ही नहीं बल्कि चेतावनी भी देते हैं कि सामान पीछे छूट रहा है। और यही कारण है कि स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा लोग, बिजनेस ट्रैवलर और वरिष्ठ नागरिक भी इनका तेजी से उपयोग कर रहे हैं। स्मार्ट टैग जो है वो ब्लूटूथ सिग्नल भेजते रहते हैं और स्मार्ट फोन या अन्य सपोर्टेड डिवाइस तक पहुंचाता है, तो उसके ज़रिए टैग की लोकेशन नेटवर्क पर अपडेट हो जाती है। तो श्रोताओं, है ना ये स्मार्ट टैग बड़े कमाल की चीज़। तो अगर आप भी इस तरह से अपना कुछ सामान रखकर भूल जाते हैं तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा।

जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बनें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में, और मैं हूं आपका साथी अंकुर राजपूत। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी अपने सुरमई सफर के 90 वर्ष पूर्ण करने वाला है, तो इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री भलेंदु मिश्र जी की ये विचार, जो कि आकाशवाणी रामपुर से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आप एक संस्कृत के अध्यापक हैं। तो आइए सुनते हैं आपके विचार।

मेरा नाम भालेंदु कुमार मिश्र है और मैं एक अध्यापक हूँ। सर्वप्रथम आकाशवाणी को अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण करने की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। अगर मैं बात करूँ आकाशवाणी के साथ अपने जुड़ाव की, तो मैं आकाशवाणी के साथ बचपन से ही जुड़ा हूँ। उस समय मैं कलियां कार्यक्रम में प्रतिभा

संस्कृत में समाचार का प्रसारण अवश्य सुनता था। वर्तमान में मैं संस्कृत विषय का शिक्षक हूँ और इस दिशा में बढ़ने के लिए मुझे आकाशवाणी से प्रेरणा मिली। रामपुर आकाशवाणी से फिर से जुड़ने का अवसर मुझे तब मिला जब मैं रामपुर में नियुक्त हुआ और श्री राजेश श्रीवास्तव जी ने मुझे परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम में वार्ता के लिए बुलाया। इसके बाद मुझे अनेक विषयों पर संस्कृत वार्ता के लिए बुलाया गया। आकाशवाणी संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए बहुत प्रयास कर रही है, जिसके लिए आकाशवाणी प्रशंसा की पात्र है। मातृभाषा हिंदी एवं संस्कृत को उसका गौरव वापस प्रदान करने का कार्य आकाशवाणी द्वारा किया जा रहा है। एक श्रोता के रूप में मैं आकाशवाणी से निरंतर जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हूँ। आज भी सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य मैं रेडियो ऑन करने का करता हूँ और कार्यक्रम सुनते हुए ही विद्यालय जाने के लिए तैयार होता हूँ और उनके कार्यक्रम से ही मैं तैयार होता हूँ और घड़ी देखने की आवश्यकता कम होती है। सूचना क्रांति के इस युग में जब गलत सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है, ऐसे में खबरों की विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है आकाशवाणी परिवार। मेरे परिवार में सभी लोग आकाशवाणी के कार्यक्रमों को बड़े ही आनंद से सुनते हैं। आकाशवाणी हमारा परिवार है और मैं आकाशवाणी का परिवार बनकर गौरव का अनुभव करता हूँ। एक बार फिर आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने की शुभकामनाएं और ये मेरा विश्वास है कि आकाशवाणी के साथ हमारा ये सफर निरंतर चलता रहेगा।

श्रोताओं, अभी आपने जाने भलेंदु कुमार मिश्र के विचार। आप एक संस्कृत के अध्यापक हैं और वाकई हर कोई यही चाहता है कि ये जो आकाशवाणी है इसका ये सफर यूं ही निरंतर चलता रहे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाने से याद आया कि आगे बढ़ना, तेज चलना, दौड़ना, भागना या गाड़ी चलाना, ये सब आगे बढ़ने से संबंधित है। तो जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि दौर बदलता जा रहा है, तो नई नई तकनीकें अपनी जगह लेती जा रही हैं, पुरानी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। अब नए दौर में ईंधन भी हर किसी के बस की बात नहीं कि वो ईंधन के जरिए जो है अपना काम कर सके, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी की कीमतें धीरे धीरे बदलते दौर में बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे समय में ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भरोसेमंद बनते जा रहे हैं। ये केवल भविष्य की उम्मीद नहीं, बल्कि आज की जरूरत बनती जा रही है। बेहतर होती टेक्नोलॉजी के साथ बैटरी संचालित वाहनों के सही रखरखाव, मेंटेनेंस और सुरक्षा के आवश्यक उपायों के बारे में भी जानना और समझना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी अब काफी बढ़ते जा रहे हैं। ग्राहकों के बीच बढ़ती स्वीकार्यता के चलते लोग बैटरी से चलने वाली कारों का रुख कर रहे हैं। ये रास्ता सस्ता होने के साथ साथ

कार्बन फुटप्रिंट और शहरी प्रदूषण के बचाव का एक बेजोड़ विकल्प भी है। बीते मई महीने की बात करें अगर हम, तो देश में बिकने वाली कुल पैसेंजर गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा लगभग 7% तक पहुंचा है श्रोता। गत वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 4.7% पर था। बदलाव का केवल कारों में ही मामले नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी ये बदलाव हो रहा है। मई में अगर देखा जाए तो कुल बिक्री हिस्सेदारी 8.9% तक पहुंच गई। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक भरोसेमंद विकल्प बन रही है। अच्छा श्रोताओं, एक चीज और, जैसे जैसे इंसान नई तकनीकों को अपनाता है तो कुछ ना कुछ उसमें कठिनाइयां जरूर आती हैं। अब उन चीजों को कैसे ध्यान में रखा जाए, तो आइए बात करते हैं इसी बारे में। थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। ईवी का जो रखरखाव है वो अलग तरह से किया जाता है। रोजमर्रा के उपयोग के लिए अपनी गाड़ी की बैटरी को 20-80% तक चार्ज रखें और बार बार गहरे डिस्चार्ज से बचें और बैटरी को इलेक्ट्रिक सिस्टम और हर 6 महीने में निरीक्षण करवाएं, ना केवल जब कुछ गलत हो जाए। जहां भी संभव हो वाहन को लंबे समय तक सीधी धूप से दूर रखें और सुनिश्चित करें कि बैटरी पैक का कूलिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। टायर प्रेशर, ब्रेक रिजनरेशन, कैलिब्रेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट महत्वपूर्ण है। आखिर ये बैटरियां खराब क्यों होती हैं ईवी की? भारतीय परिस्थितियां ईवी बैटरियों के लिए वास्तव में कठोर हैं, खासकर जब हम 45°C से अधिक तापमान, अत्यधिक धूल भरे वातावरण, सड़क की असामान्य सतहों और ऐसी जगहों पर रुक रुक कर चलने वाले ट्रैफिक की बात करते हैं, जो बार बार चार्ज डिस्चार्ज चक्र का कारण बनता है। लिथियम आयन बैटरियां जो अधिकांश ईवी को चलाती हैं, लंबे समय तक गर्मी में रहने से बेहतर प्रदर्शन नहीं करती। इसके समाधान के लिए हमें भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से इंजीनियर की गई बैटरियां, रसायन और थर्मल प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता है। ईवी बेहतर क्यों है? क्योंकि शहरी प्रदूषण को कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सहायक है, ईंधन लागत की चिंताओं का दबाव नहीं है, बेहतर टार्क से मिलता है अच्छा अनुभव और रख रखाव में मेंटेनेंस में अपेक्षाकृत सहजता रहती है। तो श्रोताओं, यदि आप भी परेशान हैं ईंधन के बढ़ते दामों से, तो अपनाइए ईवी को और वातावरण को भी रखिए शुद्ध, क्योंकि जब हमारी गाड़ी हम अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे तो वो अच्छे से ही चलेगी।

श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार मासूम बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में बच्चों द्वारा झेली जा रही पीड़ा, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण, इनको स्वीकार करना और बच्चों को अधिकारों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना। इस दिवस की शुरुआत 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। मूल रूप से ये 1982 के लेबनान युद्ध में इजरायली आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसका विस्तार वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार के बाल दुर्व्यवहार को शामिल करने के लिए किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाल अधिकारों पर कन्वेंशन CRC लागू किया, जिसके तहत बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त है। तो श्रोताओं, यदि आपके आसपास भी इस तरह के कुछ बच्चे हैं जो आक्रामकता का शिकार हैं, तो आप भी आगे आइए, उनकी सहायता कीजिए।

श्रोताओं, अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि कार्यक्रम को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे से अपने साथी अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
8: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
9: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म्स से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
8: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
10: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
8: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
11: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी

0: अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ता ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री

0: वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, खवातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की सीएमडी कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीकेकार आसान और शफाफ है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दा और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: इस पांच रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुवत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
3: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज लगी जबरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिशजदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मारगांव में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है, जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
3: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर

श्रोताओ, 102.9 मॉर्निंग हिट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुर राजपूत। कार्यक्रम में पहला गीत बॉर्डर 2 फिल्म से, आवाजें हैं सोनू निगम और पलक मुछल की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स अपने रेडियो साथी अंकुर राजपूत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत दीपाली सेठ और शाशा की आवाजों में, फिल्म का नाम है तेरा क्या होगा लवली।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। आपकी
1: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है 102.9 मॉर्निंग हिट्स में। कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब सुनिए अरिजीत सिंह को। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत उदित नारायण और जावेद अली की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है पिंटू की पप्पी।

रखते हो जिगर तो इश्क करो, खुद को मिटा।

उदित नारायण और जावेद अली की गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम से अपने साथी अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

102 एंड 0.9 मॉर्निंग हिट्स। अभी आपने सुना फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का।
1: मई महीने के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की गई। उद्घाटन अवसर पर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिधि सेन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धारा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
0: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11-11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि की प्रतीकात्मक

0: पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज के SB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक, औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारा, वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य रिपीट जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉक वार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में। अपर जिलाधिकारी जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छवि लाल ने बताया कि
1: समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: थे कार्यक्रम जिले की हलचल।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। अब सुनिए गौरव भारत देश के इस कार्यक्रम में सूफी अंबा प्रसाद की गौरव गाथा।

0: करविहीन अंबा प्रसाद ने गोरों प्रति भड़काए, जेल गए, संपदा छिनाई, युद्धकाल ईरान बिताए, फौजी गोली मार न पाए, प्रभु में सूफी छुप जाते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। मुरादाबाद निवासी एक क्रांतिकारी जिसे सूफी कहा गया, अंबा प्रसाद मुरादाबाद के निवासी थे। 1858 में जन्म के समय दाहिना हाथ कम था, लेकिन फिर भी शरीर में पर्याप्त सक्रियता और शक्ति की संपन्नता थी। बाल्यावस्था में लोग इन्हें भाई कहते थे। क्रांति के क्षेत्र में आने के बाद उनका नाम उर्दू, अरबी व ईरानी भाषा में कौशल्य देखकर सूफी अंबा प्रसाद के रूप में प्रचलित हो गया। पहले उनका नाम अमृतलाल था। अंबा प्रसाद में बचपन से ही भारत माता के प्रति अमित गौरव का भाव निहित था। जालंधर से FA पास करने के बाद वकालत पास की, किंतु वकालत कभी की नहीं। भोपाल में अंग्रेजों के विरुद्ध अमृत बाजार पत्रिका में लेख लिखे। लेखक से पूछताछ कर रेजिडेंट ने पकड़वाना चाहा, लेकिन अंबा प्रसाद हाथ न आए। सूफी अंबा प्रसाद मुरादाबाद आ गए और उर्दू का एक समाचार पत्र निकालकर अंग्रेजी शासन की आलोचना करने लगे। शासन ने उन्हें विद्रोही घोषित कर दिया, गिरफ्तार भी करवा लिया गया। 1.5 वर्ष जेल में रहकर मुक्त हुए, लेकिन उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने तब उनकी संपत्ति जब्त कर ली, 6 वर्ष की जेल की सजा दी। जेल में अनेक कष्ट जैसे भोजन पानी का न मिलना, यातनाएं आदि सहे, लेकिन सूफी अपने विचारों पर अडिग रहे। देशभक्त मंडल के सदस्य बनकर पर्वतवासियों में राष्ट्रभावना भरने के लिए जुट गए। सन्यासी का रूप धारण कर लिया। भारतीयों की मुक्ति के लिए ईरान गए। ईरान में भारतीय क्रांतिकारी खोजने लगे। तभी अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लेना चाहा, किंतु सरदार अजीत सिंह ने उन्हें तेल की टंकी में छुपाकर अन्यत्र भेज दिया। 1915 में सूफी अंबा प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु जेल में इन्हें काट काट कर मार डालने के इरादे को सूफी जी ने प्राणायाम द्वारा प्राण त्याग कर निष्फल कर दिया। आज भारत के गौरव सूफी जी ईरान तक में पूछे जाते हैं।
1: सूफी अंबा प्रसाद की गौरव का था। अभी आपने सुनी कार्यक्रम था गौरव भारत देश के। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवाज। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

0: रही है।
1: बिल्कुल, तालीम मुतासिर हो रही है, लेकिन जब बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो वहाँ पर यानी माओं को या अपने जो गार्जियंस हैं उनको वहाँ पर मौजूद रहना, जब बच्चा क्लास ले रहा है मुतासिर हो रही है, क्योंकि स्कूल जाता है बच्चा, उसको स्कूल का माहौल मिलता है, वहाँ की आबोहवा मिलती है, दोस्तों का और जो टीचर्स का माहौल होता है वो मिलता है, वो भी एक ज़रूरी होता है। अब अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है जो ऑनलाइन क्लास लेना है मोबाइल के ज़रिए, तो वो वहाँ पर माँ बाप की यानी गार्जियंस की जिम्मेदारी होती है कि वो मौजूद सामने रहें बच्चे को, तो वहाँ पर हमारी तालीम मुतासिर नहीं होगी और काम भी हो जाएगा आपका, और जो होगा वो बच्चा कुछ सीख भी लेगा उसमें।
0: फरीद भाई, आपने बहुत अच्छे मशवरों से हमारे सामीन को नवाजा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका भी।
0: सामीन, अभी आपने बच्चों पर मोबाइल के इस्तेमाल के गलत असरात के बारे में मालूमात हासिल की हमारे ओबी प्रोग्राम के तहत। आइए बज़ में इन अहम मालूमात के बाद कुछ मौसीकी की और नज़्म की जुगलबंदी के साथ गज़ल का लुत्फ़ उठाया जाए। तो सामीन, समात करिए आबिदा परवीन की दिलकश आवाज़ में ये गज़ल।

0: आपदा परवीन की खूबसूरत गज़ल अदायगी के साथ ही आज का ये उर्दू प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। अब अपनी मेज़बान मारिया खुशनूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
1: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश,
1: हमारा भारत देश।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमारे पास भेजी है हमारे आप सभी साथियों ने। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज, भैया दादा और इन्हीं के साथ हैं। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया, कमला महोबिया। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यासफुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा, आजमीन, गुड़िया, अब्दुल, बाबान जाना। इसी गीत की फरमाइश भेजी है बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनीकर और धीरज सवासेरे। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहार का, हार्दिक, वंश बत्ता। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। मालेगांव से दत्ता घायाल, सुनीता भाई घायाल, सानिका घायाल, गजानन घायाल। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल, कुमारी सुजाता पोहरकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जागुताई, साक्षिताई, संचित, आरेगांव, प्रथमेश देशमुख, मोताला, स्वामी देशमुख, प्रणाली देशमुख और इन्हीं के साथ हैं सानवी देशमुख। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और असमानाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राय, आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, लल्लन, ढोली, सकरा और जयंत बैरागी। इसी गीत को सुनना चाहा है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन, वसीम अक्रम, आरिज शमीम, रुबीना, नदीम, अमन, पूनम, चीना, बच्चू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। इसी गीत की फरमाइश भेजी है महाराष्ट्र हिंगोरी से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े ने। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है प्यार का साया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे

0: हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहणकर रही श्रीमती सरिता गवाहणकर प्रिंस एकांश गवाहणकर, बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शलेश श्वेता सुमित गवाहणकर और कुमारी धोनी गवाहणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख, करूल अमरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शुएब खान और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम। इसी गीत को सुना चाहा है मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही शादाब राही महताब निशा सिकंदर राही साहिल अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, बाग छोटे साहब रामपुर से नालापार से नवाबुद्दीन निजामुद्दीन मोहम्मद जमालुद्दीन सादिया अक्सा और हमाद। इसी गीत को सुनना चाहा है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करघना बरेली से बिनी सिंह सागर पन्नीलाल सागर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश सागर राजेश रूबी एकता दिव्या रचना भारती ओमवती भारती खनक शगुन सारांश आयांश अदिति वर्मा शिवांश प्रथम सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग आशु नारंग पार्थिव सोनाली कृषिव और इनके परिवार के सभी सदस्य। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य सुंदर देवी मौर्य प्रकाश रिंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य। इसी गीत को सुनना चाहा है मलौट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धर्मवीर धर्मपाल वीर सिंह लाठी विवान लखविंदर संधु महावीर गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी ने। इसी गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा दतरंगी से भागवत वर्मा लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू चरडोंगपुरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जेतिक बिरक मीका बिरक और इनके परिवार के सभी सदस्य। सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर विंदे सीमाताई डोंगर दिवे रीमाताई डोंगर दिवे दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे। इसी गीत को सुनना चाहा है बीड शहर से प्रकाश पगारिया पराग पगारिया प्रदीप पगारिया केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल ने। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हमराही का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। गांधी समाधि रोड रामपुर से अफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की, बुशरा खान, आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से हैं गजन खां, शमा परवीन, शमशद अली अज़म, गुलफ शाह, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से डॉक्टर शाहनवाज़, एडवोकेट वारिस अली, इस्लामुन्निशा शकील अहमद, डॉक्टर सलीम अहमद। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईम बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना मुन्नी, पवित्रा, आकांक्षा, आंचल, अजय, आकांक्षा, धन्यवाद। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशां, दानिश, आदिल, शफक और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, PWD वाले, शाहिदा परवीन, इमरान, रेहान, इकराम खां, समीना बी, आसिफा और शबीना। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजबी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला शेख, शमा परवीन, अलकमर बेगम, मिर्जा नसरीन बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमर खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके परिवार के सभी सदस्य। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेतराम, भूविंद्र साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश की है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रीना रानी, महिमा, नीतू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की युगल आवाजों में फिल्म वो कौन थी का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली गीत की फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। अजीतनगर मलौट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत कौर, गगनदीप कौर और

मैं हैं रौनकदीप कौर। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम हर नगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम, सलमान, शाहरुख और आरिश खान ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिन्नौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। बलवंत कुमार वर्मा, राजू पाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल वर्मा, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा ने ये फरमाइश भेजी है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, नाज प्रवीण, चांदी नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म लैला मजनू में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। अब अगर हम

आपके अनुरोध पर अभी आपने सुना फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,

0: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
0: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
0: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूमि कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है।
0: जी
1: तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
0: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
0: जी
1: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है,
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
0: जी
1: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर,
4: क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ अनुष्का, जिशा,
4: सर।
5: तुम दोनों आ जाओ अंदर आ जाओ शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
6: जी वही।
4: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
6: जैसे?
5: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
6: भरत?
4: भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
6: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
5: हाँ।
6: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
6: अच्छा।
5: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
4: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
5: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
6: वो क्या सर?
5: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिदू या हिंदू कहा है।
4: फारसियों ने सिंधु को हिदू या हिंदू कहा है,
6: भला ऐसा क्यों?
5: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
6: अच्छा।
5: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
6: हाँ, ऐसा कैसे?
5: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
6: ओ।
5: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
6: हिंदू।
5: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
6: तो फिर?
5: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
5: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
4: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
5: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
6: सर, ऋग्वेद,
4: महाभारत,
6: विष्णु पुराण।
5: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
6: अच्छा
5: हाँ।
4: सर आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
5: बिल्कुल,
4: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
5: देखो पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
6: अच्छा
5: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत

0: आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष।

0: दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
2: जी
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
2: मुझे मिल गया।
1: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
3: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं,
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
1: राख?
2: उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है, आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं।
5: अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
7: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
7: हाँ आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
8: भाई साहब हट जाइए।
7: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
5: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
7: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। हाँ? वो देखो टोकरे में। हाँ
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो और साथ में एक बत्तख भी है।
7: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ? स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है
7: और, हाँ? और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
7: कमाल कर दिया बच्चों ने।
5: ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
5: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
7: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो, गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
5: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
7: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
5: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
8: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।

उमंग, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है और इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 11 बज रहे हैं और ये समय है हमारे अगले कार्यक्रम धरोहर का। आज धरोहर के अंतर्गत आपको हम सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भेंटवार्ता। आकाशवाणी की दुनिया के आवाज़ के जादूगर कमल शर्मा से बातचीत की है मनोज कुमार ने। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार। विशेष कार्यक्रम 90 साल के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओं, आकाशवाणी का 90 साल का सफर स्वर्णिम सफर रहा है और इस स्वर्णिम सफर के हमराह रहे हैं आप और हम। श्रोता साथियों, आपका साथ न मिलता, आपका प्यार न मिलता तो सफर बीच में भी छूट सकता था। सच में बहुत प्यार करते हैं आप आकाशवाणी से, यहाँ से प्रसारित होने वाले हर एक कार्यक्रम से, यहाँ के प्रस्तुतकर्ताओं से, और कुछ प्रस्तुतकर्ताओं ने तो बहुत ही प्यार बटोरा है आप सबका, या यूं कहें कि आप दिल से चाहते हैं उन प्रस्तुतकर्ताओं को। उन्हीं में से एक आवाज है जो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की आवाज है, जिसे लाखों करोड़ों श्रोताओं ने पसंद किया। उनकी आवाज के दीवाने रहे हैं श्रोता, आज भी ढूंढते हैं कमल शर्मा जी की आवाज को। कार्यक्रम में आज बात करेंगे, उनके दिल की टटोलेंगे और कुछ अपने मन की कहेंगे, उनसे पूछेंगे कुछ सवाल विविध भारती मुंबई से सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री कमल शर्मा जी के साथ।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: मनोज जी नमस्कार, और तमाम जो सुनने वाले हैं उन सभी साथियों का भी अभिनंदन। उन सबको मेरा नमस्कार।
0: सर, इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों करोड़ों श्रोता आपको हमेशा सुनना चाहते हैं रेडियो पर, लेकिन ये भी सच है कि जो एक बार सरकारी सेवा में आता है तो सेवानिवृत्त भी होता है। आपकी
1: जी,
0: सेवा का कितना समय रहा आकाशवाणी में?
1: देखिए, मैं 3 साल तो कैजुअल में आया और नियमित सेवा करीब 34 बरस की रही। उसमें मेरा आकाशवाणी रायपुर का कार्यकाल और जो मैंने कार्यकाल यहाँ विविध भारती के मुंबई केंद्र पर पूरा किया, दोनों को मिला दें तो करीब 34 बरस का कार्यकाल होता है रेडियो का।
0: जी
1: और सबसे मैंने वहां बहुत काम किया, आकाशवाणी रायपुर के युवाणी विभाग के, और डिजाइन भी किए, बहुत सारे कार्यक्रम उसके लिए डिजाइन किए। फिर 1992 में मैं यहाँ आ गया। वहां मैंने 23 दिसंबर 1983 को मैं नियमित हुआ और फिर अप्रैल में यहाँ आ गया 1992 में।
0: जी अगर बात करें सर, आकाशवाणी में आने की शुरुआत कैसे हुई आपकी? कैसे चाहा आपने, कैसे दिल में आया कि आकाशवाणी में सफर शुरू किया जाए?
1: देखिए, आकाशवाणी में आने से पहले हम लोग रेडियो तो सुनते ही थे। रेडियो में बहुत सारी आवाजें जो हैं दिल को बड़ी छूती थी। मेरी बड़ी बहन जो थी वो दूरदर्शन में थी, और हमारे घर में सबसे पहले रेडियो पर आने की शुरुआत मुझसे 2 साल बड़ी बहन है मेरी, उन्होंने, तो उन लोगों ने तो इंस्पायर किया। इसके अलावा मैं चूंकि थिएटर करता था, साहित्यिक गतिविधियों से शहर की जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो थे उसमें वो रेडियो में काम करने वाले लोग भी थे, तो किसी ना किसी के जरिए खबर हो जाती है, आपको लोग प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो इस तरह से मुझे आकाशवाणी रायपुर से जुड़ने का मौका मिला, ये कहने की नैमित्तिक कॉम्पियर के रूप में, उद्घोषक के रूप में।
0: जी
1: तो उसके बाद में फिर वहीं पर एक नियमित पद निकाला गया, तो वो था युवाणी विभाग का,
0: जी
1: उसमें कनिष्ठ जो है कॉम्पियर उद्घोषक के रूप में वो पद था। तो मैंने उसके लिए रिटर्न एग्जाम दिया, मेरा ऑडिशन हुआ और फिर वो पर्सनल इंटरव्यू हुआ, और कहते हैं मेरिट के बेस पे वो सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वहां ज्वाइन कर लिया।
0: बिल्कुल, बहुत ही यादगार आपका वो पल रहा होगा जब आप आकाशवाणी में पहली बार पहुंचे और माइक्रोफोन के सामने बैठे।
1: उन दिनों आकाशवाणी रायपुर के जो प्रभारी हुआ करते थे सुरेश पांडे जी,
0: जी
1: बहुत हिंदी के परम विद्वान, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वो, और उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। और हमारे बड़े अभिन्न आत्मीय मित्र भी थे, जो मेरे लिए वो बड़े भाई थे, तो वो पहली खबर लेकर के आए, और मैं उस समय घर में नहीं था। हमारी माता जी को उन्होंने ये खुशखबरी दी। वो मई का महीना था,
0: अच्छा
1: तो मुझे लगता है 27 मई का दिन था, तो उन्होंने कहा कि कमल से कहिए कि आज ही ज्वाइन कर ले।
0: जी, सर श्रोता आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी आवाज के
1: जी
0: गाने कैसे
1: जी
0: प्रभावित कर लेते हैं अपनी आवाज से? कमल शर्मा, क्या राज है इसके पीछे?
1: देखिए, मेरा मानना है कि आवाज जो है उसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं, वो तो कुदरत की देन है, मालिक ने जो मुझे ईश्वर ने दी है। हाँ, ये जरूर है कि आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए। आमतौर पर हम जो बोलते हैं तो बहुत सारी चीजों का

0: लंघन कर देते हैं, हम बोलते बोलते फंबल कर जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: गलत बोल देते हैं, उच्चारण कई बार गलत हो जाता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल वे में किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी तमाम बारीकियां आनी चाहिए, और ये भी एक साधना है। और देखिए, जैसे कि एक सिंगर होता है ना, वो कैसे सा लगाता है,
1: बिल्कुल
0: गलत जगह लगा देगा तो बेसुरा हो जाएगा। तो
1: बिल्कुल
0: बोलना भी ऐसे ही है, आपको ये तय करना पड़ता है मुझे किस पिच से बोलना है, जो प्रोग्राम है उसका मूड क्या है, मौका और दस्तूर क्या है ना।
1: बिल्कुल
0: अगर आप विज्ञान वार्ता पढ़ रहे हैं तो मूड अलग होगा, कहानी पढ़ रहे हैं तो अलग, भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपकी आवाज का जो अंदाज होगा वो अलग होगा।
1: और
0: जी
1: यही खासियत भी होती है रेडियो की कि हम अपने श्रोताओं के साथ किस मिजाज के साथ जुड़ें, किस लहजे के साथ बात करें।
0: आप सुबह का कार्यक्रम कर रहे हैं और आप बहुत लाउड नहीं हो सकते, दोपहर
1: बिल्कुल
0: में लाउड हो सकते हैं, और रात जो है अगर आप रात कोई प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी आवाज बहुत लाउड नहीं होगी, ना होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आप छत्तीसगढ़ से निकलकर मुंबई जैसे महानगर में पहुंचे, कैसे मैनेज
0: जी
1: किया आपने उन दिनों का, कोई वाकया यदि आपको याद आ रहा हो।
0: नहीं, उस शुरुआत के दिन तो बहुत कठिन थे, क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ी बात है कि उस समय आशियाना खोजना एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, और मैं करीब 50-55 किलोमीटर दूर से आता था, जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी, और फिर मुझे ये भी लगा कि मैंने क्यों यहाँ आने के लिए आवेदन किया, मैं क्यों आया। लेकिन क्या होता है कि जब आपको कुछ पाना होता है तो उसके लिए प्रयास तो करने पड़ते हैं और आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, और इस तरह की परेशानियों से गुजरना भी पड़ता है। वक्त आपको तराशता है असल में, है ना, हालात आपको तराशते हैं, और उसके बाद में अगर आप में प्रतिभा है, आप में धैर्य है, तो फिर आपके हाथ में उस तरह की चीजें आती भी हैं, सफलता आपको मिलती भी है। ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है कि हमें अपनी सीमाएं मालूम होनी चाहिए खुद को भी, और अगर वो मालूम है और उसके लिए आपने आपको मानसिक रूप से तैयार करके रखा हुआ, उतनी मेहनत की है कि आप खुले बाजार की जो प्रतियोगिता है उसका सामना कर सकें, तो आप बिल्कुल सर्वाइव कर जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप में योग्यता है, प्रतिभा है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर, रेडियो में काम करने वालों का सिर्फ आवाज़ का रिश्ता होता है, और हमारी आवाज़ माइक्रोफोन के जरिए श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है, और आवाज़ का ये दिल में उतरना इतना गहरा हो जाता है कि खून के रिश्ते से भी ज़्यादा हो जाता है। बहुत
0: जी
1: सारे
0: जी
1: वाक्य आपके साथ भी हुए होंगे जब आपसे श्रोता मिलने आए होंगे, तो कोई ऐसा पल।
0: ऐसे तो बहुत सारे मौके हैं। मुझको याद है कि जब अपने गोल्डन जुबली के मौके पर हम लोग सैनिकों के बीच गए थे, तो वो एक बहुत अलग किस्म का वो अनुभव था, क्योंकि जिनके लिए कार्यक्रम करते थे हमारी टीम, जब उनके बीच में गई तो अपने बीच में हमको पा करके वो भी बहुत खिले हुए, हम लोग बहुत इमोशनल भी हो गए थे बहुत ज्यादा, कि हम लोग आज अपने असली हीरोज के बीच में आए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: फौजियों को मैं अपने देश का असली नायक मानता हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और इसके अलावा से कई कार्यक्रम जो हम लोगों ने किए जिनसे लोगों का जुड़ाव था, एक और कार्यक्रम जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो था त्रिवेणी। मुझे याद है कि 10 मिनट का कार्यक्रम होता था, और उसको सुनने के बाद में एक महिला श्रोता, उन्होंने फोन किया था, और उन्होंने, हमारे एक मित्र हैं जो रिकॉर्डिंग पर थे, अब दिवंगत हैं, उनसे कहा कि मैं कमल जी से बात करना चाहता, उन्होंने बुलाया, मैं गया तो उन्होंने कहा कि कमल जी अगर उस दिन आपका कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती, मैंने आत्महत्या की सोची थी और मैं आत्महत्या करने जा रही थी, आपका कार्यक्रम सुना और मैंने इरादा त्याग दिया। आज मेरे, ये बात ही करीब 15 बरस पहले की होगी, तो उस समय उनके बड़े बड़े बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके इस एक कार्यक्रम ने एक जो बेशकीमती जीवन की रक्षा, तो ऐसा होता है, तो कभी कभी इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं कि आपका कोई कार्यक्रम किसी को इतना ज्यादा इंस्पायर कर देता है कि उसके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती
1: बिल्कुल सही बात है, और रेडियो श्रोताओं के
0: है।
1: दिल में उतरा है और श्रोताओं को प्रेरित भी किया है। सर, आपकी प्रस्तुति में हेलो फरमाइश कार्यक्रम मैंने भी कई बार सुना है। बचपन के दिनों में
0: अच्छा
1: ट्राई भी किया लेकिन बदकिस्मती से शामिल नहीं हो पाया। श्रोताओं के साथ कोई खास यादें फोन इन कार्यक्रम को लेकर।
0: नहीं, उसमें वैसे तो बहुत सारी है, मुझको वो दौर था कि जब आपके इनकमिंग के भी पैसे लगते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आउटगोइंग के तो थे, तो उसके बावजूद लोगों की ऐसी मोहब्बत थी, बड़ी होड़ लगी रहती थी, और हमारे जो टेलीफोन एक्सचेंज वाले लोग हैं वो भी बड़े प्रेशर में आते थे, दबाव में आ जाते थे, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में, अच्छा पहले क्या, जब ये शुरू हुआ तो मैं करीब 10 से 20 कॉल लिया करता था, फिर कुछ श्रोता नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि आप गाने काट देते हैं, तो हाँ मुझे लगा कि गानों से ज्यादा कॉल महत्वपूर्ण है, तो लेकिन अब उसमें ये होने लग गया कि कोई कोई गाना वो ऐसा पसंद करते थे जिसकी अवधि ही 10 से 12 मिनट की है,
1: बिल्कुल
0: अब पूरा गाना सुनाएंगे तो ऐसे होता ही था कि 5 से 10 कॉल में निपट जाए पूरा का पूरा प्रोग्राम, तो श्रोता नाराज भी होते थे।

0: थी भाई, हमारी कॉल शामिल नहीं हुई।
1: बिल्कुल
0: और कहते ना, एक अनार से 100 बीमार भरी
1: बिल्कुल
0: बात थी। लेकिन उसकी यही खूबसूरती थी कि पूरे देश से लोग फोन करते थे और हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल से कोई बात कर रहा है तो उसका फ्लेवर अलग है, राजस्थान से कोई बात कर रहा है उसका फ्लेवर अलग है, पंजाब से कॉल आ रही है। श्रोता इतनी मिठास से भरे होते थे, उनके कारण हमारे प्रोग्राम में खूबसूरती आ जाती थी।
1: बिल्कुल
0: तो ये हमने बड़ा एंजॉय किया उस प्रोग्राम को।
1: जी सर। संगीत सरिता, छाया गीत, जवानों के लिए हेलो फरमाई, उजाले उनकी
0: जी
1: यादों के, बहुत सारे कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किए हैं। सभी में आपकी प्रस्तुति को, आपकी प्रेजेंटेशन को श्रोताओं ने खूब सराहा भी है। कैसा
0: जी
1: एहसास होता था आपको जब श्रोताओं के प्यार भरे खत आपको मिलते थे?
0: जाहिर सी बात है, हमारे लिए तो वही ऑस्कर, वही फिल्म फेयर का पुरस्कार है, वही हमारे लिए नागरिक अलंकरण है,
1: जी
0: क्योंकि वो दिल से निकली हुई तारीफ होती थी। और जाहिर सी बात है कि मैं स्वभाव से बड़ा परफेक्शनिस्ट रहा, तो मेरे लिए हमेशा वो सरकारी नौकरी के जो 7 घंटे 20 मिनट है वो कभी कोई मेरे लिए बंधन नहीं थे।
1: जी
0: मैं तो करीब 12 घंटे तो ऐसे ही रायपुर में था, तो एवरेज मेरा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, रोज का ये काम था कि सुबह मैं 9 बजे आता था, रात को 11 बजे जाता था घर। और मैक्सिमम टाइम जो है ज्यादातर समय मेरा स्टूडियो में गुजरता था, क्योंकि हर रोज हर दूसरे दिन कोई ना फीचराइज प्रोग्राम है, या फिर ओबी का कोई बेस प्रोग्राम है, कोई सीरियल है, कोई टॉक है, कोई वार्ता ड्रामा है, फीचर है, ऐसे कितनी सारी वेराइटीज थी जो हम लोग को श्रोताओं के लिए पहुंचानी पड़ती थी। तो उस पर मेहनत तो होगी ना। अब जैसे आपने उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम का जिक्र किया,
1: जी
0: तो इसका पूरा संपादन वो करता था। फिर मैंने एक सीरीज की थी, उसका नाम था भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, तो उसकी सिग्नेचर ट्यून से लेकर के उसको पूरा एडिट करना, मिक्स करना। तो हमने एक्चुअली क्या है कि जब आपका शौक आपकी नौकरी बन जाए तो आप उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। रेडियो में काम करते हुए हमारे लिए तो रेडियो की नौकरी इबादत की तरह थी, और हमने सच में इसको बहुत बहुत एंजॉय किया। और इसलिए भी शायद जब आप समर्पित होते हैं तो आपके प्रोग्राम में वो चीज आती है।
1: बिल्कुल
0: तो कभी उखड़े हुए मन से, बेमन से नौकरी नहीं की, डूब के काम किया, और इसीलिए श्रोताओं की हमको भरपूर मोहब्बत मिली, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमेशा पॉजिटिव।

0: सर यूं तो आपने विविध भारती पर अनेक कार्यक्रम किए हैं, सराहना भी खूब आपने बटोरी है,
1: जी
0: लेकिन जवानों के लिए कार्यक्रम को लेकर आपकी कुछ यादें जो आज भी आप ना भूल पाते हों।
1: कारगिल वॉर के समय एक कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए कहा गया था, उसका नाम मैंने रखा था हेलो कारगिल, हेलो फरमाइश की तर्ज पर 4 महीने हुआ। इसमें मेरे साथ रेणु बंसल जी थी और एक और मेरे कोलीग रमेश गोखले थे। तो ये प्रोग्राम रोज हम लोग कैप्सूल बनाते थे और रोज जाता था, और उसमें फौज के तमाम बड़े ऑफिसर से लेकर के सामान्य जवान, उनके घर वाले हमसे बात करते थे। तो मैं उसको याद है कि एक बार जयपुर से कॉल आई, हमारे किसी जवान साथी को 4 गोलियां लगी हैं, किसी का हाथ कट गया है, किसी की टांग कट गई, लेकिन जज्बा उनका बिल्कुल वैसे ही, और वो फोन छोड़ ही नहीं रहे हैं, सब बात करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आपसे अब बात हो गई, अब क्या करेंगे? बोले सर अब आपसे बात हो गई और हम इतने इंस्पायर हो गए कि अब फिर से जाएंगे मोर्चे पर लड़ने के लिए।
0: वाह,
1: मैं हमेशा बोलता हूँ कि एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर देशभक्ति की बातें करना कंफर्ट जोन में बैठ के बड़ा आसान होता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमारे फौजी जवान जिन हालात में काम करते हैं, तेज धूप, बिल्कुल चिलचिलाती धूप है, रेगिस्तान की तपती रेत पर उनकी ड्यूटी होती है कई बार, और एकदम फिर माइनस जाने कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो बर्फीले पहाड़ों पर ड्यूटी करते हैं, एक्सट्रीम वेदर में वो काम करते हैं। तो इसीलिए हम की बराबरी तो कर ही नहीं सकते,
0: बिल्कुल
1: और इसलिए लेकिन ये था कि इस प्रोग्राम के जरिए पूरा देश जैसे एक होता है ना, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था हेलो कारगिल के जरिए। फिर हमने दूसरा प्रोग्राम शुरू किया, जब वो युद्ध खत्म हो गया तो हमने शुरू किया एक कार्यक्रम जयमाला संदेश, वो भी मेरा कॉन्सेप्ट था,
0: जी,
1: वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ। उसमें हम फौजी जवानों के घर से आई चिट्ठियों को पढ़ते थे उनके लिए, तो वो चिट्ठियां बड़ी आप इतनी इमोशनल कर देती थी कि कई बार चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते गला रुंध जाया करता था। और वो मेरे जीवन का सबसे मतलब यादगार अनुभव है ये कार्यक्रम, और अपने फौजियों के लिए कोई भी कार्यक्रम करते हुए परम संतुष्टि का भाव मन में रहता था। हमको लगता था कि उनके जैसा की सेवा तो हम कर ही नहीं सकते,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उनके लिए कुछ करते हुए परम आनंद, परम संतुष्टि का भाव मन में रहता था।
0: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जवानों का कार्यक्रम और खासकर जवानों को प्रेरित करना ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपने अनेक सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू किए होंगे, चाहे वो फिल्म हस्तियां रही हों, तो सबसे खास याद।
1: ऐसे तो किसी एक पर उंगली रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ जो कुछ एक इंटरव्यूज जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, उसमें बी आर चोपड़ा साहब जाने माने हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इसके अलावा जयराज जी, सरदार मलिक साहब म्यूजिक डायरेक्टर, खयाम साहब, फिर प्रेम धवन साहब म्यूजिक डायरेक्टर ज्यादा रहे, संगीतकार जोड़ी जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी, और ऐसे और भी बहुत सारे अभिनेता बहुत सारे हैं, गीतकार हैं इंदिवर साहब, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, और हर एक से बातचीत करके बहुत आनंद आया। और ये तमाम वो लोग हैं जिनका भारतीय सिनेमा को यहाँ तक पहुंचाने में अमूल्य अमूल्य योगदान है।
0: बिल्कुल सर, कुछ ऐसा भी मलाल रहा होगा जिनका आप इंटरव्यू नहीं कर पाए हों।
1: हाँ, उस समय जब मैं आया तो बहुत देर हो चुकी थी, रफी साहब से रायपुर में भी रहते हुए बात तो नहीं हो पाई थी, और वो शरीर तो त्याग चुके थे, और किशोर दास से ना मुकेश जी से भेंट हो पाई, लेकिन फिर बाद में जब, क्योंकि उस समय ये कार्यक्रम भी नहीं हुआ करता था हमारा, उजाले उनकी याद है,
0: जी,
1: तो ये बाद में शुरू हुआ। तो लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम द्विवेद भारती ने एक चीज तो ये की कि आने वाली नस्लों के लिए
0: जी
1: भारतीय सिनेमा के जो दिग्गज कलाकार हैं उनकी स्मृतियां कम से कम सहेज ली हैं, संजो
0: बिल्कुल।
1: ली हैं।
0: और सर, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे, उसकी सफल प्रस्तुति के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, मेहनत भी होती है। आप स्वयं भी एक प्रस्तुतकर्ता रहे हैं, तो कमल शर्मा कितनी तैयारी करते थे अपने कार्यक्रमों को खूबसूरत बनाने के लिए?
1: देखिए होमवर्क तो बहुत जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: और मैंने जैसे कि बताया कि मेरे लिए तो हर अपना जो टास्क है कोई भी कार्यक्रम हो वो नया होता था, वो चैलेंज होता था, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मन में नहीं आया। मेरा तो मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा आपकी परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि आप निश्चिंत हो जाते हैं और उसके बाद में लापरवाही कर जाते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: रेडियो ने हमको ये सिखाया कि हमेशा आप सजग रहिए, अगर आपको नर्वसनेस है तो अच्छी बात है, इससे आप ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपके मुंह से कोई चीज गलत चली गई वो वापस लौट के नहीं आई, और आपकी बातों पर लोग यकीन करते हैं, तो इसीलिए क्रॉस चेक कर लेना चाहिए हमेशा, तथ्यों पर किसी पर भी अगर संदेह है तो मेरे ख्याल से उसको लेना ही नहीं चाहिए,
0: बिल्कुल
1: लेकिन तथ्यों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। हम लोगों से ऐसा नहीं है कि हम लोगों से भी गलतियां हुई और
0: बिल्कुल
1: हम गलतियों से सीखते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आप लगातार विद्यार्थी रहते हैं और लगातार सीखते हैं। वह चुनौतियां भी हैं, रोमांच भी है, मजा भी है, संतुष्टि भी है, सारी चीजें हैं। और जब कोई एक प्रोग्राम मकबूल हो जाता है, श्रोता उसको सिर माथे पर बिठाते हैं, तो इससे बड़ी तृप्ति आपको क्या होगी, बताइए।
0: और उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं श्रोताओं की हमारी तरफ से।
1: देखिए, आप जब एक बेंच मार्क कायम कर, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, आपको उससे ऊपर ही जाना होता है। आपने एक निशान तय कर दिया ना, श्रेष्ठता का या गुणवत्ता का एक आपने मानदंड तय कर दिया, उसको इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये आधुनिक श्रुति परंपरा का उदाहरण है, हमारे कानों में कहीं से भी कोई अच्छी बात पड़ती है तो उसको नोट कर लेना चाहिए।
0: सर आपने अनेक कार्यक्रम किए हैं, श्रोताओं की पहली पसंद हैं। अगर कमल शर्मा आकाशवाणी में उद्घोषक ना होते तो क्या होते हैं?
1: मैं ये तो सिविल सर्विस में गया होता, कॉलेज के जमाने में भी वेस्ट मटेरियल, जो चीजें जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, मैं उनसे चीजें बना करके उनसे अपनी एग्जीबिशन लगा चुका हूँ 2-3 बार।
0: जी,
1: और अगर उसमें नहीं गया तो मैं सिविल सर्विस में होता।
0: कार्यक्रम प्रस्तुति के साथ एक उद्घोषक को कई दिक्कतें भी आ जाती हैं, खासतौर पर सजीव कार्यक्रमों के प्रसारण में। आपने भी
1: हाँ,
0: महसूस की होंगी तो।
1: देखिए, कई बार तो ये होता है कि जो ये रिकॉर्ड होते थे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड हम बजाते थे, और इसके साथ साथ हम कैसेट्स का भी यूज करते थे और सीडीज भी बजाते थे। आजकल क्या, हर चीज कंप्यूटर पर डाल दी गई है
0: जी
1: ना। तो पहले ये होता था कि मन में थोड़ा सा डाउट है तो फिर से चेक कर लिया, उसके जो डिटेल्स हैं आपने चेक कर लिए, तो आपने अपने डिटेल्स जो हैं, गाने का जो विवरण है वो ठीक कर लिया, या गाने का, शास्त्रीय संगीत का, उपशास्त्रीय संगीत का, कोई भी जो है आप पहले से ठीक कर लेते थे। दूसरी बात है कि तो कई बार ट्रैक बैक आ जाता था, तो ना वो सुई अटक जाती थी, तो ऐसे में हम लोग कई बार, हमको ये सिखाया गया था, हमारे जो पुराने साथी थे वो एक सिक्का रख देते थे उसपे,
0: जी
1: स्टाइलस पे, तो सब मामला ठीक हो जाता था।
0: जी
1: और कंप्यूटर में भी कई बार ये होता है कि आपने एक फाइल सेलेक्ट की, कई बार वो जंप हो जाती है चलते
0: बिल्कुल
1: चलते, आपका कसूर होता नहीं, श्रोता ये समझते हैं कि शायद इन्होंने गलती की है,
0: जी
1: तो ऐसा हो जाता है। फिर कई बार चलते प्रोग्राम में लाइट चली जाती है, और हमारे जमाने में तो ऐसा था कि बड़े बड़े टेप डेक होते थे, 1/4 इंच की टेप लगती थी,

0: तो पता चला कि एक साइड का तो स्पूल चल रहा है, दूसरी का जाम हो गया है और पूरी टेप जो है नीचे गिर रही है,
1: जी
0: और उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। और फिर उस जमाने में एक ही टेप में करीब 10 10 15 15 विज्ञापन होते थे, और 10 सेकंड 15 सेकंड उनको क्यों करना एक गाने में। मान लीजिए गाना 3.5 मिनट का है और आपको 10वां कट क्यों करना, तो सब अपनी टेक्निक डेवलप कर लेते हैं ना तो वो बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन देखिए ऐसा है, जितना ज्यादा चैलेंज होगा उतना ज्यादा रोमांच होगा, उतना मजा आएगा आपको।
1: बिल्कुल
0: इस तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, और उस समय जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको सच में अच्छा लगता है। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई,
1: बिल्कुल
0: और
1: अब
0: इतनी आसान होने के बाद में भी अगर गलतियां हो रही हैं तो ज्यादा माफी के लायक नहीं है। लेकिन हमारे जमाने में तो मतलब हालात इस तरह के थे, तो अगर उस समय भी गलती होती थी तो उसको बड़ा गंभीरता से लिया जाता था। इसलिए क्या है कि दूसरी बार गलती की गुंजाइश कम होती थी,
1: बिल्कुल जी
0: क्योंकि आपको पूरा देश सुनता है, देश के बाहर भी लोग सुनते हैं, तो आपको अपने शब्दों का चयन जो है ना बड़ा सोच समझ के करना होता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, दूसरी बात है कि किसका कार्यक्रम है। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है कि अगर आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो कलाकारों के आगे एक विशेषण होता है संबोधन का, आपको
1: जी
0: उसका ध्यान रखना पड़ता है। पंडित किनके आगे, उस्ताद किनके आगे, विदुषी लगाना पड़ता है, और उसमें भी ग्रेडेशन होता है। इसके साथ साथ मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का या महिम राष्ट्रपति का अगर अभिभाषण है या राष्ट्र के नाम संबोधन है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि कोई कोई गंभीर दुर्घटना हो गई है और उसमें प्रसारण प्रभावित हो रहा है तो तब वहां कौन सी भाषा होगी, फिलर का चयन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता था। और इसके अलावा जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय गौरव की जो चीजें हैं, उनके बारे में बात करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता था और
1: बिल्कुल
0: रहना चाहिए भी। हमारी जो विदेश नीति है उसमें जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके बारे में बोलते हुए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आवाज का जादूगर कमल शर्मा को कहा जाता है, और अपनी खूबसूरत आवाज से श्रोताओं के दिलों में जगह भी बनाई है आपने, तो आवाज
0: जी
1: खूबसूरत बनी रहे इसके लिए कमल शर्मा क्या करते हैं?
0: देखिए, इसके लिए तो मैंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ मैं बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप आवाज के लिए भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम, ये दो बहुत अच्छे हैं, हमेशा फायदा देते हैं। मैं भी कभी कभी जब मेरे को जरूरत पड़ती है मैं ये करता हूँ, लेकिन हाँ वैसे और कोई परहेज तो मैंने किया नहीं कभी।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी में आप लंबे समय तक रहे हैं, श्रोताओं से जुड़ने का मौका आपको मिला है। अगर हम
0: जी
1: पूछें कि आकाशवाणी ने आपको क्या दिया और आपने आकाशवाणी से क्या लिया, तो क्या कहेंगे?
0: सीधी बात है मनोज जी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो मेरी पहचान है, जाना जाता हूँ, जो सम्मान मैंने अर्जित किया, सफलता अर्जित की,
1: जी
0: वो सब कुछ आकाशवाणी की देन है। मैं तो वरना मैं एक भीड़ का हिस्सा होता, कौन जानता मुझे। तो आज मुझे जो वैश्विक स्तर की बल्कि पहचान दी है इसने, तो उसके पीछे आकाशवाणी है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रुचि आपकी नौकरी बन जाए तो इससे बेहतर क्या चीज है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फाइल वाला काम कर सकूंगा, टेबल पे फाइलें जमी हुई हैं, और ये रोज एक एक बहुत ही क्रिएटिव काम, रोज एक नई चीज आपको करनी है, नया फीचर है, नई स्क्रिप्ट है, हर बार एक नया प्रोग्राम है, और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया भी आपको मिल जाती है,
1: बिल्कुल
0: चिट्ठियों से मिल जाती है, लोग टेलीफोन करके आपको बता देते हैं, बधाई देते हैं, तो फौरन इनाम भी मिल जाया करे आपको, आपके सीनियर्स जब आपका अच्छा कार्यक्रम होता है इसकी पीठ थपथपाते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें आपको दावा नहीं करना पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं के पत्र आपका सर्टिफिकेट है, उस वो मीटर है, उससे पता चल जाता है कि आपने अच्छा किया, खराब किया, क्या किया, उनकी शिकायतें है ना। तो ये जो चीजें, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पूरा अप्रिसिएशन मिलेगा, और वो मैंने इसलिए बहुत एंजॉय किया। आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा योगदान है मेरी पूरी जो जीवन यात्रा रही है नौकरी की, उसमें मैं हमेशा हमेशा हृदय के पोर पोर से आकाशवाणी और विविध भारती के लिए हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, ऋणी रहूंगा, अपने श्रोताओं का भी ऋणी रहूंगा।
1: बिल्कुल आकाशवाणी के 90 साल की इस गौरवशाली यात्रा पर अपने चाहने वालों से क्या कहेंगे?
0: देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आकाशवाणी एक मातृ संस्था है, भारत ने प्रसारण की, ये गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। आकाशवाणी ने आपका हाथ थामा है और आपने आकाशवाणी का हाथ थामा है,
1: बिल्कुल
0: तो ये साथ कभी ना छूटे, ये साथ कभी ना टूटे, और ये यात्रा सुरीली यात्रा, ये ज्ञान से भरी हुई यात्रा, सूचनाओं से भरी हुई यात्रा, ऐसे ही निर्बाध चलती रहे, मेरी यही शुभकामना है। आकाशवाणी उत्तरोत्तर और प्रगति करे, कीर्ति के शिखरों को छुए

0: और हमारे प्रिय श्रोताओं का आत्मीय साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे।
1: कमल शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए, आकाशवाणी रामपुर को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी धन्यवाद मनोज जी, और आकाशवाणी रामपुर के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और अपने सम जितने भी सुनने वाले हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत जाने माने उद्घोषक कमल शर्मा से मनोज कुमार की ये बातचीत। अब ये धरोहर कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

मीडियम वेव और एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर की पहली सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, 11:30 हो चुके हैं और ये समय है हमारे अगले कार्यक्रम मन भावर का। आप श्रोताओं की शब्दावलियों के साथ ये कार्यक्रम प्रस्तुत है।

श्रोताओं, आपकी शब्दावलियों के साथ कुछ गीत लिए हुए हम हाजिर हो गए हैं मनभावन कार्यक्रम लेकर। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये मनभावन आप सुनेंगे सुरेंद्र कौर के साथ। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर आपके दिल में भी कोई बात है जिसे आप हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप अपने दिल की बात हमें मेल कर सकते हैं और उससे मेल खाता हुआ कोई गीत भी आप बता सकते हैं, और ये शब्दावली गीत के साथ हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है पत्रमिला@rampur@

0: gmail.com। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बड़ी ही खूबसूरत सी शब्दावली के साथ। ये शब्दावली हमें मिली है, आप हैं मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारस जी की। आप बड़ी ही खूबसूरत सी बात आकाशवाणी के लिए लिख रहे हैं, बड़ा ही अच्छा सा मैसेज आपने दिया है। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो वो आवाज़ जो दिल को जोड़ती है, जहाँ से दिन की शुरुआत होती है, जहाँ सरहदों पर भी वतन की खुशबू आती है, वो ऐतिहासिक ऐलान ये आकाशवाणी है। अब आप सुनिए समाचार। 15 अगस्त 1947 की वो रात, नेहरू की आवाज़ गूंजी थी यहीं पर, देश आज़ाद हुआ था और गवाह बना था रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, तारीख का हम सफ़र। विविध भारती की शाम, भाइयों और बहनों, अमीन से यानी बोल रहा हूँ। बिनाका की गीतमाला लेकर हाजिर हूँ आपके दरमियान। बुधवार रात 8 बजे पूरा हिंदुस्तान रुक जाता था, एक आवाज़ करोड़ों धड़कने, यही था असली एयर का ज़माना। गांव के चौपाल पर रखा मर्फी का वो पुराना रेडियो, बाबूजी कान लगा के सुनते, खेतीबाड़ी, मौसम का हाल, फौज में बेटे की चिट्ठी और शाम को फरमाइशी गीत। एयर नहीं था सिर्फ रेडियो, वो तो घर का बुजुर्ग था। सुबह 5:25 पर सिग्नेचर ट्यून बजी और वंदे मातरम की धुन से नींद खुली, फिर भजन, लोकगीत और फिर खबरों से दिन चढ़ा। दोपहर में नाटक, शाम को गाने, रात को फौजी भाइयों के नाम। एयर का शेड्यूल नहीं, दिन हिंदुस्तान की दिनचर्या था। सरहद वाला एयर, बॉर्डर पे जवान तैनात, ट्रांजिस्टर कान में लगाए, जयमाला में नाम आता तो आंखें नम हो जाएं। फौजी भाइयों के लिए खास, आरजे जब ये कहती थी लगता था घर से कोई हालचाल पूछने आया है। एयर सरहद का दूसरा नाम है। क्रिकेट कमेंट्री सुनने को पूरी गली जमा हो जाती थी। जसदेव की आवाज़ में गावस्कर का चौका, कपिल का चौका आंखों के सामने तैर जाता था। टीवी नहीं था तब, पर एयर ने मैदान दिखा दिया। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कहते ही गर्व से सीना तन जाता, क्योंकि यहाँ से निकली आवाज़ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती। एक मुल्क, एक आवाज़, एक जज्बा, हिंदुस्तान। एयर ने सिखाया मीलों दूर रहकर भी पास रहा जा सकता है। उर्दू सर्विस की नफासत, एफएम गोल्ड की रौनक, युवाणी का जोश और रेमबो के रंग। एयर बदलते वक्त के साथ बदला मगर भूला नहीं, जड़े वही पुरानी, शाख नई नई। फलसफा एयर का वो ठहराव, वो तहजीब, वो बिना देखे अपना बना लेने का हुनर। ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ स्टेशन नहीं, ये एहसास है उस दौर का, जब आवाज़ें, जब रिश्ते आवाज़ से बनते थे और खबरें सच्ची लगती थीं। ये आकाशवाणी है और हमेशा रहेगी। पहचान एयर की पहचान, सिग्नेचर ट्यून, वायलिन की वो धुन, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। नमस्कार, एक लफ्ज़ में तहजीब, समाचार समाप्त हुए, सुकून, यही है ऑल इंडिया रेडियो, देश की धड़कन, आवाम की आवाज़। कितना खूबसूरत सा मैसेज आपने किया है और बहुत ही अच्छा सा ये मैसेज मुंबई से हमें भेजा था अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बिनारा जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी के 90 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही गर्व का ये विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर शब्दावली के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी की शुभकामनाओं के साथ एक शब्दावली हमें और प्राप्त हुई है कुछ ऐसी ही। छत्रपति संभाजी मार नगर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं श्री राजेश साबले पाटिल जी। आप लिख रहे हैं कि आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष की पूर्णता के उपलक्ष पर विविध आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। प्रत्येक आकाशवाणी केंद्र अपनी पद्धति से कार्यक्रम तैयार और कर रहा है और प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी रामपुर ने 26 अप्रैल और 6 मई 2026 को दो भागों में बहुत ही सुंदर और मनभावन कार्यक्रम प्रसारित किए। विविध राज्यों के सजग श्रोताओं से फ़ोन पर बातचीत करके रेडियो के बारे में विचार रिकॉर्डिंग क्लिप्स द्वारा कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया। वास्तविक हमारे जीवन में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस समय मनोरंजन के अन्य कोई साधन नहीं थे, तब एकमात्र रेडियो ही हमारा मनोरंजन का हमसफर था। उस दौर में मैं और आज भी हम काम की थकान महसूस करते हैं, मन को कुछ शांति चाहिए होती है, तब रेडियो का सहारा लेते हैं। मेरे विचार से रेडियो के लिए अन्य कोई विकल्प हो नहीं सकता। इसलिए जीवन के रोजमर्रा के गम कुछ समय के लिए भूलकर मन को जब भी प्रसन्न करना हो, तब हम रेडियो ट्यून करते हैं। वाकई रेडियो हमारा हमेशा से साथी है, साथी था और साथी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी शब्दावली के लिए। कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है विसलपुर मेहंदी वाले घर से पूनम सक्सेना और विनोद गोबल वाले जी की। आप लिख रहे हैं, कितना मायने रखता है तुम्हारा होना, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्फाज में वो शिद्दत भी नहीं जो बयान की जा सके। तुम्हारी मुस्कानों की चमक को, तुम्हारी आवाज़ की चहक को और तुम्हारी दहक को, तुम्हारा साथ होना कैसा होता है कोई कैसे बताए। तुम्हारा साथ होना मुश्किल दिनों की छाया थी तुम। तुम्हारे होने से ऐसा महसूस होता है जैसे खुशबू की बयार थी तुम। अब तुम्हारे ना होने से सिर्फ खामोशी रेंगती है राहों पर। बस एक सन्नाटा सा होता है जो अंदर तक गूंजता है। भीतर पनपती है खालीपन की लकीरें। इस खालीपन में कोई भी तो अपना नहीं लगता। बिछड़े तो सूखे सजल बन गए, इतने टूटे कि खंडर बन गए। तुम दिसंबर की ठंडी सुबह बन गई और हम मई और जून की दोपहर बन गए।

ये शब्दावली हमें प्राप्त हुई है रिंगनी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोताओं की। आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी। लिख रहे हैं कि तजुर्बों ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। मत ढूंढ सुकून दुनिया की भीड़ में, यहाँ हर शख्स बस अपनी ही कहानी में सिपाही है।

हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया। हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया। भूले विसरे सारे किस्से आँखों में घोल गया। जब रात में गुजरेंगी रातें हमारी, जब जाग के गुजरेंगी रातें हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया। जब जाग के गुजरेंगी रातें हमारी, करवटों में कितनी बातें को तोल गया। भीगा हुआ सिराना कहता है एक फसाना, भीगा हुआ सिरहाना कहता है एक फसाना, जो अब तक कहा ना हमने आँखों से है बहाना। जीवन भर दिल के छाले न गए चाहत के भाव, सपनों में संभाले न गए। कई बार लिखना चाहा खत तुझे, लेकिन शब्द ही हमसे संभाले न गए। ये बड़ी ही भावपूर्ण शब्दावली हमें प्राप्त हो रही है कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली के हमारे श्रोताओं की, बीके जौहरी, विनोद, अर्पित जौहरी, शीला ठाकुर और शाइना बीजी की। आप आगे लिख रही हैं कि छोटा सा संसार, छोटी छोटी ख्वाहिशें, ज़रा सी मुस्कुराहट और जिंदगी हसीन हो जाती है। वो खुशबू से लिपटा, वो मोहब्बत से भरा तुम्हारा ख़त, उस ख़त में नई इबारत लिखी थी, उसमें कुछ अल्फाज नीली स्याही से मोतियों से झिलमिला रहे थे कागज़ पर। कभी कभी जो बातें हम कह नहीं पाते, वो अल्फाज, वो खोए हुए से जज्बात, अपने एहसासों को हम ख़तों के माध्यम से लिखकर पहुंचा दिया करते थे। तुम्हारा लिखा एक हर्फ चमकता था अंधेरे में मोतियों की तरह। आज एक बार फिर उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला ख़त कभी फाड़ा ही नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी उस अधूरी प्रेम कहानी की याद दिला जाते हैं ये ख़त। और हाँ, तब मन को समझा लेता हूँ ये सोचकर कि अब सब अधूरे हैं एक आस में। कब तलक हम यूँ आंसू बहाएं, बेवफा तुझको हम कैसे भुलाएं। रात भर अब नींद नहीं आती, रह रह के तेरी याद सताती। खत जलाकर भी तुम याद आओगे, अब और कितना हमें रुलाओगे। ख्वाब बनकर सिमट गए हो तुम, मरते दम तक भी याद आओगे तुम, मरते दम तक भी याद आओगी तुम।

ये अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है गांधी समाधि रोड रामपुर के हमारे श्रोताओं की। आप हैं हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान। कार्यक्रम पेश करने वालों को आपका प्यार भरा आदाब आपने भेजा है, और आप लिख रहे हैं कि जी हाँ दोस्तों, कभी कभी उनसे भी मिलना पड़ता है जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, कभी कभी उनसे भी बिछड़ना पड़ता है जिनसे आप बिछड़ना नहीं चाहते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि तुमको बनाया गया है मेरे लिए।

राज द्वारा कोठी अफसर आला रामपुर के हमारे श्रोता शब्दावली भेज रहे हैं। आप हैं रूमा खान, बॉबी खान, सुभान, मदीहा, गुलफिशा, जीना तमान, शबनम अब्बासी और साथ में हैं शमा परवीन। लिख रहे हैं कि अंदेशा आने वाले ज़माने से होता है, अगर हाल पर निगाह रखी जाए तो मुस्तकबिल के अंदेशे कम हो जाते हैं। सांस का सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन आस का सफ़र बाकी रहता है। यही तो वो सफ़र है जो इंसान को मोतारीख रखता है, और मोतारीख होना ज़िंदगी की अलामत है। ये अलामत रगों में खून की तरह दौड़ती है तो इंसान

मायूस नहीं होता, चाहे सांस का सफर खत्म ही क्यों ना हो जाए। गुजरा हुआ वाकया याद तो नहीं है, बल्कि वो याद बनकर बार बार गुजरता है। हम तो बस यही कहेंगे कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा।

ये शब्दावली हमें प्राप्त हुई है ईदगाह गेट मुरादाबाद के श्रोताओं की। शफी अहमद अंसारी साहब और साथ में हैं दूल्हा रईस दूल्हा अंसारी साहब, लिख रहे हैं कि इश्क क्या होता है, खामोशी में भी दिल बहुत कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से समझ आता है। इश्क की सज़ा क्यों क्या होती है, ये किसी सच्चे आशिक से पूछो। जुदाई का दर्द क्या होता है, ये किसी बिछड़े हुए दिल से पूछो। हमें तो मोहब्बत सुकून के लिए की थी, मगर दिल का क्या हाल कर देती है ये हमसे पूछो। तेरी खामोशी पर लाखों गम हैं, अगर तू कुछ कहे तो फना हो जाए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन भावन का ये कार्यक्रम शब्दावलियों के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुरिंदर कौर के साथ। कार्यक्रम की ये शब्दावली हमें भेजी है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी साहब। एक ज्वलंत समस्या की ओर आपने इशारा किया है। आप लिख रहे हैं कि बेमौसम बरसात, गर्मी में के मौसम में जाड़े का असर, ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ का असर है। हमने हरे भरे जंगलों की चटियाल मैदान कर दिया है। गर्मी के मौसम में छांव ढूंढने से नहीं मिल रही है, दूर दूर तक धूप ही धूप नज़र आती है। हमने पेड़ों के कटान तो किया हमने पेड़ों का, मगर पेड़ लगाने का मन नहीं बनाया। आज व्यक्ति ये तो कहते हुए मिलेगा कि गर्मी बहुत है, मगर ये नहीं सोचता कि गर्मी पहले भी पड़ती थी। पहले गर्मी से बचाव का कोई साधन नहीं था, सिर्फ पाकड़ की छांव ही काफ़ी होती थी गर्मी दूर करने के लिए। आइए अब हम अहद करें कि जीवन में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है, हमें पर्यावरण को बचाना होगा, ये हमारे कल की ज़रूरत है और आज की आवश्यकता भी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्दावली भेजने के लिए।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जितनी भी शब्दावलियां हमें प्राप्त हुई थी हमने कार्यक्रम में शामिल कर ली हैं। अब मन भावन के इस कार्यक्रम से सुरेंद्र कौर को दीजिएगा इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर से बात होगी, आपकी शब्दावलियां होंगी और कुछ होगा गीत संगीत। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे मन भावन कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं।

0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: घरों में गर्मी बनी रहे
3: जी,
2: जहाँ तक खेती की बात।
3: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश और उसके बाद गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना।
4: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
4: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक सूचना सुनिए। थाना प्रभारी बिलसंडा पीलीभीत हमें सूचित करते हैं कि डॉली देवी, पुत्री सुमित कुमार, निवासी ग्राम खजुरिया नवीराम थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत, ये 21 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 19 वर्ष और शरीर की बनावट सामान्य है। चेहरा गोल है, आंखें काली हैं, कद 5 फीट है, रंग गोरा है, काले बाल, और आपने जामुनी रंग की साड़ी और पैरों में

लाल रंग के सैंडल पहने हुए हैं। जिन किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है, कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करने का कष्ट करें। 9068659107। और आप इस पते पर भी सूचना दे सकते हैं। श्रीमती सुशीला, वाइफ ऑफ संजीव कुमार, निवासी ग्राम खजुरिया, नवीराम बिलसंडा, ज़िला पीलीभीत। और आपका मोबाइल नंबर है 9758290254। सूचना समाप्त हुई है।

0: में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है और इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं हमारी प्रथम सभा के प्रसारणों का। कार्यक्रमों की श्रृंखला का हमारा अगला कार्यक्रम है आप सभी श्रोता साथियों का पसंदीदा लोकप्रिय फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

श्रोताओं कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते और सुनते सुनाते हमारी आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे हैं। हम सभी कुछ ना कुछ यादों के साथ आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत से श्रोता हैं जिनकी आवाज़ें हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी के इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं। वाकई बहुत ही खुशी होती है उन आवाज़ों को सुनकर जिनके नाम जिनकी फरमाइशें हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आज का ये कार्यक्रम एक बार फिर समर्पित है आकाशवाणी की उस 90 साल के सुनहरे दौर को। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती है सुरेंद्र कौर। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और पहले गीत के लिए फरमाइशें आप सभी की हमें प्राप्त हो चुकी हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के हमारे श्रोता टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप साथ में आपके हैं। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये मैसेज प्राप्त हुआ है परभणी महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं का। रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रतेश संघई और आपका संघई परिवार। और आप हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, प्यार भरे आदाब के साथ आपने ये मैसेज हमें किया है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के हमारे श्रोता रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा सप्रेम नमस्कार के साथ आप हमें मैसेज कर रहे हैं। और एक खूबसूरत सा मैसेज, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज नमस्कार के साथ ही अभिनंदन करते हुए चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी हमें इस मैसेज को कर रहे हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के हमारे श्रोता ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर करा जिला गाजीपुर के हमारे श्रोता अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत हमें ये मैसेज किया है। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल के श्रोता पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शव्या रामटेके ये मैसेज हमें कर रहे हैं। और अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ग्राम जाखौत के हमारे श्रोताओं का, शंभुदयाल खटक, बिमला देवी खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, प्रतीक कुमार, कुमारी पूजा खटक। और ये मैसेज प्यारे से नमस्कार के साथ आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के हमारे श्रोताओं का हमें प्राप्त हुआ है। वैशाली शैलेश गावणकर, प्रिंस एकांश, सुमित गावणकर और कुमारी ध्वनि गावणकर परी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर राही, सरिता गावणकर, प्रणीता सिद्धांत गावणकर और इनका लाडला टुक टुक गावणकर। ये मैसेज खैल बाजार पानीपत से हमें प्राप्त हुआ है। नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा और इनके पापा जी नानक चंद मल्होत्रा जी। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। ये अगला मैसेज मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोताओं का, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई बहन और आपके साथ हैं फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी साहिबा इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज हमें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए आप हैं गोवर्धन कॉलोनी शादरा दिल्ली के हमारे श्रोता, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से आपके साथ राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना जी ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज गंज डुंडवारा के हमारे श्रोताओं का, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी साहब के साथ आप हैं अयाज अंसारी। सेव वाटर सेव लाइफ हमेशा की तरह मैसेज किया है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोताओं ने, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी साहब ने। और आप ही के साथ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और कार्यक्रम का पहला खूबसूरत सा गीत सुनने की फरमाइश आपने की है पिघलता आसमान फिल्म से। ये खूबसूरत सा गीत लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम की अगले गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। बीड शहर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे और जयश्री मेत्रे, अंजलि करवा और साथ में हैं बाला साहेब करवा जी। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, साथ में शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ के हमारे श्रोता मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात के हमारे श्रोता रमेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और साथ में है निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और इनका समस्त कठेरिया परिवार। और आप लिख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम हम बराबर सुन रहे हैं, किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, आप शामिल हो चुके हैं। और ये अगला मैसेज मोताला महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हुआ है विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और ओमकार सुरलकर जी का। गांधी समाधि रोड रामपुर के हमारे श्रोता हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान और सुभान खान, साथ में हैं फिरोज खान। साहूनगर यवतमाल के हमारे श्रोता राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। पालदा नाका इंदौर एमपी से ये मैसेज हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी और साथ में हुस्ना बी कमला। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये मैसेज हमें किया है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका समस्त अब्बासी परिवार। और ये मैसेज हम तक पहुंचाया है मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुलनिशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी जी ने। आपने ये मैसेज बाजार रोड मुगीसापुर से हमें किया है।

और ये मैसेज ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है सतेंद्र कुमार चांसौलिया जी, और साथ में हैं आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसौलिया। और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का अगला खूबसूरत संगीत दाग फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, इस गीत को संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

0: गीत आपके नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुरिंदर कौर के साथ, और अगले कार्यक्रम की फरमाइश आपकी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडील नवापारा से आपके साथ हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता जी। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है देवशंकर तामुरिया जी का। आपके साथ अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। साथ में है मास्टर अल कबीर। और ये मैसेज आपने किया है डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ के श्रोताओं का हमें प्राप्त हो रहा है। अहमदपुर खैगांव खांडवा के हमारे श्रोता कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली ने ये मैसेज किया है। रंगारेड्डी तेलंगाना से कार्यक्रम को सुन रहे हैं कानुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश। शास्त्री नगर बीरशहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल नमस्कार के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की शुभकामनाओं के साथ आप हैं बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, चंचल डोमने, वैष्णी डोमने और साथ में अर्जुन गाविनकर और धीरज सवासेरी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल के हमारे श्रोता गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, बलविंदर सोडी और चंडीगढ़ से आपके साथ यश कुमार वर्मा जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। गुवाहाटी असम से जुड़े हैं हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या जी। ग्रामवा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमें मैसेज कर रहे हैं। सप्रेम नमस्कार और सत श्री अकाल के साथ आप हैं ग्रामवा डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा के हमारे श्रोता जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत। अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सईद भाई, सूफियान, अनस, अनैना और साथ में सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान और आफिया हमें मैसेज कर रहे हैं। सहारनपुर से कार्यक्रम को सुन रहे हैं सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग। नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। और वाडी खामन गांव के हमारे श्रोता अनंता वाडे, रमेश्वर वाडे, शुभम, साक्षी, खुशी और इनका समस्त वाडे परिवार। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से कार्यक्रम को सुन रहे हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपंक, मयंक मूड़त, चेतन नाटा और आपके साथ दिलीप सिंह पवार। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में शुभकामनाएं देते हुए आप लिख रहे हैं कि हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, किसी भी गीत की फरमाइश में हमें शामिल कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप शामिल हो चुके हैं। गोपालगढ़ राजस्थान के हमारे श्रोता धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान छीपा, साथ में हैं पूजा परिहार। ये मैसेज मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, समस्तीपुर ताजपुर से के पी सिंह बाबा और क्रांति गुप्ता ये मैसेज कर रहे हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से नमस्कार के साथ मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सुरेश सोनू, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और ये अगला मैसेज लाइव सुन रहे हैं सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान के हमारे श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी और इनके साथ बेबी बॉय हिमाक्ष कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है नाभा जिला पटियाला पंजाब के हमारे श्रोताओं ने सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, मौला हलवाइयान, शेरकोट बिजनौर के हमारे श्रोता मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादा रानी और हिना कौसर। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत अनोखी अदा फिल्म से गायक कलाकार किशोर कुमार, आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना

हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मरहरा दरवाजा ईटा के हमारे श्रोताओं की। नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हमें किया है नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, राशिद और यशब अब्बासी साहब ने। और ये अगला मैसेज बहरड़ी मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर जी का। ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से ये मैसेज दीपेश वर्मा, पूरम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का हमें प्राप्त हो रहा है। और ये मैसेज अजीत कसाना जी ने हमें लिखकर भेजा है। एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन भी आपने लिखी है। मेरी जान है, मेरी पहचान है आकाशवाणी, निकलेंगे जब मेरे प्राण, सुन रहा होऊंगा आकाशवाणी, मेरी जब तक सांस रहे आकाशवाणी का साथ रहे, इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। अजीत कसाना, ना रहे ना सुख में सीखे ना दुख में सीखे, जो भी सीखे आकाशवाणी में ही होकर सीखे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रामपुर की टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कसाना जी, आपने ये मैसेज तो हमें किया, लेकिन कहाँ से आपने ये मैसेज किया है हमें ये नहीं लिखा है। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है राजधानी रायपुर के हमारे श्रोताओं ने, नीलू में एक नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार जी ने, राजधानी रायपुर के हमारे श्रोता हैं। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है खुर्जा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोताओं का, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। सप्रेम नमस्कार के साथ ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। और ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता बीरगांव गुजरात के हैं, अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, परवीन सुल्ताना जी और साथ में भावेश कुमार भावसार, साथ में राकेश कुमार भावसार। 90 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ भी आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली के हमारे श्रोता राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी साहब, नमस्कार और आदाब के साथ इस मैसेज को हम तक भेज रहे हैं। अनारकली बाजार जगराऊं के हमारे श्रोता सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा और भाई सुच्चा पाठक। ग्राम नथाना पंजाब के हमारे श्रोता हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता इस मैसेज को हम तक पहुँचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज पहुंचाया है मानोवाड़ा के हमारे श्रोताओं ने, देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता और अनिकेत भटकर जी ने। वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से कार्यक्रम को सुन रहे हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष आप ही के साथ हैं। राम कैंट के हमारे श्रोता महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल जी, नमस्कार के साथ ही आपने ये मैसेज पहुंचाया है। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले हमारे श्रोता नादेड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ जी, सादर नमस्कार आपने हमें भेजा है। और ये अगला मैसेज बीरशहर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता विकास वनसोड़े, रेखा, अदिति और वैभव का हमें प्राप्त हुआ है। खंडाला से आप हैं आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे जी। कार्यक्रम में आप सभी के नाम कार्यक्रम का ये अगला गीत पाप और पुण्य फिल्म से, गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार, और इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं के नाम। गंज डुंडवारा के हमारे श्रोता शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अदनान खान, साथ में हैं अनु खान, आदाब के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और ये अगला मैसेज हमें भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गौतम नगर के हमारे श्रोता नादेड़ से, ये जुड़े हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले जी। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये मैसेज गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हमें प्राप्त हो रहा है। रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी और साथ में ललित नारायण भाऊ खड़से और साथ में हैं आराध्या खड़से। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा जी हमें मैसेज कर रहे हैं। सिंधौली मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से आपके साथ हैं अयूब खान। और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कोजगिरी कॉलोनी के कोपर गांव से, हमें ये मैसेज किया है सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे और मानसी मालोजी जी ने। और आप हैं

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं के नाम। गंजी टुंडवारा के हमारे श्रोता शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अदनान खान, साथ में हैं अनु खान, आदाब के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और ये अगला मैसेज हमें भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गौतम नगर के हमारे श्रोता, नादेड़ से ये जुड़े हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले जी। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये मैसेज गरीब नवाज़ कॉलोनी इंदौर से हमें प्राप्त हो रहा है। रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी और साथ में ललित नारायण भाऊ खड़से और साथ में हैं आराध्या खड़से। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा जी हमें मैसेज कर रहे हैं। सिंधौली, मीरगंज, बरेली के हमारे श्रोता जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से आपके साथ हैं अयूब खान। और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कोजगिरी कॉलोनी के कोपर गांव से हमें ये मैसेज किया है सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे और मानसी मालोजी जी ने। और आप हैं

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कार्यक्रम को सुन रहे हैं विजेंद्र वर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और साथ में हैं सोनल और आशीष विश्वकर्मा जी। नमस्कार के साथ आपने ये खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुंचाया है। बाबा कुटीर रायगढ़ के हमारे श्रोता शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और आप हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट के हमारे श्रोता राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का।

हमारे श्रोताओं ने सुना फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, 1:05 और 12 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
7: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
6: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

श्रोताओं आप सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से बस थोड़ी ही देर बाद 1:15 पर धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत आपके लिए हम लेकर आएंगे कुछ लोकगीत प्रेमलता के स्वर में। 1:30 का समय है ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम आंचल का। आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस, और इसके साथ साथ एक परिचर्चा भी आपके लिए होगी। विषय होगा हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। प्रतिभागी होंगे श्रीमती सीमा, श्रीमती सुशीला, और इसका संचालन करेंगी ममता। 2:30 का समय है सुनहरा दौर कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में 1990 के दशक के हम आपको गीत सुनवाएंगे। शाम की सभा आरंभ होगी हमारे रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा संध्या 4:00। आज शाम कार्यक्रम होगा संध्या 5:00, और 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। छः बजकर 10 मिनट पर चित्तपट संगीत हम आपके लिए ले आएंगे, और 6:20 का समय है किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम का कृषि जगत। संध्या 7:00 सुनिएगा विविधा के अंतर्गत एक वार्ता, वेद शास्त्रों में निहित विश्व शांति की व्याख्या। वार्ताकार होंगे श्री यतेंद्र कुमार। सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें सुनिएगा चंदन दास से और आबिदा परवीन से। गीत गाता चल, ये फरमाइशी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या रात्रि 8:00। और 9:30 का समय है सबरस कार्यक्रम का। आज इसमें हरलीन कौर से सुनिएगा कुछ शब्द। और रात्रि 10:00 सुनिएगा दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये था कार्यक्रम विवरण।

0: नई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से रियासत के नज़्म व नसक, आइंदा होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान और मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुजव्वज़ा अवामी शराकतदारी पर मबनी प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 जून आलमी योम माहौलियात से 21 जून बैनुल अक़वामी योम योग तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम सिर्फ रस्मी इनेकाद न होकर अवामी शराकतदारी और अवामी बेदारी की मुहिम बने। मीटिंग में वजीर आला ने 8, 9 और 10 जून को 2 मीटिंगों में मुनक़िद होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान की इफ्फत और राजदारी को बनाए रखने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि नज्म व नसक से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में मफाद आम्मा की 24 तजावीज मंजूर की गईं। शहरी तरक्की के वजीर AK शर्मा ने बताया कि काबीना ने शहरी ट्रांसपोर्ट खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 1725 नए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी है। ई बसें नोएडा समेत शहरी इलाकों के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 18 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। काबीना ने सरकारी वकला के अलाउंस में इजाफे की तजवीज को भी मंजूरी दी। हमारे नामा निगान ने इतला दी है कि काबीना ने खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए हिमायती कीमत स्कीम के तहत मक्का की खरीदारी की पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर नाफिज किया जाएगा। बनारस में आज ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का इफ्तिताह हुआ। मीटिंग से कबल मुख्तलिफ ममालिक से आए नुमाइंदों का रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की शुरुआत हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के खिताब से हुई। वाज रहे कि हिंदुस्तान इस बार ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है जो 2 रोज तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान के अलावा चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के नुमाइंदे बराए रास्त शामिल हुए हैं। दरियासना रूस, इथोपिया और मिस्र के नुमाइंदे हाइब्रिड मोड के तवस्सुत से मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ह रहे कि इस दौरान अराकीन ममालिक के दरमियान सकाफती तआवुन, विरासत, तहफ्फुज़ और सकाफती तबादले को मजबूत करने से जुड़े मुख्तलिफ मौजू पर बहस होगी। इस दौरान मरकजी सकाफती सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया,
1: ये लिविंग हेरिटेज है न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, और यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ की जो गंगा जी की जो सुंदरता है, जो हमारी युगे युगीन पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता का ये प्रतीक है। इसलिए इससे अच्छा स्थान ब्रिक्स के कल्चरल ट्रैक की डिस्कशंस के लिए नहीं हो सकता और इसीलिए स्थान को चुना गया।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान के उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत में रियासती हुकूमत ने इम्तिहानी मराकज को रियायती कीमतों पर बस सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की। मीटिंग में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सिविल पुलिस कांस्टेबल और इसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान 2 शिफ्टों में 8, 9 और 10 जून को होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 2.9 मिलियन उम्मीदवारों की शिरकत की तवक्को है। वज़ीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि किसी उम्मीदवार को धूप में खड़ा न होना पड़े और इम्तिहानी मराकज में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट रियायती किरायों पर खसूसी बैनज़ली बसें चलाएगा। गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गैरमामूली तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम कारोबार करने में आसानी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर बात करेंगे।
2: सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: मीडियम वेवर FM पर आप श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी रामपुर को। श्रोताओं, समय हुआ है 1:15:36। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम धरती गाती है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता के स्वर में कुछ लोकगीत।

धरती गाती है। लोकगीतों के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे प्रेमलता के गाए कुछ लोकगीत। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब ग्रामीण बहनें सुने अपना कार्यक्रम आंचल। आज का कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में उपस्थित हैं गुंजन।

पेड़ काट कर सड़क बनाई, फिर उस पर गाड़ी दौड़ाई, धुआं उड़ाया, जहर फैलाया, फिर कहते हैं हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, बीमारी क्यों आई। आंचल कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को गुंजन की राम राम। बहनों, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन का आपने कभी सोचो है कि हमारी धरती माँ कितनी बीमार है? बाय बुखार है, जिसे हम साइंस की भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बाय सांस लेने में तकलीफ है, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जब बीमारी की वजह कोई वायरस ना है बल्कि हम खुद हैं। परिंदों की चहचहट अब कम होती जा रही है, जंगलों की प्रकृति खोती जा रही है, ढूंढते हैं सुकून हम एयर कंडीशनर की हवाओं में, मगर असली जिंदगी तो पेड़ की छांव में सोती जा रही है। मैंने कभी फुर्सत में बैठकर सोचिएगा कि जब हम छोटे थे तो गौरैया हमारे आंगन में आया करती थी, सुबह की धूप इतनी तीखी ना होती थी और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू सीधे दिल को हमारे जो है वो उतर जाती थी। आज वो कहाँ खो गए। आज हमने तरक्की तो बहुत कर ली है, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर ली हैं, लेकिन तरक्की की कीमत हमारी नदियों ने अपने पानी से और पेड़ों ने अपनी जान देकर चुकाई है। मानो एक कड़वो सच है, अक्सर हम कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, लेकिन सोचिए अगर उनके पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए साफ पानी ना होएगो तो वो दौलत का काम की का करेंगे वो दौलत को। हमें देखो कोई बड़ो आंदोलन ना चलाने हैं, बस अपने रोज़मर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, तभी हम अपने पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित कर पाएंगे। धूप तेज है, छाव की तलाश है, नदियाँ सूख रही हैं, पानी की प्यास है। अगर आज भी ना जागे हम इंसान तो समझो विनाश हमारे बिल्कुल पास है। मैंने हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जाने अनजाने ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी जो प्रकृति है उनको नुकसान पहुंचाती है। वो प्लास्टिक की थैली, वो खुला छुड़ा हुआ पानी का नल, वो बिना बात के गाड़ी का हॉर्न और धुआं, ये सब मिलकर हमारी धरती को का जो है दम घोट रहे हैं। प्रकृति के बिना इंसान का कोई अस्तित्व ना है, लेकिन इंसान के बिना ये प्रकृति ना और भी सुंदर हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि प्रकृति को बचाने की, ना खुद को अपने जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसको बचान की। मैंने अब हम यहाँ सोचेंगे कि हमारे एक अकेले से प्लास्टिक की थैली छोड़ देने से या पेड़ लगाने से या पानी की बचत करन से का ही जाएगो, है ना? तो याद रखिए बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर देश को हर नागरिक ये सोच ले कि मुझे अपनी धरती को साफ और हरा भरा रखना है तो हमारे देश की नदियाँ फिर से मुस्कुराएंगी और हवा भी फिर से शुद्ध हो जाएगी। आओ मिलकर कसम ये खाएं, जा धरती को स्वर्ग बनाएं, हर आंगन में पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। तो बहनों, आज जब पर्यावरण दिवस यानी कि कल जो हम मनाने जा रहे हैं 5 जून को, केवल कैलेंडर की एक तारीख ना रहने दें बल्कि जाए एक नए आंदोलन की शुरुआत बनाएं। संघ ही जब पर्यावरण दिवस पर सिर्फ एक सोशल मीडिया पर स्टेटस ना लगाएं बल्कि जमीन पर एक पौधा लगाएं, सब मिलकर जा धरती को फिर से हरा भरा बनाएं। फिर देखिए अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे ना तो ये क्या जवाब देती है।

0: बहनों, पर्यावरण को साफ सुथरो बनानो और वाको सुरक्षित रखनो हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। आइए जा विषय पर सुनते हैं एक परिचर्चा। प्रतिभागी हैं श्रीमती सुशीला, श्रीमती सीमा और संचालन करो है हमारी बहन ममता ने।
1: बहनों, आज के दौर में प्रदूषण जो है काफी फैलता जा रहा हुआ है। वातावरण इतना प्रदूषित हो रहा हुआ है कि उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जरा जरा से जो बच्चा है बेऊ किसी बीमारी से बचे हुए ना हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं परिचर्चा के लिए।

0: जानते हैं आपसे बहन आपका परिचय।
1: मेरा नाम सीमा है, ग्राम जादवपुर से हूँ मैं।
0: जी सीमा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और भी बहन हमारे साथ उपस्थित हैं, जानते हैं आपका परिचय।
2: को मेरा नाम सुशीला सिंह और मैं दुगनपुर से हूँ।
0: सीमा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इस समय पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसका क्या कारण है?
1: जी, इसका कारण है ये ट्रेन बस चल रही है, इनसे वायु प्रदूषण हो रहा है। और जो गांव में गंदगी रह रही है उनसे वायु प्रदूषण हो रहा है। हमें अधिक से अधिक अपने पास पड़ोस में घरों में साफ सफाई करनी चाहिए। और जो नालियों में पानी कीचड़ इकट्ठी होती है उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिनसे वायु प्रदूषण कम हो।
0: बिल्कुल सीमा जी, आप सही बात बता रही हैं कि अधिक से अधिक हमें धरती पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए और साथ ही साफ सफाई है उसको बरकरार रखना चाहिए। अब क्या करती हैं हमारी माताएं बहनें, क्या करती हैं सीमा जी कि अपने घर की तो सफाई कर लेती हैं, अब बात आती है कूड़ा की, तो कूड़ा लिया पड़ोस के दरवाजे पर इकट्ठा कर दिया या दरवाजे पर इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या सही है?
1: जी ये गलत है। सभी माताओं बहनों को अपने घर की और नालियों की, खड़ंजे की या आरसीसी है उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। सुबह उठ के अपने घर की भी सफाई करती है नहीं करती?
0: बिल्कुल।
1: उसी तरह अपने खड़ंजे पे या नालियों में साफ सफाई कर देंगी तो वायु प्रदूषण कम होगा, मच्छर कम होंगे, बीमारियां कम फैलेंगी।
0: बिल्कुल सीमा जी। अब यहीं पर सुशीला जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे अपने घर की साफ सफाई करती हैं तो उस कूड़े का कैसे प्रबंधन करती हैं, कहाँ उसको डालती हैं, खुले में डालती हैं या कहीं गड्ढा खोद के डालती हैं, कैसे उसका प्रबंधन करती हैं?
2: देखिए, हम लोग अपने घर में डेली साफ सफाई करते ही हैं और डेली साफ सफाई में जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है दिन भर का, हम एक बकेट में, बाल्टी में या किसी भी चीज में इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद घर से, गाँव से कहीं दूर जाकर, खेत में या फिर कहीं भी दूर जाकर एक गड्ढा खोद के उसमें उसको इकट्ठा करते हैं हमेशा। और हर महिलाओं को मैं तो यही कहती हूँ, गांव में, क्षेत्र में, घर में, हर जगह कहीं भी अगर आप रहते हैं, अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अपने घर से, गांव से दूर ही स्थान बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल सुशीला जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम कूड़ा को इकट्ठा करके दूर खेत में या कहीं भी मैदान में उसका गड्ढा खोदकर उसको दबा देती है, यानी जलाती भी नहीं है, जलाने से प्रदूषण फैलता है। बहुत अच्छी बात बताई
2: आपने। देखिए, प्लास्टिक वगैरह लोग जलाते हैं उससे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण फैलता है, उससे बहुत सारी वायु प्रदूषण जो फैलता है उससे बहुत सी बीमारियां होती हैं, फिर घर में दिक्कत होती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसलिए प्लास्टिक की जो पन्नी वगैरह होती है उस सब कूड़े के साथ ले जाकर कहीं गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए उसको, मतलब खत्म कर देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सुशीला जी। और जब बात जैसे अभी साफ सफाई की हमारी सीमा बहन बता रही थी, तो आप अपने घर में साफ सफाई किस तरह से रखती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखती हैं?
2: देखिए, सबसे पहली चीज, जब हम रसोई में काम करते हैं डेली, हमारा उसमें साफ सफाई होना जरूरी होता है। घर में बिस्तर वगैरह उसको डेली साफ साफ करना चाहिए, रोज झाड़ना चाहिए, रोज घर में दो बार तीन बार झाड़ू पोछा करना चाहिए। घर में बच्चे हैं उनको रोज नहलाना धुलाना चाहिए, खुद भी नहा धोना चाहिए, मतलब घर में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। खाने से पहले हमेशा बच्चों को ये सिखाना चाहिए, बेटा हाथ धोना है और साबुन से हैंड वॉश करना है, मतलब हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए, शौच करने के बाद भी साबुन से ही हाथ धोना चाहिए। बच्चों को भी अपनी ये चीज सिखाना चाहिए और खुद भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सुशीला जी, खाने से तो पहले, खास बात हम अपने बड़े बुजुर्गों से हमने भी सीखा है यही कि पहले हाथ धो लो फिर कुछ खाओ, खाने पीने की चीज, क्योंकि हम घर से बाहर जाएं या घर में हो, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे बैक्टीरिया हर समय मौजूद रहते हैं। हम कितनी भी सफाई कर लें लेकिन वो बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा कुछ भी खाना पीना है तो पहले हाथ धोना
2: साबुन से,
0: उसके बाद ही कुछ खाना पीना है।
2: बिल्कुल, जितना हम खुद को साफ रखेंगे, जितना हम अपने घर को, घर के बच्चे हैं, घर में हमारे सामान है, कोई भी चीज हम छूते हैं उस पर बैक्टीरिया होते ही हैं, बच्चे भी छूते हैं, बच्चे बाहर खेल के आते हैं, और वायु प्रदूषण तो ऐसी चीज है जो हर जगह होती है, हमें ज्यादा से ज्यादा हर चीज में साफ सफाई का ही ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सुशीला जी, जैसे बात आती है कि गर्मियों में तो हमारे छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं वो भी क्या करते हैं, कि दो दो बार नहा लेते हैं गर्मी के चलते, लेकिन जब सर्दी पड़ती है उस समय उनको पानी से बचाव रखना होता है, सर्दी में नहीं नहाते हैं, मतलब कपड़े चेंज करना उनका भी रहता है, तो क्या सर्दी में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए?
2: नहीं नहीं, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं है। सर्दी है ठीक है, उससे बचने के भी तरीके हैं, आप गर्म पानी से बच्चों को नहलाइए, गर्म पानी यूज करिए बच्चों के लिए उनको, बल्कि हमें तो पानी भी उबाल कर ही पीना चाहिए,
0: गर्म पानी ही
2: पीना चाहिए, ठंडी में भी पीते ही है ज्यादातर लोग, लेकिन गर्म पानी को भी उबालने के बाद उसको छान के पीना चाहिए, उसमें भी बैक्टीरिया निकलते हैं जब हम उबालते हैं पानी को तो।
0: बिल्कुल।
2: और उसी तरह जब ठंडी का सीजन है, बच्चों को नहला रहे हैं तो गर्म पानी से नहलाइए, गर्म पानी से नहलाने के बाद थोड़ा तेल वगैरह से मालिश कर दीजिए, हम जैसे गांव में रहती हैं औरतें तो ठंडी से बचने के लिए गर्म तेल करके बच्चों की मालिश कर देते हैं, ठंडी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा और साफ सफाई भी बराबर रहेगी।
0: अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे हम उनको सर्दी है ज्यादा, छोटे बच्चों को अगर ना नहला पा रहे हैं उनको, तो उनको मुंह हाथ धो के उनके डेली गर्म पानी से उनका
2: पोंछ देना चाहिए।
0: पोंछ देना चाहिए।
2: हाँ हाँ, से साफ सफाई बनी रहेगी ना, जो गंदगी आ रही है कपड़ों से निकल रही है, कपड़ों से जो बैक्टीरिया निकल रहे हैं वो बच्चों के शरीर में नहीं रहेंगे, सफाई हो जाएगी।
0: अच्छा सीमा जी, ये बताइए कि जो साफ सफाई है और जो हमारा स्वास्थ्य है, ये दोनों का क्या संबंध है?
1: जी हाँ, बहुत बड़ा संबंध है, इससे अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम अधिक बीमार पड़ेंगे।
0: यानी साफ सफाई के द्वारा हम जो बहुत सी बीमारियां हैं उनको कम कर सकते हैं।
1: जी,
0: जैसे जो हमारे शरीर में बच्चों के भी खुजली वगैरह हो जाती है, दाने निकल आते हैं, ये सब बीमारियां हमारी साफ सफाई से दूर हो जाती हैं।
1: जी बिल्कुल दूर हो जाती हैं।
0: अच्छा सीमा जी, जैसे जो आज के दौर में हमारे जो कारखाने खुल गए नए नए और जो रोजगार के लिए फैक्ट्री वगैरह खुली है, इनके चलते जो हमारा पेड़ों का कटान है, बाघों की जो संख्या है वो काफी कम हो चुकी है, तो इससे क्या हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है?
1: जी बहुत पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और जी, हमें अधिक से अधिक जितने पेड़ पौधे कटवाते हैं हम लोग, उनसे अधिक पेड़ पौधे लगवाने चाहिए हमें, जिससे प्रदूषण कम हो, और वायु प्रदूषण कम होगा तो हमें बीमारी कम होंगी।
0: तो आपके पौधे लगाने वाली बात जो कह रही हैं कि, तो आपके पौधारोपण करती रहती हैं क्या समय
1: जी,
0: समय
1: हाँ,
0: पर?
1: हम पौधारोपण करते रहते हैं।
0: जैसे बेटी की बर्थडे है या आपका शादी ब्याह है, तो उस समय आप लोग कोई पौधे का
1: लगाते हैं, यादगार भी रहे और आगे वाले टाइम में उसे कटवाएं तो आमदनी भी होती है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही है कि जैसे जो हमारे बहने हैं या भैया हैं उनके खेतों में अगर जगह ना है तो वो खेत की जो
1: मेड़ है उन पर भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे बहन भाइयों की शादी करनी होती है तो हम पेड़ कटवा के शादी कर लेते हैं, फिर पेड़ कटवाने के तुरंत बाद हमें पेड़ पौधे लगवानी चाहिए।
0: इससे बहनों क्या है कि हमारी हरियाली भी
1: बनी रहेगी और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा।
0: सुशीला जी, जैसे कि अभी आप बता रही थी साफ सफाई की बात, तो क्या खान पान से भी हमारा कुछ संबंध है स्वास्थ्य का?
2: बहुत बड़ा संबंध है। देखिए, हम खाते हैं, सबसे मेन चीज खाना ही होता है। जब हम खाते हैं तो खाना अगर हम साफ से नहीं खाएं, हम मार्केट से सब्जियां खरीद के लाते हैं, बहुत सारे उस पर केमिकल्स वगैरह भी लगे होते हैं और धूल मिट्टी भी लगी होती है। अगर हम लाते हैं, कोई फ्रूट लाते हैं, फल लाते हैं, कुछ भी बच्चों को देते हैं, तो हमेशा धोकर देना चाहिए बच्चों को। धोकर खाएंगे तो जो बैक्टीरिया है वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि खाने से ही बैक्टीरिया अंदर जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा, नई नई बीमारियां निकल रही हैं, आ रही हैं, देख रहे हैं, कभी कोई बीमारी फैल रही है, कभी कोई बीमारी फैल रही है, सारी खान पान से ही तो ज्यादातर फैल रही हैं।
0: आज देखा जाए तो जो हमारे किसान भैया हैं,
2: हाँ,
0: तो वो खेती से उत्पादन अधिक पाने के लिए तरह तरह के रसायन हैं, उर्वरक हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं
2: वही
0: उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो हम उस

0: खान पान से ही तो होता है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है, और हमारे किसान भाइयों को भी ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है
1: कि
0: कि ज्यादा से
1: रसायनों का कम से
0: ज्यादा
1: कम करें,
0: यूज मतलब देसी चीज का करें,
1: जैविक खाद या
0: जैविक
1: जैविक
0: खादों का
1: उर्वरक।
0: करें, हाँ, जिससे फसल भी शुद्ध हो और हमारा स्वास्थ्य भी शुद्ध हो और पर्यावरण भी हमारा शुद्ध रहे।
1: अभी सुशीला बहन क्या बताएं कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई,
0: हाँ
1: देखने में इतनी सुंदर देखने में लग रही कि मैंने काफी मतलब उसमें सारे मसाले डाल के बहुत अच्छी तरह से बनाई। खाने को जब दी है सब्जी, खुद खाने को बैठे हैं, तो उसमें इतना कड़वापन था, बहुत
0: वो
1: अजीब सा टेस्ट आ रहा था।
0: तो वो
1: तो वो सब
0: इसीलिए
1: यही था कि जो हमारे रसायन
0: हाँ
1: छिड़के जा रहे हैं, अभी इस समय माहू चल रही है,
0: जैसे
1: माहू की
0: अभी
1: रोकथाम के लिए हमारे किसान भैया छिड़काव कर रहे हैं रसायनों का,
0: जी,
1: सब्जी वाली फसल है उन पर, तो वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचा रहा
0: बहुत
1: है।
0: हानि पहुंचा रहा है। अभी हमने भी सुना है हमारे यहाँ पे भी कि मतलब सब्जियां, लौकी की सब्जी आप सुन रही होंगी कि हमने एक
1: जी
0: दिन पहले देखा तो छोटा सा था, शाम को किसान भाइयों ने उसमें इंजेक्शन लगाया और बड़ा कर दिया। तो ये इंजेक्शन वाली जो दवा चल रही है, अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जब दवा वो इस उस सब्जी में लगाई है और
1: जी
0: वही दवा हमारे पेट में जाएगी तो वो बीमारी तो फैलाएगी ही। आज की डेट में देख रहे हैं कैंसर पीड़ित ज्यादा मरीज दिखाई दे रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, तो वो सब इसी के कारण है। हम कोई गंदगी उठा के अपने आप से खुद से कुछ और नहीं खाते हैं, लेकिन जो सब्जियों में हम खा रहे हैं,
1: अनाजों में खा रहे
0: खा
1: हैं,
0: रहे हैं अनाज,
1: मसाले भी
0: हर
1: हैं,
0: चीज में
1: सभी
0: है,
1: चीज प्रदूषित
0: सभी
1: है।
0: चीज प्रदूषित होती जा रही। सिर्फ किसान भाई क्या है कि अपनी फसल बढ़ाने के चक्कर में ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सुशीला जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम अधिक से अधिक जैव रसायन, जो जैव उर्वरक हैं, उनका ही प्रयोग करें,
0: प्रयोग
1: तो
0: करें
1: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और
0: जी
1: जो
0: जी
1: हमारी खेत की उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो बरकरार
0: बरकरार
1: रहेगी, और
0: रहेगी,
1: साथ ही जो उत्पादन है वो तो अच्छा होगी, और लागत
0: भी
1: कमी आएगी,
0: कम
1: कम
0: आएगी,
1: आएगी।
0: बिल्कुल कम आएगी, क्योंकि जो दवाएं मार्केट में आती हैं वो महंगे से महंगी पड़ती हैं, और किसान भाई अपनी फसल को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा ज्यादा उत्पाद हो जाए, इस
1: बिल्कुल
0: चक्कर में वो महंगे से महंगा मतलब खाद दवाई वगैरह खरीद के लाते हैं। उनके लिए तो ठीक ही होता है कि उनकी फसल बढ़ जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वही चीज वो भी खाएंगे, आखिर वही चीज वो भी खाएंगे, उनको भी दिक्कत हो सकती है, और दुनिया तो खा ही रही है, फिर दिक्कत तो सभी को हो रही
1: मजबूरी
0: है,
1: आ जाती
0: मजबूरी
1: है।
0: हो जाती है।
1: अच्छा सीमा जी, ये बताइए कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनका
0: हो
1: हरी
0: जाएगा
1: सब्जियां हैं, खान पान है, उसके प्रति रुझान कम हो रहा है, तो ये फास्ट फूड क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए या बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है?
2: ये तो अपने स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो मैदे की सब्जियां हैं कम पचती हैं, मैदे की जो चाउमीन टिक्की वगैरह वगैरह हैं, ये पचाव कम करती हैं, इससे लीवर हमारा खराब हो जाता है, इससे बीमार पड़ जाते हैं, और इनकी जो ग्रोथ होती है मतलब बढ़वार होती है, वो भी रुक जाती है बच्चों की, अधिक बीमारियां बन जाती हैं, किसी की आंत में इन्फेक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ता है, तमाम तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती हैं। बच्चों को हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिनसे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बढ़वार भी अच्छी रहेगी।
1: बिल्कुल सीमा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी जो माताएं और बहनें हैं, उनको अपने बच्चों को कैसे भी बहलाकर फुसलाकर कि हाँ ये अच्छी है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इसको बच्चों थोड़ा थोड़ा करके उनकी आदत डालनी चाहिए। और बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं, अगर बच्चा नहीं खा रहा है, उनको पसंद नहीं है, लो पैसे लो, दुकान से चीज ले आओ और ये खा लो, वो पैकेट बंद चीजें, कब की पैकेट बंद है, कब का क्या है, उनका कुछ भी पता नहीं रहता
2: पता
1: और वो
2: नहीं रहता
1: नुकसानदायक रहती है।
2: रहती हैं।
1: चलिए, आज के कार्यक्रम में सीमा जी आपका और सुशीला जी आपका जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी, जब इसे पर बहनों अभी आपने सुनी परिचर्चा, प्रतिभागी ही श्रीमती सीमा और श्रीमती सुशीला, संचालन करो हमारी बहन ममता ने। बिल्कुल बहनों, पर्यावरण हमारा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको हम साफ सुथरा बनाए कर रखें, उसे सुरक्षित रखें, कम से कम जो है प्लास्टिक की थैली है उनका प्रयोग करें, पानी को बचाएं, और साथ ही साथ आसपास अगर कहीं भी गंदगी दिख रही है तो उसको हम साफ़ कर दें, किसी सरकारी कर्मचारी का आने का इंतज़ार ना करें, घर को भी साफ़ सुथरा बनाकर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तभी हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा, तब हम जाकर खुलकर सांस ले पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। बहनों, बातें हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

बहनों, अभी आपने सुनो प्रीति सक्सेना की आवाज में गाओ जो लोकगीत, और जाए लोकगीत के बाद बहनों हम आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर रखें, उसे स्वस्थ रखें। धरती की पुकार है कि आप उनको अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें, पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। जाई के साथ अब अपनी बहन गुंजन को दो अनुमति। राम राम।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम आंचल, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अपराह्न के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप तक पहुंचेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार

0: विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच

आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप श्रोता जुड़े हैं आकाशवाणी रामपुर की पहली सभा के कार्यक्रमों से। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 और 24 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हिट्स ऑफ 90s आप सुनेंगे।

सुनहरा दौर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है आज की आपकी रेडियो होस्ट सुरिंदर कौर। सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत वास्तव फिल्म से हमने लिया है। आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति की और इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आपने सुना सोनू निगम और श्रद्धा पंडित को। फिल्म का नाम था संघर्ष। कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत दीवानगी फिल्म से, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम। इस गीत की धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने।

कार्यक्रम का अगला गीत चाहत फिल्म से, आवाज़ें हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की। इस गीत की धुन बनाई है श्याम सुंदर ने।

दिल से, ये फिल्म है जिसका गीत अभी आप सुन रहे हैं। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एम जी श्री कुमार की, ए आर रहमान का संगीत है।

और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फिल्म का नाम डर, गायक कलाकार उदित नारायण और इस गीत को संगीत से संवारा है आनंद बख्शी ने।

सुनहरा दौर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। अब से लेकर संध्या 4 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। संध्या 4 बजे अपनी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: साथियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी, क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही हैं।
1: अब कहाँ, नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है। कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी।
0: और वो छू मंतर हो गया सारा दुख सारा
1: हाँ
0: दर्द, क्योंकि देखिए ना, हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है। और हम ऐसे हैं ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले
1: बिल्कुल।
0: ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में। तो
1: बिल्कुल।
0: हर किसी के साथ ऐसा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी
0: किसी
1: ने
0: ने
1: कुछ कह
0: फोन नहीं
1: दिया
0: किया तो नाराज हो जाते हैं,
1: तो
0: परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई गले लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर, उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी जिंदगी से, अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हों तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखे, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो
0: दूर हो
1: जाता
0: सकता
1: है।
0: है। और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद, यानी
1: बिल्कुल।
0: बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना।
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था, पत्थर कंकड़, उससे फेंका और आम जो

0: टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी। कई लोग झुंड होता था बच्चों का, तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे। और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
1: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा
0: तोता
1: सा
0: खास तौर
1: हाँ
0: से खा ले,
1: खा लिया तो भी हम उसे धोखे खा लेते
0: तो
1: थे,
0: कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो
1: और भी
0: मीठा
1: मीठा
0: और मीठा होगा,
1: होगा।
0: और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो
1: हाँ
0: हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
1: आपके
0: वो भी
1: क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं
0: लिख
1: एक,
0: भेजें।
1: हाँ और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन
0: बिल्कुल
1: कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
0: विविध
1: बताइए।
0: भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें, और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं
1: हाँ
0: आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्या है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप

0: बाहर आ गई तो
1: हम श्रोताओं
0: श्रोताओं
1: के
0: की
1: कमेंट्स कैसे
0: कैसे
1: पढ़ेंगे?
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन लें और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनकी परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर

0: ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच
1: और
0: कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के।
1: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया, और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छाव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें,
1: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे ही आप घुटने तक ही कर
0: अब तो
1: दिया।
0: घुटने तक,
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल,
1: इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना, तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
0: बिल्कुल,
1: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी, और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
1: जी
0: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग-अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा, और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
1: छूमंतर हो
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: थी, है ना।
0: लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक
1: गीत
0: गाना
1: सुने
0: सुनवाने का।
1: सुनते हैं गीत।

0: यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ,
0: से।
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है ममता जी। एक
0: इन
1: हमारे
0: वीबर ने लिखा था ये
1: जी
0: गाना, और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए, तीनों देवरानी, जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती
0: बिल्कुल सही बात है।
1: है।
0: तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है। तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहां पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई, बहुत
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
0: जी तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो, तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए, जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं, बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाए, प्यार तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखें आप।
1: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहां जरूरी है और कहां नहीं है,
0: बिल्कुल
1: कहां हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहां हमें गले।
0: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी
0: आम,
1: आज
0: आम बहुत खास है कहने
1: आम
0: को,
1: आज
0: आम
1: खास हो गए
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बहार आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में,
1: हाँ
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का
1: कभी
0: रस
1: मैंगो
0: पराठे के
1: शेक बना
0: साथ, मैंगो
1: के
0: शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
0: शक्कर
1: दो,
0: डाल दी।
1: फिर
0: हाँ
1: माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है उसमें थोड़ा दूध डाल दो, फिर उसमें इलायची डाल दो,
0: ज्यादा
1: ऐसे करते करते करते फिर उसमें
0: हो
1: थोड़ी
0: जाता।
1: बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है, और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, तो ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले, फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है, तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो,
0: बस
1: हाँ
0: मतलब एक आम जैसे
1: हाँ
0: तैसे,
1: हाँ खा
0: उससे
1: लिया,
0: ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है
1: फिर अगर
0: तो
1: जब
0: ये।
1: आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान
0: अच्छा,
1: रख
0: तो
1: सकते हैं।
0: मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल
0: हाँ,
1: खा सकते हैं,
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन हो गए, क्योंकि
1: हाँ
0: अमूमन ये कहा जाता है, अरे क्या बना है, आम का रस और पूड़ी,
1: पूरी
0: तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूड़ी खा चुके
1: और
0: हैं।
1: लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आमरस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने में।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में
1: जी
0: खासतौर से, ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो
1: चौसा
0: उसमें
1: आम भी
0: जो,
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत
1: बिल्कुल
0: नहीं है।
1: जरूरत ही नहीं है उसमें, और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता
0: अभी
1: है,
0: लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम
1: हाँ
0: बहुत मीठा आ रहा।
1: केसर आम है, फिर उसके बाद में जो बैगन फली आम जो आता है वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं, वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया, पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है,

0: सच मानिए, एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
1: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले खाए नहीं, लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं,
0: जी
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या
0: जी
1: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है, वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप उग
1: पनप
0: जाते हैं।
1: जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी
0: हाँ
1: हमने कुछ गुठलियों से आम
0: हम
1: लगाए
0: लगाए
1: हैं
0: हैं।
1: और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
0: हाँ,
1: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
0: और
1: लेते
0: वो
1: थे।
0: छोटे छोटे जो चूसने वाले आम थे ममता
1: हाँ
0: जी, वो
1: हाँ और
0: आते थे।
1: आप तो कह रही कि एक आम दो
0: हाँ,
1: फांक, वो तो
0: ओ ममता जी, उस जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
1: उसमें,
0: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
1: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
0: हाँ,
1: भी,
0: केमिकल नहीं
1: कोई
0: होते
1: दवा
0: थे।
1: मिला के नहीं, वो सीधे देसी
0: और
1: आम
0: खेलते
1: मिलता
0: कितने थे
1: था।
0: ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिक पारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रखकर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे,
0: हाँ,
1: और
0: ये
1: आम
0: होठों
1: का
0: के यहाँ पे।
1: और आम का पना भी बनता था।
0: हाँ
1: और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
0: ओहो,
1: तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली है।
0: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
1: हाँ,
0: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
1: आम
0: घी लगा
1: पापड़।
0: के, आम पापड़ उसमें डाल के, और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
1: अमावट भी कहा
0: जी
1: जाता है
0: जी
1: जिसे। तो और बोलिए।
0: एक साथी ने लिखा है कि भाई, आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
0: आप एक गीत सुन ले।
1: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ,
1: क्या बात
0: शाम
1: है।
0: को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है।
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है, और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना
1: मतलब
0: चाहिए।
1: आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं
1: था।
0: मिलाना है
1: बिल्कुल,
0: उसे।
1: मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

शुभ संध्या। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई से कार्यक्रम सुन रहे थे। संध्या के 4 बजने को हैं। आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखो, ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होकर कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सब इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि स्टैम में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं। और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइक्लिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
2: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहां पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहां से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लीकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
2: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: कमांडेंट साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू।
0: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उसपे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबेस में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी बेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है। और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आमी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आमी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
3: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है।
3: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 केजी गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं।
3: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं।
3: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल चेयर बेंच कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी न केवल रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है, अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: और सर हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely. 80 kgs वेस्ट, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है, उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें, डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें आप टेबल कबर्ड तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से साइकिल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफल मैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में। प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई नीट सीरियस और एसएसबी सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान वो अपने बच्चों के खिलौने किताबें ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में

0: किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफ गार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
1: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है। हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा, तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। अपना

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा

हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: Examen.
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी रामपुर है। संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेट प्रोग्राम आज शाम।

आज शाम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन का नायक होता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं, अपने सपने होते हैं और उन सपनों तक पहुंचने की एक लंबी यात्रा होती है। इस यात्रा में कभी खुशियां मिलती हैं, कभी निराशाएं, कभी तालियां सुनाई देती हैं तो कभी आलोचनाएं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है, वही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। कहते हैं सिकंदर, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में विजय, साहस और आत्मविश्वास की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ प्रतियोगिता जीत लेने वाला ही सिकंदर होता है? शायद नहीं। असली सिकंदर वो है जो अपने डर पर जीत हासिल करे, जो अपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन ना छोड़े, जो हार को अंत तक नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझे। आज का दौर बहुत तेजी से बदल रहा है, हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।

प्रतिस्पर्धाएं पहले से कई अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे समय में कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया की चमक दमक में हमें अक्सर ऐसा ही लगता है कि बाकी सभी लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा से गुजर रहा है। हर मंजिल का अपना रास्ता वो खुद चुन रहा है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हम किसी और को हराना चाहें। जीवन तो वो सफर है जिसमें हमें हर दिन अपने कल से बेहतर बनना है। अगर आज आपने कोई नई बात सीखी, किसी का डर सामना किया, तो किसी मुश्किल का पार किया है, तो कई बार किसी की मदद भी की होगी, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में एक एक कदम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अपने स्कूल और कॉलेजेस के दिनों को याद करते हैं तो सिर्फ किताबें और परीक्षाएं ही याद नहीं आती हैं, बल्कि याद आते हैं वो दोस्त जो शरारते करते थे, याद आते हैं वो सपने जो हम खुलकर आसमान के नीचे बैठकर देखा करते थे। उन दिनों में एक अजीब सी बेफिक्री थी, एक विश्वास होता था कि जब हम दुनिया बदल सकते हैं। शायद इसी भावना को लेकर अब जो हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं वो इस खूबसूरती को बयां करता है। ये गीत सिर्फ युवाओं का गीत नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का गीत है जो अपने सपनों को जीने का साहस करता है। हर उस इंसान का गीत है जो जीवन की चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करना पसंद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हौसले बुलंद हैं तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं।

0: मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं।
1: आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आज शाम आकांक्षा के साथ। श्रोताओं, जिंदगी में एक बात बहुत जरूरी है, खुद पर भरोसा। जब आप पूरी दुनिया के सामने और आपके ऊपर कोई फैसले पर सवाल उठाए, तब भी अगर आपके भीतर से ये आवाज गूंजती रहे कि मैं कर सकता हूं, तो समझिए सफलता की आधी दूरी आपने तय कर ली है। अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना ज्यादा करने लगते हैं। कोई हमसे ज्यादा सफल दिखता है, कोई हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली, तो कोई ज्यादा लोकप्रिय। लेकिन सच तो ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हमारी असली ताकत दूसरों के जैसा बनने में नहीं, बल्कि खुद को खुद से बेहतर बनाने के रूप में है। आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बारीक अंतर होता है। अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, जबकि आत्मविश्वास कहता है मैं भी अच्छा हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं। यही सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जीवन में कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, कई बार सपने पूरे नहीं होते, कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, लेकिन ठोकर हमें बहुत कुछ नया सिखा के जाती है। जो इंसान गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, वही असली विजेता होता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत आंकिए। और हर बार खुद से सिर्फ इतना कहिए

श्रोताओं, जिंदगी एक किताब है और हर दिन इसमें एक नया पन्ना जुड़ता चला जाता है, कभी सफलताओं का तो कभी संघर्षों का। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास रखता है वो एक अपना अध्याय लिखता चला जाता है। फिलहाल अब आज शाम से इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपकी जो ये जीवन की खूबसूरत किताब है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष जोड़ेंगे और सफलताएं जोड़ेंगे। निसंदेह असफलताएं आपके सामने आएंगी, लेकिन संघर्षों के साथ आप इन्हें सफल बनाते चले जाएंगे। फिलहाल आप आकांक्षा को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत, इस वादे के साथ कि आप मुस्कुराते रहेंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कम्पेट प्रोग्राम आज शाम। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अब युवा साथियों का दैनिक प्रोग्राम युववाणी। कार्यक्रम आपके साथ स्टूडियो में लेकर हाजिर हैं असरार और इकरा।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी असरार मियां।
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो मेजबान इकरा शाहिद।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुन रहे होंगे अपना प्रोग्राम युववाणी। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आज के सवाल के साथ।
1: और हमारा आज का सवाल है, किस संस्थान ने भारत का पहला इनक्यूबेटर से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है?
0: सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। किस संस्थान ने भारत का पहला इंक्यूबेटर से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है?
1: और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना है हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज के आज की अपडेटेड पोस्ट की कमेंट सेक्शन में, और अपना सही जवाब टाइप कर हमें शेयर कर दीजिए। सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। पर जाने से पहले हम ये पूछना चाहते हैं अशरार, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा महत्वपूर्ण दिन है?
0: हाँ इकरा, आज है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन उन बच्चों के लिए है जो हिंसा, डर और गलत व्यवहार का शिकार हुए। पता है आपको इकरा, इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को की गई थी।
1: जी अशरार, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या आप जानते हैं कि बच्चे हमारे समाज और देश का भविष्य होते हैं? उन्हें प्यार, सुरक्षा और अच्छे माहौल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, लेकिन इकरा कई बार कुछ बच्चे मारपीट, डांट फटकार, बाल मजदूरी, बुलिंग और मानसिक दबाव का शिकार हो जाते हैं।
1: और आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण ऑनलाइन बुलिंग का भी शिकार हो जाते हैं, जो हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है।
0: बिल्कुल, बच्चे डर की वजह से अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं।
1: जी अशरार, इसीलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों से प्यार से और धैर्य से बात करें। हम कोशिश करें और जानने की इस तरीके से कि उन्हें क्या प्रॉब्लम स्ट्रगल कर रही है या किस वजह से वो हमसे अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं।
0: हाँ, अगर कभी हमारे आसपास कोई बच्चा उदास या डरा हुआ दिखाई दे तो हमें उससे बात करके उसे सुरक्षित महसूस करवाना चाहिए,
1: क्योंकि एक सुरक्षित और एक खुशहाल बचपन ही हर बच्चे की एक चाइल्डहुड की पहचान होती है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि कोई भी बच्चा अगर आपको उदास दिखता है या मायूस दिखता है या कभी कभी चिड़चिड़ा बर्ताव करता है, तो कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए उस बच्चे से कि आखिर क्या कारण है जो वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। हो सकता है कोई बात उसे सता रही हो या उसके माइंड में कोई चीज़ उसको इस तरीके से डिस्टर्ब कर रही हो जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है। उसकी दोस्त बनिए, उसका साथ दीजिए और उसका हौसला बढ़ाइए ताकि उसका चाइल्डहुड खूबसूरत हो सके।
0: बिल्कुल, हमारा फ़र्ज बनता है, ये जिम्मेदारियाँ सारी हमारी हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी बातों को सुनें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज है हमारा स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव, जिसका आज का टॉपिक है वास्तविक बुद्धिमत्ता बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी रियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: आपको हमें बताना है कि रियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का भेदभाव क्या है और किस तरीके से ये हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। हमें रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत कुछ कर रहा है खास आपका इंतजार।
2: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
3: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे।
3: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। जाने से पहले हमने कहा था वक्त हो चुका है हमारी उस खास सेगमेंट का जो हमारे श्रोताओं की तरह कुछ खास है। चलिए शुरू करते हैं हमारी सेगमेंट कुछ खास है आज।
4: कुछ ख्वाबों की बात,
5: कुछ अपनों का साथ,
4: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्नी
5: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
4: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
5: वाकई कुछ खास है आज,
4: कुछ खास है आज।
3: दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ और भी चमकते जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है नूतन। नूतन केवल एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि अभिनय की एक ऐसी मिसाल थी जिन्होंने अपनी सादगी, भावना और शानदार अदाकारी से लाखों लोगों के दिलों को जीता। उनकी आंखों की मासूमियत और चेहरे के भाव ही उनके अभिनय की सबसे बड़ी पहचान थे।
6: नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम नूतन समर्थ बहल था। उनकी माता शोभना समर्थ हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी। फिल्मी माहौल में पली बड़ी नूतन ने बहुत छोटी उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा। साल 1950 में उन्होंने फिल्म हमारी बेटी से अपनी करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही एक अलग पहचान दिला दी।
3: नूतन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह हर किरदार को पूरी सच्चाई के साथ निभाती थी, चाहे वह एक साधारण गांव की लड़की का रोल हो, एक संघर्षशील महिला का या फिर एक भावुक माँ का। वह हर भूमिका में जान डाल देती थी। उनकी फिल्में सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की को आज भी भारतीय सिनेमा में बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों को भावुक भी किया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया।
6: नूतन ने अपने समय में कई पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किए। उस दौर में जब फिल्मों में महिलाओं के किरदार अक्सर सीमित होते थे, नूतन ने ऐसे पात्र निभाए जो मजबूत, आत्मनिर्भर और समाज को नई सोच देने वाले थे। इसी कारण उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री में से गिना जाता है।
3: फिल्मों के अलावा नूतन एक सरल और संस्कारी व्यक्तित्व की मलिका थी। उन्होंने 1959 में रजनीश बहल से विवाह किया और अपने परिवार को भी पूरा समय दिया। उनके पुत्र मोनीश बहल आगे चलकर फिल्मों और टीवी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता बने।
6: 21 फरवरी 1991 को नूतन इस दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनकी फिल्में और उनका अभिनय आज भी जीवित है। जब भी भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों की बात होती है, नूतन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची प्रतिभा, मेहनत और सादगी इंसान को अमर बना देती है। नूतन भारतीय सिनेमा का एक ऐसा चमकता सितारा है जिसकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर देती है। तो दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं भारतीय संगीत जगत के उस महान सितारे के बारे में जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ।
3: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं SP Balasubramanian जी की, जिन्हें लोग प्यार से SPBB कहते हैं। भारतीय संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनकी आवाज हर पीढ़ी के दिलों में बसती है।
6: उनका जन्म 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन संगीत के

0: उनका जुनून उन्हें इस क्षेत्र में ले आया।
1: श्रोता बाला सुब्रमण्यम जी ने अपने करियर में 40,000 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जो अपने आप में ही विश्व रिकॉर्ड माना जाता है। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम समेत कई भाषाओं में गीत गाए।
0: दोस्तों, उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी मिठास और भावनाओं की गहराई। चाहे रोमांटिक गीत हो, भक्ति गीत, दर्द भरे नगमे या फिर जोशीले गाने, हर शैली में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।
1: अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो तेरे मेरे बीच में, पहला पहला प्यार है, दीदी तेरा देवर दीवाना, मेरे रंग में रंगने वाली जैसे कई सुपरहिट गीत आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं।
0: दोस्तों, उन्होंने सिर्फ गायक के रूप में ही नहीं बल्कि डबिंग आर्टिस्ट, अभिनेता और संगीत निर्देशक के रूप में भी काम किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय सिनेमा का अनमोल रत्न बना दिया।
1: क्या आप जानते हैं कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया।
0: इतना ही नहीं दोस्तों, उन्हें 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। ये उपलब्धि बताती है कि उनकी कला को पूरे देश ने कितना सम्मान दिया।
1: उनकी आवाज़ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीयों के दिल में गूंजती है। उनकी गायकी ने भाषाओं और सीमाओं की दीवारों को तोड़ दिया।
0: दोस्तों, उनकी एक और बहुत खास बात थी, यानी उनकी विनम्रता। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वे बेहद सरल और जमीन से जुड़े इंसान थे। युवा कलाकारों को प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना उन्हें बहुत पसंद था।
1: साल 2020 में उनके निधन की खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया, लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं, वे अपनी कला के जरिए हमेशा लोगों के दिल में जीवित रहते हैं।
0: चलिए दोस्तों, इस महान गायक को याद करते हुए सुनते हैं उनका एक बेहद प्यारा गीत।

0: कुछ ख्वाबों की बाग,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट कुछ खास है आज। अब बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स की ओर।

0: स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसमें ताकत से ज्यादा ध्यान, धैर्य और सटीक निशाने की जरूरत होती है। इस खेल का नाम है तीरंदाजी, जिसे अंग्रेजी में आर्चरी भी कहा जाता है।
1: तीरंदाजी में खिलाड़ी धनुष और तीर का उपयोग करके एक निश्चित दूरी पर रखे गए गोल लक्ष्य पर निशान लगाती है। लक्ष्य कई रंगों के गोल घेरे में बना होता है। लक्ष्य के बीच वाले हिस्से को बुल्स आई कहा जाता है और वहां तीर लगने पर सबसे अधिक अंक मिलते हैं। प्रतियोगिता के अंत में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता बनता है।

0: डोरी को पीछे खींच कर छोड़ दिया जाता है। तीरंदाजी में शरीर का संतुलन, आंखों का फोकस और मन की एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि ये खेल खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
1: अगर कोई तीरंदाजी सीखना चाहता है तो वे किसी आर्चरी अकेडमी, खेल प्रशिक्षण केंद्र या स्पोर्ट्स क्लब में प्रवेश ले सकता है।

0: शुरुआत में प्रशिक्षण धनुष पकड़ने का तरीका, सही मुद्रा, लक्ष्य साधना और तीर छोड़ने की तकनीक सिखाते हैं। नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से कोई भी इस खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।
1: तीरंदाजी कई स्तर पर खेली जाती है। सबसे पहले खिलाड़ी स्कूल और स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इसके बाद जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल और ओलंपिक्स तीरंदाजी के सबसे बड़े मंच माने जाते हैं।
0: भारत में तीरंदाजी तेजी से लोकप्रिय हो रही है और कई खिलाड़ियों ने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। भारतीय तीरंदाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, तरुणदीप राय, ज्योति सुरेखा विनर्मा, अदिति स्वामी, धीरज बोम देवरा, ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा, अंकिता भगत और प्रवीण जाधव शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।
1: तीरंदाजी केवल एक खेल नहीं है बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की सीख भी देता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर हो और हम लगातार मेहनत करते रहें तो सफलता का निशाना जरूर लगा सकते हैं। श्रोताओं, ये थी हमारी सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब वक्त हो चुका है हमारी आज की स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव का, जहां पर आज हम बताने वाले हैं हमारे स्पेशल टॉपिक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस रियल इंटेलिजेंस के बारे में। और आपके स्पेशल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं। हमें पहला कमेंट मिला है नमिता अग्रवाल की तरफ से। वो लिखती हैं, हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक रियल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इन माय ओपिनियन AI कैन डू मेनी ऑफ आवर टास्क क्विकली एंड ईजिली, बट इट कैन नॉट मैच ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। मशीन्स कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बट दे कैन नॉट फील एनीवनस हैप्पीनेस और सैडनेस। Therefore, AI should be used as a helpful tool, but one should always put their own thinking and understanding first. Thank you, Namita Agarwal, Mohan Agarwal, Kritika Agarwal, Manya Agarwal, Madhav Agarwal.
2: तो दोस्तों, हमारा अगला कमेंट आया है मोहन अग्रवाल जी की तरफ से। नमस्कार यूवाली टीम, आज का विषय पढ़कर मुझे लगा कि तकनीक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। AI की मदद से पढ़ाई, नौकरी और रोजमर्रा के कई काम आसान हुए हैं, लेकिन सही और गलत का फैसला करने की समझ केवल इंसानों के पास होती है। मशीनें हमारे निर्देशों पर काम करती हैं, जबकि इंसान अपने अनुभव और विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए हमें नई तकनीकों का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन अपनी सोचने समझने की क्षमता को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। मोहन अग्रवाल, अमित अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, स्मिता अग्रवाल, मोहन जी, आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा विचार साझा करा है। अब आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतजार। जब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, एआई की बात हो रही है और अभी अभी हमने एक एआई का कुछ स्पेसिफिक फीचर देखा है, जिसमें अभी जो हमें कमेंट नमिता अग्रवाल का आया था वो इंग्लिश में शो हो रहा था, इसलिए हमने उसे इंग्लिश में पढ़ा। अश्रा, क्या कहते हैं आप, उसे एक बार हिंदी में ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ा जाए?
1: हाँ बिल्कुल इकरा, चलिए शुरू करते हैं अब हिंदी में। नमस्कार सभी साथियों को, जो कि कमेंट आ रहा है नमिता अग्रवाल जी की तरफ से। आज का विषय वास्तविक बुद्धिमत्ता बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बहुत रोचक लगा। मेरे अनुसार एआई हमारे कई काम जल्दी और आसानी से कर सकता है, लेकिन इंसानों की सोच, समझ, भावनाएं और अनुभव की बराबरी नहीं कर सकता। मशीनें जानकारी दे सकती हैं, लेकिन किसी की खुशी या दुख को महसूस नहीं कर सकती। इसलिए एआई को एक मददगार साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी सोच और समझ को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे नमिता जी। इनके साथ साथ नमिता अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, कृतिका अग्रवाल, मान्य अग्रवाल।
0: अब हमारा अगला कमेंट है अक्ष सक्सेना की तरफ से। वो लिखते हैं, नमस्कार युवानी टीम जी, बहुत बहुत नमस्कार। वो कहते हैं, मैं एक छात्र हूँ और आज का विषय मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रहा। आजकल पढ़ाई में मैं भी एआई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ। इसकी जानकारी जुटाना और नई चीज़ें सीखना आसान हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल एआई पर निर्भर रहना सही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच, मेहनत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। एआई हमारी मदद कर सकती है, लेकिन सीखना और सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर होती है। इस शानदार चर्चा के लिए युवानी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अक्ष, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एज अ स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है कि हम एआई से हेल्प लें, नई चीज़ें सीखें। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सही निर्णय लें, सही फैसला लें और चीज़ को सीखने के बाद उसकी जिम्मेदारी लें कि किस तरीके से वो हमारे लिए मददगार हो सकती है और एआई पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहें। आपका ये प्यारा सा कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, अभी और भी इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। जब तक सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: श्रोता, हमारा अगला कमेंट आया है हमारे बहुत ही ख़ास श्रोता की तरफ से, हाजी गफ्फार खान की तरफ से। वो लिखते हैं गांधी समाधि रोड रामपुर से, हाजी गफ्फार खान, रज़िया खान, सिमरन खान। उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरीके से साझा किए हैं। कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। वास्तविक बुद्धिमत्ता मनुष्य के मस्तिष्क को स्वाभाविक क्षमता है। ये केवल जानकारी याद रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनाएं, आत्म जागरूकता, नैतिक मूल्य, इंट्यूशन और जीवन के अनुभव भी शामिल होते हैं। मानव बुद्धिता जिसे उसको किसी भी तरीके की कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ वो लिखते हैं कि AI मानव द्वारा निर्मित एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीन को इंसान की तरह सोचने और सीखने की क्षमता देती है। इसके जनक जॉन मैकार्थी ने बोला था कि AI डेटा, एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग के माध्यम से काम करता है। ये बहुत कम समय में अरबों डेटा एक साथ इकट्ठा करके उसका परिमाण दे सकता है। आपके विचार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिस तरीके से आपने हमें ये भी बताया कि AI का निर्माण किसने किया है, और आपने एक बहुत ही सटीक तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से रियल लर्निंग, जो कि ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती है, जो हमारे नेचर का, हमारी भावनाओं का मिक्सचर होती है, वो किस तरीके से डिफरेंट है आर्टिफिशियल लर्निंग से, जिसे मानव ने ही बनाया है। आपके विचार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इसरार
1: जी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही हाजी गफ्फार जी ने कि हमें AI का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए कि वो सिर्फ हमारी भावनाओं से नहीं खेल सके, हमारी भावनाएं हमारे पर डिपेंड करती हैं। और आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, सुनिए, सुनते हैं, चलिए एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी कमेंट है गंगा सिंह रावत जी की तरफ से, जो कहते हैं एआई अपनी जगह है और वास्तविक बुद्धि अपनी जगह है। एआई तकनीक में सहायक हो सकती है मगर वास्तविक बुद्धि मनुष्य के आंतरिक और बाह्य विकास दोनों में सहायक होगी। सुना जा रहा है भविष्य में स्कूलों में एआई टीचर हो सकते हैं। क्या एआई टीचर्स बच्चों के मन के भावों को समझ सकेंगे? हरगिज नहीं। इसलिए कृत्रिम बुद्धि का वास्तविक बुद्धि से कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल बहुत ही सही बात की है गंगा सिंह जी कि एआई इंसान की भावनाओं को नहीं समझ सकता। ये सिर्फ कुदरत ने इंसानों के अंदर दी है। जो जीवित है सिर्फ वही समझ सकता है कि कौन क्या फील करता है, कौन किस तरीके से किसको समझना है। ये सिर्फ एक रियल टीचर ही समझ सकता है, ना कि एक एआई टीचर। आपका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का और स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के सही जवाब को जानने का। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल था कि संस्थान ने भारत का पहला इंक्यूबेटर से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, जिसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी मोहम्मद रफीक पंवार, नंद कुमार ठाकुर, नानक खन्ना, जगदीश धाकड़, दीपेंश वर्मा, जोन डी कैस्ट्रो, अजीत कसाना, हिरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, एम अफजल ताज, धर्मेंद्र छेपा, चौधरी राजवीर सिंह, प्रवीण चौहान, धर्मवीर कश्यप, सत्येंद्र चंसोलिया पंजोलिया, विट्ठल सुरेशे, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, लाल मोहम्मद अंसारी, सिद्धार्थ अनिल बी गोटके, बालवंत कुमार वर्मा, महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लालगिरी गोस्वामी, आकाश रस्तोगी, राधेश्याम पांडे, मोहम्मद सईद अब्बासी, गुरमीत सिंह मीता, सुरेश जायसवाल, हाजी गफ्फार खान, मसरूर हसन, रवि रस्तोगी, बी कमाल, राम कुमार रेवर, फगुराम यादव, संजय ढींगिया, नवी हसन अब्बासी, मोहम्मद यासीन अनजान, BL धाकड़, पुंजाजी नावकर, मुजफ्फर अली खान, शकील अहमद इदरीशी, सुरेश गगनेजा, सतशिव आसिफ चौधरी, राजेश, विजय सुरालकर, देवशंकर तमूरिया, मुकेश कश्यप, राष्ट्रपाल गजभैये, दुर्गाराम साहू, देवशंकर तमूरिया, मोहम्मद हफीज। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी श्रोता साथी जिन लोगों ने आज के सवाल का सही जवाब दिया।
1: श्रोताओं हमें आप सबके जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन को फिल करने के लिए अपनी नॉलेज से। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था

0: आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और आपकी कमेंट्स पढ़कर हमें एहसास हुआ है कि किस तरीके से मानव ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमारा आविष्कार हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, जो कि AI है। लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि उस पर निर्भर हो, क्योंकि आज की सोसाइटी में अगर आप बच्चों को ही देख लें या हमारी यंग जनरेशन या जो भी लोग सोशल मीडिया या AI का यूज़ करते हैं, वो पूरे तरीके से उस पर निर्भर हो चुके हैं। और इसके कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर हम नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को कम करता है। अगर हमें किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता है तो हम स्पेसिफिकली जाकर AI पर सर्च कर लेते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता हो। और इसी वजह से आने वाली जनरेशन में ये माना जा रहा है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो चुकी है। और जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन जीज़ में आजकल अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। तो हम आपसे एक छोटी सी इल्तजा करेंगे कि प्लीज़ आप AI का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, पर उस पर पूरे तरीके से निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ह्यूमन ब्रेन का मुकाबला नहीं कर सकती। आप अपने अंदर ही सक्षम हैं और हर चीज़ पर कैपेबल हैं उसे करने के लिए।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताना न भूलें हमारे आज के पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901। आप लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876 और हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त असरार मियां
0: और इकरा शाहिद को कार्यक्रम समाप्त करने की। हमें रहेगा आपकी चिट्ठियों का इंतजार। नमस्कार, नमस्कार।

0: इकरार असरार के साथ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई जिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रामपुर है।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वागथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

ये आकाशवाणी रामपुर है, सुनिए जरूरी सूचना। माननीय मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः 10 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय रामपुर के प्रांगण में होगा। उपयुक्त रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी।

जो कि साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेंगी, जिसमें योग्यता हाई स्कूल इंटर स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी अधिकाधिक संख्या में रोजगार संगम पोर्टल पर जाकर प्रतिभाग कर सेवायोजित हो सकते हैं। बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार संगम पोर्टल rozgarsangam.up.government.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। अतः इच्छुक अभ्यर्थी मेले में प्रतिभाग हेतु अपनी योग्यता अनुसार अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना यूजर अकाउंट खोलकर प्रतिभागी कंपनियों पर आवेदन कर सकते हैं। रोजगार मेला पूर्णतः निशुल्क है। यदि कोई भी कंपनी अभ्यर्थियों से कॉल SMS के माध्यम से कोई भी फीस या धनराशि की मांग करती है तो किसी भी तरह का भुगतान ना करें, इस हेतु यात्रा भत्ता देना होगा। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं अब सुनिए, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में एक सूचना। ये सूचना हमें प्राप्त हुई है थाना करेली जनपद पीलीभीत से। सूचना करता है श्री चंद्रपाल, पुत्र श्री नथु लाल मौर्य, निवासी ग्राम रलता, थाना कोतवाली बीसलपुर जनपद पीलीभीत से। गुमशुदा व्यक्ति हैं श्रीमती मंजू कुमारी, अपने साथ पुत्र शनि, उम्र करीब 3 वर्ष के साथ लापता हैं। ये लगभग 19 अप्रैल से लापता हैं तथा समय 12:40 से। इनका चेहरा गोल, रंग गेहुआ और करीब 5 फीट की हैं। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर बताएं। थाना कोतवाली बीसलपुर जनपद पीलीभीत। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में सुनिए पहला गीत लुका छिपी। इस फिल्म से आवाज है अखिल और ध्वनि भानुशाली की।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फन्नी खां इस फिल्म का गीत, सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाज़ में। शब्द लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं अब किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को आपकी बहन मीना
1: और आपकी बहन ममता की
0: राम राम। और सुनाओ ममता बहन, कैसे हाल चाल है आपके?
1: हाँ मीना बहन, हाल चाल बढ़िया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे भैया बहन है ना,
0: हाँ,
1: वो अच्छी तरह से होंगे। और किसान भैया तो देखी जाए मीना, बहुत मेहनत करते हैं पूरी साल।
0: हाँ बहुत मेहनत करते हैं, और लेकिन कई बार मौसम की मार और ओलावृष्टि, तेज बारिश, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाएं सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। ऐसे समय में किसान को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है ममता बहन।
1: हाँ मीना बहन बिल्कुल, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी चिंता जहर रहता है कि अगर फसल खराब हो गई तो खर्च कैसे निकलेगा। इसी चिंता को कम करने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना,
0: हाँ,
1: उसकी शुरुआत करी है।
0: हाँ ममता बहन, और ममता बहन खेती अब पहले जैसी नहीं रही। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, कभी असमय बारिश हो जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं, तो कभी सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में फसल बीमा किसान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है ममता बहन।
1: तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उसको उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से फसल खराब अगर हो रही है तो किसान को आर्थिक सहायता मिल सके।
0: हाँ ममता बहन,
1: और इससे किसान भैया को नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलते हैं और वह अगली फसल की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं।
0: हाँ ममता बहन, और इस योजना की खास बात यह है कि किसान को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है, बाकी प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है। इसी कारण छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकता है ममता बहन।
1: हाँ मीना बहन, कई किसान भैया सोचते हैं कि बीमा केवल पूरी फसल नष्ट होने पर भी मिलता है, लेकिन ऐसा ना है। बुवाई ना होने पाउन की स्थिति में खड़ी फसल को नुकसान और कटाई के बाद खेत में जो रखी है फसल उसकी प्राकृतिक आपदा से नुकसान और स्थानीय आपदाओं जैसी जो परिस्थितियां हैं ना, उसमें बेसब योजना के दायरे में आती हैं।
0: यदि तेज बारिश, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि, आंधी या बिजली गिरने जैसी घटनाओं से फसल को नुकसान पहुंचता है तो किसान को बीमा का लाभ मिल सकता है। इसीलिए किसानों को समय रहते अपनी फसल का बीमा अवश्य कराना चाहिए ममता बहन।
1: हाँ, तो बीमा कराने के लिए किसान भैया अपने आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि संबंधी दस्तावेज हैं और बोई गई फसल की जानकारी, इसको होना जरूरी है। और आजकल बात करें इसकी जो प्रक्रिया है आवेदन की, तो ऑनलाइन इसकी उपलब्ध है जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है।
0: हाँ ममता बहन बिल्कुल आपने सही कही ममता बहन।
1: और बात करें मीना बहन, आज दिन है बृहस्पतिवार को।
0: हाँ ममता बहन,
1: तो आज के दिन हमारे कार्यक्रम है आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, जो कि आज हमारो गांव है मिलक ब्लॉक को, ग्राम बकनौरी जनपद रामपुर को गांव है, आज हम वहां पहुंचे। और किसान भैया और बहनें हैं हमारे श्री हरपाल सिंह प्रधान, श्री गोविंद राम और श्री रामदास, साथ ही हमारी श्रीमती कुसुम देवी से बातचीत हुई है आकाशवाणी आपके गांव में। तो भैया बहनों सुन लेते हैं जो विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी आपके गांव में। भैया बहनों, आकाशवाणी आपके गांव के तहत आज हम पहुंचे हैं बकनौरी ग्राम पंचायत विकास खंड मिलक, जो कि जनपद रामपुर का गांव है। यहां पर हमारे जो प्रधान जी हैं, जानते हैं आपसे गांव के विकास के बारे में, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में क्या क्या आपने करे हैं और कौन कौन से अभी विकास कार्य करने हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपको परिचय।
2: मेरा नाम हरपाल सिंह और मेरी ग्राम पंचायत बकनौरी विकास खंड मिला, मतलब हमारी रोडें बहुत खराब थी, टूटी हुई थी, उन रोडों को प्राथमिकता से लिया है
1: जी।
2: उसके बाद में मेरे पंचायत भवन में लाइब्रेरी का प्रबंध करा है
1: जी।
2: जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए दिक्कत थी, काफी हद तक उसमें किताबें और उसमें मतलब लाइब्रेरी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चल रही है शिक्षा के लिए। बाकी हमारी जो विधवा पेंशन है, ये जो है विकलांग पेंशन है और बुजुर्ग पेंशन है, इनके लिए भी प्राथमिकता है। जो हमारे खुले में शौचालय की बड़ी दिक्कत थी गांवों में, उनको जो शौचालय विहीन लोग थे
1: जी जी,
2: मुझे लगता है कि 90% जो है वो सब लाभान्वित हो चुके हैं। और उसके बाद भी मतलब जो भी ग्राम पंचायत में सरकारी योजना है, जैसे कि हमारी शादी अनुदान है जो गरीब बेटियों के लिए, शादी के लिए बोलने भी काफी हेल्प करी है और लोगों को जो है जो सरकार की योजना है उनसे लाभान्वित भी हुए हैं और उनसे मदद भी मिली है।
1: जी प्रधान जी, यहीं पर हम जानना चाहेंगे जो शादी अनुदान की बात करी है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे उसको पाने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं?
2: सबसे पहले उस प्रक्रिया में जो है हम उस परिवार का आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, फिर उसकी जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं और फिर जिस जोड़े का
1: जी जी
2: उनका जो हम कार्ड छपवाते हैं, इनविटेशन कार्ड होता है, वो कार्ड भी लगता है और फिर हमारे सचिव साहब वगैरह उसकी जांच करते हैं कि ये परिवार पात्र है या नहीं है और पात्र होता है तो उसे लाभान्वित करा जाता है और इससे लोगों को काफी लाभ होता है और मदद मिलती है।
1: तो प्रधान जी ये प्रक्रिया कब शुरू करी जाती है, जब शादी तय होने पर कब से होती है?
2: ये शादी से पहले एक सरकार डेट रखती है, उस डेट के अंतर्गत मतलब जो शादी से पहले प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है।
1: अच्छा, जो इसकी अनुदान वाली राशि है वो कितनी मिल रही है?
2: अनुदान राशि एक तो 25,000 रुपए है और जो डेट तय होती है उसमें 40,000 रुपए गवर्नमेंट मतलब फर्नीचर वगैरह सामान देती है, 60,000 रुपए नगद प्रोत्साहन राशि देती है
1: जी।
2: एक गरीब आदमी के लिए बहुत एक सहारा हो जाता
1: है। इसकी जो राशि है वो शादी तक मिल जाती है या
2: शादी
1: बाद में
2: से पहले ही मिल जाती है?
1: बहुत अच्छी योजना है हमारी सरकार की।
2: सरकार से मतलब ये इस योजना से बहुत गरीब लोगों को जो बिटिया की शादी करनी होती है उन्हें काफी राहत मिलती है।
1: तो और अभी आपके गांव में कौन कौन से विकास के कार्य हैं?
2: विकास के कार्य ये है कि अब अगर जैसे हमारा खेल मैदान रहेगा और मतलब एक हमारी जो है प्राथमिकता से यहाँ पे काफी गांव निकलते हैं तो सोच रहे मार्केट बन जाती, मतलब गवर्नमेंट तरीके से जो काफी लोगों को रोजगार मिल जाता और यह सरकारी बाजार के लिए भी मतलब अप्लाई कर रखा है मैंने और

0: अगर मुझे मौका दोबारा मिला तो ये शीघ्र कार्य पूर्ण हो जाए।
1: जी बिल्कुल, जब आप अच्छे से कार्य करेंगे विकास के तो जनता आपको ही चुनेगी। अब बात आती है साफ सफाई की, आपके गांव की काफी सफाई भी है।
0: सफाई में हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को, मतलब सफाई कर्मी तो नियमित डेली आते ही हैं, मगर हमारी भी जिम्मेदारी और दायित्व तो बनते हैं कि हम अपनी साफ सफाई अपने स्तर से कर ले तो और बेहतर है। मैं खुद मतलब नहाने से पहले अपनी नाली अपना रोड बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, फिर उसके
1: बिल्कुल,
0: बाद जाते हैं हम।
1: साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी है और आपको भी सहयोग रहे तो एक जनता को, अगर जनता आपको
0: बहुत
1: सहयोग
0: बहुत
1: देगी तभी आप
0: नहीं,
1: इसमें सार्थक
0: जनता के
1: होंगे।
0: सहयोग से ही यहाँ बैठे हैं हम, अगर उसका सहयोग नहीं होगे तो यहाँ तक कैसे आ जाते हैं।
1: जी प्रधान जी, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने कार्य कर रहे हैं, अपना जो विकास के हैं, और शिक्षा की व्यवस्था आपने बता ही दी है कि बहुत अच्छी है, और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था बना
0: हाँ,
1: रखी
0: लाइब्रेरी
1: है,
0: की व्यवस्था हमने पंचायत भवन में कर रखी है,
1: वहाँ आपके बच्चे बैठने
0: बच्चे
1: की
0: जाते
1: व्यवस्था।
0: हैं बिल्कुल बैठने के लिए वहां पे, लाइब्रेरी किताब रखने के लिए हमारी रैक बनवा रखी है, कुर्सी हम उनकी मुहैया है, पंखा इन्वर्टर लगा हुआ है और वहाँ वाईफाई भी लगी हुई है।
1: बहुत
0: हाँ
1: सुविधा मिल रही है आपके यहाँ
0: पूरी।
1: के बच्चों
0: और
1: को।
0: फिर भी हम उनसे ये कहते हैं कि अगर किसी होनहार बच्चे को अगर कहीं दिक्कत है तो वो आगे बढ़े, उसे मतलब हम सहारा देंगे, गवर्नमेंट का जो भी प्रोत्साहन हो वो तो करेंगे, मतलब जो हमारे लायक व्यक्तिगत तौर पे हम वो मदद करेंगे उसकी भी।
1: जी प्रधान जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि गर्मी का सीजन है, मौसम है, और ऐसे में पानी की बहुत जरूरत रहती है, चाहे खेती बाड़ी की बात हो, चाहे घर के काम हो,
0: जी जी
1: सबके लिए पानी अनमोल है। तो पानी की कैसी व्यवस्था है आपके गांव में?
0: पानी की कुदरती हमारे यहाँ वाटरली बिल बहुत अच्छा है
1: जी
0: और सभी लोगों के यहाँ जहाँ तक है नल घर में है, मतलब हमारे यहाँ इस तरीके की पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेस्ट पानी है हमारा नालियों के द्वारा वो हमारे गांव के करीब में जो तालाब है
1: जी जी
0: उसमें इकट्ठा होता है, उसके कारण उससे डबल फायदा है। एक तो हमारा मतलब इधर उधर मतलब पानी नहीं जाता, ना कोई फसल खराब होती है, उस तालाब में इकट्ठा होता है, उस तालाब में जो है रेन हार्वेस्टिंग का काम करता है वो तालाब, वो हमारा जो है धीरे धीरे करके वो स्रोत पानी का नीचे पहुंचाता रहता है
1: जी जी
0: और वाटर लेवल बढ़िया होता है। और इसी के क्रम में हमारे यहाँ से एक नहाल नदी निकली है, डीएम साहब ने जो है प्राथमिकता से उसे लिया है, एसपी साहब और डीएम साहब दोनों लोग आए और वहां पे श्रमदान भी करा उन लोगों ने, वो वहां पे भी एक जो है चेक डैम बनाया गया है। चेक
1: जी
0: डैम का यही उद्देश्य है कि पानी वहां पे एकत्र करा जाए और इससे हमारा जो वाटर लेवल है उसकी स्थिति बढ़िया रहे, मतलब गर्मी में वो पानी जब जमा रहेगा तो उससे जो जंगली हमारे पशु हैं पक्षी हैं
1: जी जी
0: उनको पानी का भी सहारा मिलता है,
1: जी
0: डबल फायदा होता है और वो जो है हमारा वाटर लेवल भी बढ़िया रहेगा।
1: जी हरपाल जी, आज हमारी आपकी जो बातचीत हुई है वो आपके गांव में ही हुई है, और हमारे किसान भैया बहन बहुत से आपको सुन रहे हैं, जिनको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ना पता है, तो उनसे आपका कहना चाहेंगे।
0: भाई उनसे यही निवेदन है कि अपनी साफ सफाई पे ध्यान रखें और जो व्यर्थ वेस्ट पानी को करते हैं वो पानी वेस्ट न करें, एक एक बूंद अनमोल है, जल ही कल है, तो जल को बचा के रखें। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम मतलब जल को व्यर्थ ना खराब होने दें। जो मेरी ग्राम पंचायत के बुजुर्ग हैं उनका मतलब आशीर्वाद भी है और उसके बारे में ये कि जो हमारे नौजवान मतलब बच्चे हैं और जो भविष्य है हमारा, उनसे ये क्या मतलब कुछ ना कुछ हाथ के दस्तकार होने चाहिए जिससे मतलब पराधीन ना होना चाहिए उसे, और हाथ के अगर दस्तकार रहेंगे तो उससे ये जो है कल उनका अच्छा होगा।
1: जी प्रधान जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, आपको परिचय?
2: मैम मेरा नाम रामदास है
1: जी
2: और मैं एक किसान परिवार से हूँ और बंसीपुर गांव पड़ता है जो, और जो ग्राम पंचायत बखनौरी के अंतर्गत आता है और तहसील और ब्लॉक दोनों मिलक हैं।
1: अच्छा भैया, तो आपको मुख्य काम बता रहे कि कृषि को है, कृषि से कब से जुड़े हुए हैं?
2: कृषि से तो मैडम ऐसे हमारा जो पुश्तैनी काम है, पहले हमारे दादाजी करते चले आए, फिर हमारे पिताजी करते चले आए और आज हम कर रहे हैं। और
1: जी
2: मैं कहता हूँ कि खेती को अगर हम समयबद्ध और वैज्ञानिक तरीका से खेती करी जाए तो ऐसा ना खेती में वो अच्छा मुनाफा है। हम समझते हैं कि अगर लोग आज बेरोजगारी की जितनी मारामारी है उस हिसाब से हमें ना लगता है कि नौकरी के सीमित संसाधन हैं कि किसी को मिल पाए। अगर हम अपनी खेती बाड़ी में भी ध्यान से समयबद्ध और फसल चक्कर अपनाएं तो हमें कोई रोजगार देखने की जरूरत ना है, हमें अपनी खेती में भी घर में रोजगार मिल जाए।
1: जी तो भैया जी, आप कुछ और भी साथ में काम कर रहे हैं?
2: साथ में वैसे मैं मनरेगा में रोजगार सेवक पद पर कार्यरत हूँ और मनरेगा योजना को मुख्य जो उद्देश्य है वो गांव की ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना होता है और फिर गांव के लोग जो बाहर मेहनत मजूरी कर ना जाए और उन्हें गांव की गांव में काम मिल जाए,
1: जी
2: उसमें दो फायदा ये आते हैं कि गांव की गांव में एक तो उन्हें समय से काम मिल जाता है और जो समय बचता है वो अपनी खेती की बाड़ी में भी उनको समय मिल जाता है।
1: तो इस समय आपके मनरेगा में कौन से काम है जिनको आप कर रहे हैं?
2: अब तो हमारे खैर नरेगा में सीजन ही चल रहा है, इस टाइम तालाब खोद रहे हैं क्योंकि जो जून को महीना 15 जून से अगर बरसात हो जाएगी और जैसे तो जुलाई तक ही आती है बरसात, तो अभी हम तालाब खुदवा रहे हैं, गूल खुदवा रहे हैं ताकि बरसात के मौसम में पानी की निकासी हो सके, उसमें जल भराव न हुए और जितनी जरूरत है उतने किसान ले लेंगे और बाकी पानी निकल जाओ जो ओवर पानी हुए हैं। तो अब चक्रोट पड़ रहे हैं और तालाब और गूलन को काम चल रहा है।
1: तो भैया आपके तालाब की खुदाई अभी शुरू हुई है, तो इसके बाद इसमें कुछ और भी काम होने हैं?
2: तालाब कुछ बंद पड़े हैं तो उनकी साफ सफाई कराई, जैसे जलकुंडी वगैरह तालाबन में है।
1: अच्छा।
2: उसमें दिक्कत है, कोई मछली उछली डाल देता तो मर जाती है, उसमें उन्हें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, तो उसकी साफ सफाई करा रहे हैं, उसकी जो स्टेप होते हैं वो बनवा रहे हैं हम, और फिर उसमें जो है पानी को लिखा दी जाए, वाटर लेवल जो है वो भी बनो रहा है उस।
1: अच्छा भैया, ये मनरेगा के तहत कोई मछली पालन के लिए भी इसमें योजना है?
2: हाँ, मैं अभी जैसे हमें तो मनरेगा में फिलहाल जैसे व्यक्तिगत कोई हमारा हमसे तालाब खुदवाना चाह रहा हो तो हम उसको व्यक्तिगत तालाब खुदवा देंगे, और वो आदमी जिसको हम व्यक्तिगत तालाब खुदाएंगे उस लाभार्थी भी उसे काम वो खुद करे हो तो उसकी भी हम मजदूरी हम सरकार द्वारा उसके खाते में पहुँच जाएगी और मत्स्य विभाग से उसे अनुदान भी मिल जाएगा और उसको बीमा भी जाएगा उसमें।
1: अच्छा, तो इसकी आप जानकारी अपने भैया बहन को देते रहते हैं?
2: हाँ, तब वो हम वो चाहे तो अपने व्यक्तिगत खेत तालाब खुदवा सकते हैं, उसमें चाहे वो सिंगाड़े वाली फसल कर ले या भसीड़े वाली भी फसल चल रही वो डाल सकते हैं, वो मछली पालन कर सकते हैं, तो उनको रोजगार को अच्छा स्रोत बन जाए उनको खुद को।
1: तो इस समय आपके जो बात करी जाए मजदूरी की, तो उसमें महिलाएं भी काम कर रही हैं?
2: हाँ, मजदूरी हमारे यहाँ पर सारी महिला काम करने जाती हैं, और वैसे भी सरकार को प्रावधान है कि 33% इसमें भागीदारी महिलाओं की, अगर हम 100 लेबर चला रहे हैं तो हमारे यहाँ 33 लेबर हमें कंपलसरी उन्हें चलानी होती है, और हमारे यहाँ की जाति भी है और उनको कोई ये ना है कि वो 33 ही जाए, वो 50% भी जा सकती हैं, और वो उनको हमने थोड़ा मानक कम रखा है। वैसे मजदूर को हम जो जो मेल है यानी कि जो पुरुष है उसे हम 1 घन फिट मिट्टी देते हैं और जो महिला है उसे 1.25 घन फिट मिट्टी देते हैं,
1: मतलब उसके लिए कम है।
2: उसके लिए कम है, और जो कुछ एजेड उम्र दराज महिला हैं और उन पर अगर काम नहीं रहो तो उन्हें हम पानी पर लगा देते हैं या वो छोटे बच्चे को वो भी उनको पालने में खिलाव ला सकती हैं, तो उनकी भी व्यवस्था सरकार द्वारा करेगी।
1: अच्छा, मतलब उनका ध्यान रखो
2: जाता है। उसका ध्यान रखो जाता है, तो उनके 2 बेनिफिट जाते हैं कि उन पर काम न होता है तो उनकी मजदूरी सरकार द्वारा इस तरह से मिल जाती है।
1: अच्छा भैया, इसमें कुछ जैसे आप काम की बात कर रहे हैं और भी हमारे जो आवास की है ये भी आ रहे हैं मनरेगा के तहत?
2: हाँ,
1: तो आवास की श्रेणी में कौन कौन आते हैं?
2: बाबा पात्रता में जैसे मुख्यमंत्री आवास में तो दिव्यांग कोटा है, विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है तो प्राथमिकता तो उनके है, या कोई जो विकलांग है जैसे 100% विकलांग है पैरों से बिल्कुल, तो प्राथमिकता की तरह वो है। और प्रधानमंत्री आवास में उसमें लघु सीमांत किसान हो, उस पर 4 पहिया वाहन ना हो, उसके घर एसी ना हो और जनरेटर वगैरह ना हो, और मतलब जो है कि वो नॉर्मल परिवार में है और उसकी आय कम से कम तकरीबन 75,000 से ज्यादा ना।
1: अच्छा,
2: हाँ, तो ऐसी श्रेणी में उन्हें प्रधानमंत्री आवास में वो पात्रता रखते हैं।
1: तो भैया इसके लिए पूरा पैसा आपके मनरेगा की तरफ से आता
2: ना? उसमें ये होता है कि उसमें 1,20,000 रुपए उन्हें सरकार द्वारा मिल जाता है और हमें 90 दिहाड़ी जो है मजदूरी की वो मनरेगा से मिल जाती है।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आता है, उनकी जब पहली जो किस्त 40,000 की आएगी तो उस मजदूर को मतलब नी से लेकर कुर्सी तक उठाने होता है, फिर वो उसको फोटो जियो टैग होकर जाएगी, उसके बाद फिर 70,000 की किस्त आएगी, 70,000 में उसे कुर्सी से लेकर लिंटर तक डालने हुए वो, उसके बाद फिर फोटो खींच कर जाएगा, फिर 10,000 रुपये की किस्त आएगी तो उसमें फर्श पलास्तर होएगा। इसके साथ 90 जो दिहाड़ी है मनरेगा से अलग मिलेंगी जो वहाँ पर वो लाभार्थी मजदूरी करे।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो कुल मिलाकर 1,42 लमसम इतना पैसा मिलता है, और सरकार जी कहती है हालांकि इतने पैसा में उसको घर ना बन पाएगा, तो सरकार ने जी कहती है कुछ आर्थिक मदद हम तुम्हारी कर रहे हैं, कुछ तुम कर लो और अपने एक आसियाना बना लो।
1: तो भैया आपके गांव में बात करें जो आवास की, तो कितने लगभग बन चुके हैं?
2: अभी तो आवास का मैम हमने सर्वे करा रखी है, अभी तो ऐसी कोई अभी कैटेगरी नहीं है। अब देखो लाभार्थी को खाते में पैसा आना बाकी है, और बाकी पिछले साल जो हमारे आवास आए थे तो दिव्यांग कोटा से 2 आए, वो विधवा जो थी स्त्री थी उनका बन गया और एक विकलांग कोटा है।
1: अच्छा।
2: तो दो अभी 2 आए, बाकी हमने सर्वे कर रखी है और सर्वे में अब देखो कितने लोगों का पैसा आता है।
1: अच्छा, जैसे इसमें सर्वे के बाद आपको कितना समय लग जाता है बनाने के लिए?
2: जैसे सर्वे होने के बाद अभी तकरीबन हम सर्वे को 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, अभी सरकार का देखो अभी जहाँ तक मेरे उम्मीद है अभी प्रधानमंत्री जो आवास है उसका पैसा अभी मैम कहीं पर ना आया है पूर्व उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री का आ गया। अब जब आएगा तो शुरू हो जाएगा, मगर पैसा आने के बाद उसमें एक महीने दो महीने में लाभार्थी को बनाना होता है।
1: अच्छा, दो महीने के अंदर मतलब उनका तैयार
2: करना होता है मैम। जब 40,000 की किस्त आएगी तो उन्हें नी लेवल से कुर्सी तक उठाना है, फिर हम उसकी फोटो करके जियो टैग करके भेजेंगे, फिर उस लाभार्थी के खाते में 70,000 की किस्त आएगी, 70,000 की किस्त में उसे कुर्सी से लेकर लेंटर तक पहुंचाना होता है, फिर हम उसकी जियो टैग करेंगे तीसरे स्टेप की, फिर 10,000 की किस्त आएगी, फिर 10,000 की किस्त में उसे अपना लेंटर वो फर्श और प्लास्टर कराना होता है।
1: जी, तो रामदास भैया बहुत अच्छी योजना है हमारी मनरेगा की, लेकिन अब बात आ रही है कि जो हमारे मजदूर हैं या जो जिनको रोजगार मिल रहा है तो उनको कितने दिन को मिल रहा हुआ है?
2: अभी तो हमारी भारत सरकार ने एक नई गाइडलाइन चालू करी है, वो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, तो उसमें हमें 125 दिन का रोजगार देंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने उनके 25 दिन बढ़ा दिया। फिलहाल वर्तमान समय में 100 दिन का समय है, वो है एक वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, एक साल में एक जो वित्त वर्ष है उसमें हम 100 दिन का ही काम दे पाएंगे, उसके आगे नहीं है, बंद हो जाएगी, डिमांड ही नहीं हो पाएगी।
1: तो मतलब 100 दिन का काम है, उसके बाद अपने जो भी हैं मजदूर वर्ग हैं वो अपने और कहीं
2: काम कर सकते हैं। वो फिलहाल जो डिमांड है अभी जो है लिमिट है, मगर हमारी भारत सरकार ने इस बार 1 जुलाई से अब 125 दिन बढ़ा के अब 125 दिन हम काम दे देंगे।
1: 125
2: दिन उनके एक्स्ट्रा बढ़ गए।
1: तो रामदास भैया बहुत अच्छी योजना है हमारे भैया बहन के लिए मनरेगा की, और इसके हमारा भैया बहन लाभ भी ले रहे हैं। आज हमारी आपके ही गांव में आपसे बातचीत हुई, आपके मनरेगा के विकास के बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो आपने हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताई, और हमारे भैया बहन इस योजना को जरूर लाभ लेंगे और ले भी रहे होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही पर हमारी एक बहन और मौजूद है। बहन आपको नाम?
3: कुसुम देवी।
1: कुसुम देवी जी, आप भी इसी गांव में रह रही हैं?
3: जी।
1: आप खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, कोई और भी अपने घर के काम है, उद्योग से जुड़ी हुई है?
3: खेतीबाड़ी भी करते हैं और अपने घर का किचन का काम वाम भी संभालते हैं, बच्चों को भी देखते हैं।
1: जी, आपके बात करें बच्चों की पढ़ाई वगैरह हो रही है?
3: हाँ।
1: आपके गांव में स्कूल तो है ही?
3: जी, बच्चा गांव में जाता है, एक जाता है एक नहीं जाता है।
1: आंगनवाड़ी केंद्र है आपके गांव में?
3: जी।
1: तो आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा ले रही हैं आप?
3: बच्चे जाते नहीं है, प्राइवेट में जाते।
1: पहले तो गए होंगे ना?
3: हाँ, छोटे पे जाते।
1: अच्छा, उसकी सुविधा ली है आपने। गाँव में मनरेगा कोई भी काम है, इसमें भी कोई भागीदारी आपकी है?
3: जी, लग गए हैं अब इसमें, हम जाते हैं।
1: तो आप इसमें काम कर रही हैं मनरेगा में, कब से जुड़ी हैं?
3: 5 महीने हो गए।
1: 5 महीने से आपको मतलब कार्ड बन गया है इसमें?
3: जी।
1: तो आपके पति हैं वो भी कर रहे हैं?
3: वो भी जाते हैं।
1: तो दोनों कर रहे हैं इसमें काम?
3: जी।
1: कैसी लग रही है ये योजना मनरेगा?
3: ये हमारे ये रामदास भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे परिवार को भी जैसे मतलब सदस्यों सबको लगा रखा है।
1: तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा रही हैं, अपने रोजगार से भी जुड़ी हैं और घर गृहस्थी से भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही खेती बाड़ी भी बता रही हैं, तो ये सब चारों तरफ की जिम्मेदारी आप कैसे उठा पा रही हैं?
3: सुबह उठना पड़ता है।
1: सही बात है,
3: 4 बजे 5 बजे उठो।
1: महिलाएं अगर घर के साथ साथ कोई और भी काम करे ना तो उन पे दोहरी जिम्मेदारी आती है, और दोनों काम उन्हें संभालने भी हैं, घर के काम निपटा के तभी वो बाहर निकलती है।
3: अभी 4 बजे से उठ के अभी भराई करिए, खेत में पानी लगाया है।
1: अच्छा।
3: आके खाना बनाया है, नहाए हैं, अब आराम करेंगे दोपहर में।
1: बिल्कुल कुसुम देवी, औरत का जो है कही जाए दोहरी जिम्मेदारी है, जब सुबह उठती है तो पहले घर की जिम्मेदारी को पूरा करती है, उसके बाद जो बाहर के काम है उनको करती है। तो आप घर में साफ सफाई वगैरह का ध्यान कैसे रख रही है उसका?
3: कैसे, जैसे समय निकलता है वैसे काम कर लेते हैं,
1: क्योंकि सफाई भी जरूरी है और गर्मी का मौसम है, इसमें खान पान सबसे ज्यादा जरूरी है।
3: हाँ, और कोई है नहीं मेरे घर में, मैं ही हूँ, लड़की वड़की है नहीं मेरी, सारा काम मुझे करना पड़ता है।
1: आपने कुछ पढ़ाई भी की है?
3: हाँ, मतलब करी है 8वीं तक।
1: चलिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी है कि मतलब अपना साइन है, हस्ताक्षर है, वो सब कर लेती है, लिखा पढ़ी। अपने बच्चों को पढ़ाई आप अच्छे से कराएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, और आपके पति भी आपका सहयोग कर रहे हैं। खेती में कौन कौन सी फसलें कर रहे हैं?
3: भिंडी लगा रखी है।
1: आपने सब्जी वाली फसल कर रखी है?
3: धान वान लगेंगे अभी,
1: तो अब धान की तैयारी चल रही है, तो इस समय आपकी भिंडी तैयार है?
3: नहीं, अभी 1 महीना लग जाएगा चलते हुए।
1: खाली भिंडी है और भी कोई सब्जी?
3: लौकी है, काई तुरई है।
1: अच्छा, आपके गांव में हमें सफाई खूब दिख रही है, बहुत अच्छे से विकास है, जो नालियां हैं वो भी साफ सफाई उनकी भी है। जैसे हमारे सफाई कर्मचारी तो आते रहते हैं, अगर किसी दिन ना आवे तो उस बात को आप सब लोग ध्यान रखते हैं? तो उसमें कैसे आप सहयोग करते हैं सफाई में?
3: साफ कर देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर ऐसे ही साफ कर देते हैं, पानी वानी डालकर
1: नाली वाली की सफाई खुद कर लेते हैं,
3: गेट पर हाँ कर देते हैं सुबह।
1: सही बात है, क्योंकि जरूरी ना है कि सफाई कर्मचारी करें, क्योंकि हम सबकी वो जिम्मेदारी है साफ सफाई रखना, और साफ सफाई से जो बीमारियां हैं
4: वो दूर रहती हैं, छरे हैं, कीड़े हैं जो हमारे गंदगी से फैलते हैं,
3: सुबह सुबह साफ कर देते हैं।
4: बहुत अच्छी बात है, साफ सफाई भी बनी हुई है और अपना घर गृहस्थी का काम साथ ही खेती बाड़ी और मनरेगा के तहत जो आपको रोजगार मिलो हुआ है उसके भी काम बाखूबी कर रही है। आज की बात हुई और आपने अपना जो समय दो है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
3: राम राम।
1: यहीं पर मौजूद हैं एक जो कि चाचा हैं हमारे, बहुत उम्रीले दिख रहे हैं। आपकी बात करें सबसे पहले तो आपको नाम क्या है चाचा?
5: मेरा नाम है गुंदराम, मेरी उम्र 70 साल के लपेट में है, मैं किसान हूँ।
1: जी, खेती किसानी आपने शुरू से देखी है और अभी आप खेती किसानी से ही जुड़े?
5: खेती करते हैं
1: जी। तो आप बात करें आपकी खेती की, आपने पहले के दौर में जो खेती करी है और आज के दौर में कितना परिवर्तन है खेती में?
5: आज के दौर में बहुत परिवर्तन है
1: जी।
5: हम बैलों से खेत जोते थे और आज

0: ट्रैक्टर हो गए, बहुत सुविधा हो गई लोगों को। पहले हमारी उंगलियां कट जाती हर जोतते पे, और अब ट्रैक्टर हो गए तब तो बहुत सुविधा हो गई।
1: नए नए यंत्र भी आ गए, नए नई हमारे उर्वरक हैं, सब विधि हैं, सब तरह तरह की, इससे काफी फर्क पड़ो है। लेकिन देखी जाए चाचा, जो हमारी पहले की फसलें होती हैं, जो अपने समय से लेते, आज भैया हमारे पैदावार बढ़ाने के लिए एक एक फसल कई कई बार कर लेते हैं, कई कई फसलें लेते हैं अपने खेत से, अच्छी पैदावार भी करते हैं और तरह तरह के उर्वरक डालते हैं। और पहले उर्वरक भी कम डालते हैं हमारे भैया बहन, उपज तो ज्यादा ना लेते, मेहनत बहुत थी। लेकिन देखी जाए चाचा, जो स्वास्थ्य हो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो, इसके बारे में आपका कहना चाहेंगे? पहले के स्वास्थ्य में आज के स्वास्थ्य में परिवर्तन है ना?
0: हाँ, परिवर्तन है। पहले जो माल खाते थे लोग, भैंस पालते थे, अब भैंस कबाल नहीं लाना चाहते, भैंस को पालना नहीं चाहते, पानी पियाना नहीं चाहते बच्चे, इसलिए जानवर बहुत कम पल रहे हैं।
1: जानवर की भी बात है चाचा, और दूसरी बात है कि हमारी खेतीबाड़ी में जो उर्वरक है, रसायन है, इनको अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है।
0: हाँ, फिर
1: वो हम अपने खान में लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं असर जरूर दिख रहा है।
0: आज टाइम सब लोग एक नकल करने के ऊपर उतरे आए हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो आदमी नकल कर रहे हैं या रामदास कर रहा है वो काम हम भी करें, वो खेती हम करें। नकल करने में आदमी अनुभव नहीं होता, नकल कर रहा है तो खेती खराब हो जाती है।
1: जी, तो चाचा आप खेती में कौन कौन सी फसल करते हैं?
0: खेती में धान भी करते हैं, गेहूं भी करते हैं और सब्जी करते हैं। हमारे खेत में अरबी लगी हुई है,
1: सब्जी वाली फसल है।
0: हाँ, और ये भट्ट बोते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: वो भी लगी हुई है, और परवल भी लगे, लौकी है, तुरिया है, भिंडी भी है, खाने के लिए सब काम है हमारे खेत में,
1: सारी सब्जियां कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: अभी आपके जो गेहूं की कटाई हुई है, उसके खाली खेत वो हुई, उस खेत में क्या कर रहे हैं?
0: उसमें तो अब धान लगेंगे। और मैं कम से कम 20 साल की अवस्था से रेडियो सुनता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है चाचा, आपकी लगन इतनी अच्छी है कि 20 साल की अवस्था से सुन रहे हैं। तो आपने कौन कौन से प्रोग्राम है?
0: जैसे कृषि जगत में एक डॉक्टर बोलते थे
1: जी, डॉक्टर तो अभी आते हैं, अभी
0: उस डॉक्टर से जानकारी ली। हम भैंस पालते हैं तो हमारी भैंस उसी आधार पर गबन हो जाती थी,
1: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है।
0: हाँ, सुबह को भक्ति संगीत आती है, उसके बाद में डॉक्टर बोलता है। तो हमारे 6 महीना से दांत में दर्द था, तो डॉक्टर ने बताई तुम्हारे घर में दवाई रखी है, वो तुम उसे पहचानते नहीं,
1: देसी दवाई।
0: हाँ, तो उनके क्या तुम्हारे घर में लहसुन है?
1: हाँ,
0: अगर लहसुन पीस के तुम अपने दांतों की मालिश कर लो तो दांत दर्द बंद हो जाएगा। मेरे आज भी वो मैंने काम किया, दांत मेरे सुरक्षित है भाई।
1: अच्छे हैं दांत आपके। हाँ, आज जरा जरा से बच्चे जो हैं टॉफी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, उनसे दांत खराब हो रहे हैं, लेकिन आपके अच्छे हैं दांत।
0: अच्छा,
1: आपने देसी उपचार करो, उससे सही है।
0: सही है,
1: तो आपको जानकारी मिल रही है हमारे आकाशवाणी से।
0: से एक बात बनी, खेत है हमारा मंदिर और कर्म है पूजा। खेत में काम करोगे तभी फायदा बनेगा, और मंदिर पे पूजा करने से कुछ नहीं बनेगा।
1: बहुत अच्छी बात है चाचा, आपको इतनी लगन है अपनी खेती से, घर परिवार से, और आपके जो सुनते हैं आकाशवाणी के जो प्रोग्राम है उनकी लगन है, तो आप इससे जुड़े हुए हैं। और अब बात करें आपके गांव के विकास की, आपकी इतना अनुभव है तो पहले के गांव में कैसे कार्य है, आपके गांव में कैसी व्यवस्था थी? और
0: अब व्यवस्था बहुत अच्छी है
1: जी, आप बोगालो दौर देख चुके होंगे, जहाँ कच्ची सड़कें हैं, कच्ची नाली होंगी, सब देख चुके होंगे।
0: पहले बहुत कठिन काम था, खेतों में बहुत काम करने पड़ते थे, अब तो बस कंप्लेन से गेहूँ कट रहे हैं, कंप्लेन से धान कट रहे हैं, अब तो लोग सब आजाद हैं जा दौर में।
1: जी, आपके गांव में पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है?
0: पढ़ाई की व्यवस्था ठीक है, पढ़ाई
1: स्कूल है आपके गांव में?
0: हाँ, दो स्कूल है।
1: अच्छा, कहाँ तक है?
0: एक सरकारी है, एक 12वीं तक है।
1: हाँ, अच्छा है गांव का विकास।
0: दो प्राइवेट स्कूल है, एक सरकारी स्कूल।
1: तो ये तो अभी हाल में बने होंगे या पहले ही बने हुए?
0: 10 साल हो गए ना बने हुए,
1: मतलब आपके जब दौर था पढ़ाई को तो उस समय ना थे,
0: उसमें ना।
1: काफी विकास हो चुका है आपके गाँव।
0: हम तो बड़ा जाते थे पढ़ने,
1: तो कैसे जाने की व्यवस्था थी वहाँ?
0: पैदल जाते थे, पैदल आते थे।
1: कितने किलोमीटर है यहाँ से?
0: यहाँ तो 3 किलोमीटर होगा।
1: 3 किलोमीटर पैदल जाना और पैदल आना, तब आपने पढ़ाई की। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है चाचा?
0: हमने तो 7वीं तक पढ़ाई की।
1: तब भी बहुत है आपकी उस दौर की पढ़ाई, अपने काम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई।
0: इतना आएगा सामने ऊंटा चापूं।
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले की जानकारी भी रखते थे आप, उस हिसाब से आज की देखी जाए तो बहुत अच्छी पढ़ाई है आपकी। जो स्वास्थ्य की बात करें चाचा, आप स्वास्थ्य को कैसे ध्यान रखा थे?
0: मैं इस उम्र हो गई, मैंने अभी जिंदगी में ना तो बीड़ी पी है,
1: बहुत अच्छी बात है,
0: न कोई गुटखा खाया है, न कोई तो किसी रंग का नशा नहीं किया है, न शराब पी है मैंने कुछ।
1: तो हमारे जो भैया बहन है आज आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उन भैया बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम है कि ये नशा की लत को छोड़ दे। नशा सबसे गलत है, क्योंकि 70-72 साल की उम्र में मैंने आज तक कोई किस्म का नशा नहीं किया है। ये स्वास्थ्य अच्छा है।

0: बहुत अच्छा संदेश है चाचा आपने दोहराया, और आज हमारी आपके ही गांव में आपसे बातचीत हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान साथियों, अभी आपने सुना आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और ग्राम बकनौरी ब्लॉक मिलक जिला रामपुर से, और प्रतिभागी थे श्री हरपाल सिंह प्रधान और श्री गोविंद राम, श्री रामदास, श्रीमती कुसुम देवी, और इनसे हमारी ममता बहन ने बातचीत करी, गांव के विकास के बारे में जाना और योजनाओं के बारे में जाना।
2: और मीना बहन अब कार्यक्रम में और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
6: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
5: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कागज कलम नहीं इस बार मोबाइल की नहीं।
2: ममता बहन, अब अपने किसान भैया के लिए लोकगीत से मनोरंजन कराए दें।
3: हाँ बिल्कुल, तो लोकगीत है आया महंगाई का जमाना, इसको अपने मधुर स्वर से सजाओ है कनक सक्सेना ने। तो भैया बहनों सुन लेते हैं जो लोकगीत।

0: भैया बहनों, आपने मनोरंजन करो लोकगीत के माध्यम से, हमें उम्मीद है आपको लोकगीत जरूर पसंद आ होएगो। और मीना बहन, अब कार्यक्रम में है एक जरूरी और सूचना कार्यक्रम से संबंधित। बात करें जो बदलाव भए हैं कार्यक्रम में, तो दिन पहले है महीना को बुधवार, उसको सुन सकेंगे हमारे भैया बहन सफल कृषक से की गई भेंटवार्ता, और दूसरे बुधवार में सुनेंगे सफल महिला कृषक से की गई बातचीत, और महीना के तीसरे बुधवार में सुनेंगे मासिक कृषि गोष्ठी, और चौथे महीना में जो आवेगो बुधवार, उसको सुनेंगे हमारे भैया बहन सफल कृषि स्टार्टअप, और अगर महीना में पांचवा बुधवार पड़ जाता है तो सुन सकेंगे सफल कृषक से की गई बातचीत।
1: और ममता बहन, इसी प्रकार से जैसे गुरुवार का दिन आया पहला, तो आकाशवाणी गाँव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और महीने के दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलिहान, और महीने के तीसरे गुरुवार को आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और महीने के चौथे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलिहान, और यदि पांचवा गुरुवार आता है तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
0: तो इसी तरह से बात करें शुक्रवार की, तो पहले शुक्रवार को सुन सकेंगे लोक मंजरी फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, और दूसरे शुक्रवार में सुनेंगे कृषि संघ का समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान, और तीसरे शुक्रवार में सुनेंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम, और महीना के चौथे शुक्रवार में सुन सकेंगे हमारे भैया बहन कृषि संघ का समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान, और अगर पाँचवों शुक्रवार महीना में पड़ जाते हैं तो हमारे भैया बहन सुनेंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। तो इसके लिए हमारे भैया बहन अपने मोबाइल नंबर लिख लें अपने समस्या और फरमाइशी लोकगीत सुनने के लिए, इसको नंबर है 0595-232-4326, इस पर आप फ़ोन करके अपनी समस्या और जो फरमाइशी लोकगीत है उसको सुन सकते हैं, उसको समाधान भी पा सकते हैं समस्या को, और व्हाट्सएप और SMS करने के लिए नंबर है 94100878766 पर कर सकते हैं व्हाट्सएप, और ईमेल के लिए पत्र मिला AIR Rampur@gmail.com पर आप कर सकते हैं ईमेल भी, और सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आकाशवाणी पर भी आप हमें अपनी फरमाइश लिख के भेज सकते हैं।
1: और ममता दीदी, हमारा पत्राचार हेतु पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश पिन 244901।
0: तो मीना बहन, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि संकेत की।
1: हाँ ममता बहन,
0: आज कृषि संकेत में बात कर रहे हैं नकली व मिलावटी उर्वरकों की पहचान।
1: हाँ ममता बहन, जैसे किसान साथियों को खेती में बीज खाद और पानी का जितना महत्व है ना ममता बहन, उतना ही जरूरी है सही और गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों का उपयोग, लेकिन आजकल बाजार में नकली और मिलावटी उर्वरकों की शिकायतें भी सुनने को मिल जाती हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है ममता बहन।
0: बिल्कुल मीना बहन, बात जो है किसान भैया की, तो वे हर साल जो पूरे साल मेहनत करते हैं और अच्छी फसल की उम्मीद में खाद खरीदते हैं कि उन्हें अच्छी फसल मिले, अच्छी पैदावार मिले।
1: हाँ ममता बहन,
0: लेकिन अगर खाद नकली निकल जाए तो फसल की जो पोषण है वे न मिल पाते हैं और उससे उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
1: यही कारण है कि किसानों को उर्वरक खरीदते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि खाद का पैकेट

0: अच्छी तरह सीलबंद हो और उस पर निर्माता कंपनी का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि तथा अन्य जरूरी जानकारी साफ साफ लिखी हो।
1: तो भैया बहनों, गांव में अक्सर क्या होता है कि हमारे किसान भाई भी बता होते हैं कि खाद डालने के बाद भी फसल में कोई खास सुधार ना दिखाई पड़ता है, तो कई बार इसकी जगह मिट्टी की समस्या हमारे भैया बहन सोचते हैं, लेकिन खराब जो मिलावटी उर्वरक है ना, वे भी हो सकता है। मिट्टी की समस्या तो होता है, लेकिन उर्वरक भी पैदावार पर बहुत असर डालते हैं।
0: सही कहा ममता बहन, और असली उर्वरक के दाने आकार और रंग में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन खाद में ज़्यादा धूल हो, दाने टूटे फूटे हों या रंग आसमाने लगे तो किसान को सतर्क हो जाना चाहिए।
1: तो भैया बहनों, मिलावटी पहचान जरूर कर लें उर्वरक की, उसके बाद ही अपने खेत में डालें। सतर्क रहें, जागरूक रहें और जागरूकता के साथ अपनी खेतीबाड़ी करें। और मीना बहन, अब हमारे कार्यक्रम में समय ना है ज़्यादा, जो अपने भैया बहन से और बातें की जाएं। अपने भैया बहन को बता दो कल के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी।
0: हाँ ममता बहन, कल चर्चा का विषय है पशुओं में टीकाकरण और विश्व पर्यावरण दिवस और लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम और कृषि संकेत भूमि संरक्षण के लिए मेड़बंदी और मौसम की जानकारी।
1: तो बता दें आपको कल के मौसम की जानकारी, कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। हवा उत्तर पूर्व दिशा से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और आर्द्रता 44% से 68% तक रह सकती है। मीना बहन, अब हमारे कार्यक्रम में समय ना है जो अपने भैया बहन से और बातें की।
0: हाँ ममता बहन,
1: तो इसी वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। अपनी बहन ममता
0: और अपनी बहन मीना को देव अनुमति।
1: राम राम, राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी रामपुर है। संध्या के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत वेद शास्त्रों में निहित विश्व शांति की व्याख्या, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं श्री यतीन्द्र कुमार।
1: वेद एवं शास्त्रों में जहां जीवन निर्माण, सामाजिक सुचिता तथा ज्ञान विज्ञान व जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों का गहराई के साथ विवेचन किया गया है, वहीं संपूर्ण मानवता को एकता के सूत्र में पिरोते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की कामना के साथ विश्व शांति की स्थापना का डिंडिम उद्घोष किया गया है। आदिकाल से वेद सत्य, अहिंसा, जीव कल्याण, विश्व शांति का पाठ पढ़ाते आए हैं। वेद शास्त्र पुरातन काल से संपूर्ण मानवता को जात पात, क्षेत्र, भाषा जैसी संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का संदेश देते आए हैं तथा राजनीतिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं पर्यावरण शुचिता व संपूर्ण शांति का संदेश देते हुए वैदिक विचार संपूर्ण विश्व को शांति की स्थापना में समर्थ एवं सार्थक संदेश देता है। विश्व में शांति के लिए सबसे पहले स्वयं के मन को जानना, फिर दूसरे पूरे विश्व को अपना परिवार मानना ही वेद एवं शास्त्रों का सार है। वेदों की ऋचाएं शांति का ही संदेश देती आई हैं। वेद सभी के सुख की कामना करते हैं तथा विश्व कल्याण, शांति एवं विश्व बंधुत्व का शाश्वत संदेश वेद शास्त्र आदिकाल से विभिन्न ऋचाओं में देते आए हैं। वेदों में सारे संसार को एक परिवार मानते हुए साथ साथ चलने, बोलने एवं उन्नति की कामना की गई है। वेद शाश्वत पावन संदेश देते आए हैं कि किरणवंत विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, सारे संसार में सद्भावना हो, सारे संसार में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, समता हो, यह वेदों का एक एक ऋचा में सार भरा हुआ है तथा वेद ही विश्व की सबसे पुरातन ज्ञान निधि है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन चारों वेदों को श्रुति

परंपरा के रूप में भी आदिकाल से श्रुति ग्रंथ भी कहा गया है। वेद ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूलाधार हैं तथा दुनिया के समस्त धर्मों का सार वेद के विभिन्न ऋचाओं में पढ़ा जा सकता है। वेद डंडिम उद्घोष करते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण विश्व के ज्ञान भंडार का मूल तत्व वेदों में निहित है। वेद दुनिया को यह पावन संदेश देते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, अर्थात यह सारी धरती मेरी माता है और मैं इसके बेटे के समान हूँ, मैं इसका बेटा हूँ। जब यह भावना व्यक्ति में आएगी तो निश्चित रूप से विश्व शांति की जो स्थापना की बात है वह स्वयं चरितार्थ उठती है तथा पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, मानव मात्र के प्रति स्नेह का, समानता का एवं जिम्मेदारी का भाव स्वतः स्थापित हो उठता है। वेदों में वर्णित शांति पाठ का संदेश सकल विश्व को शांति का संदेश देने में समर्थ है, जो संपूर्ण शांति का उद्घोष करता है, अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है। शांति पाठ मंत्र प्राणी मात्र, प्रकृति व सामाजिक ताने बाने की शुचिता के साथ साथ संपूर्ण मानवता के संरक्षण, पर्यावरण की शुचिता तथा अखिल शांति का प्रतिपादन करता है। वह शांति पाठ मंत्र इस प्रकार है: ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। इस शांति मंत्र का सार इन पंक्तियों में सहज रूप में समझा जा सकता है कि शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में, मन में और जगत के हो कण कण में। यह शांति पाठ का मूल आधार है कि हम प्रकृति के कण कण में, मानव के तन में, मन में और धन में, सभी में शांति के दर्शन करें। तो यह विश्व शांति का सबसे सशक्त और सार्थक संदेश वेद शास्त्रों से हमें प्राप्त होता है। विश्व शांति सद्भावना, मैत्री, प्रेम और अहिंसा के मूल्यों से ओतप्रोत अनेकानेक वैदिक ऋचाएं तथा आर्ष ग्रंथों के श्लोक मानव मात्र को पावन और शाश्वत संदेश देते आए हैं कि यह जमीन यूं ही रहेगी और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। अर्थात हमें अनासक्त भाव के साथ में अपने जीवन का निर्वहन करना है तथा इस धरती पर अपने जीवन के निर्वहन के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी व शांति सद्भावना के मूल्यों को आत्मसात करते हुए मानव मात्र के कल्याण के प्रति भी जवाबदेह रहना है। यह वैदिक शास्त्रों का पावन संदेश दुनिया के प्रत्येक मानव मात्र को दिया गया है। अतः हमें विश्व शांति की स्थापना के लिए वेदों की ओर लौटना होगा, जो संपूर्ण मानवता को संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते का संदेश देते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम साथ साथ चलना सीखो, एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। और वेद शास्त्रों से हमें विश्व बंधुत्व की भावना के भाव मिलते हैं, जहाँ बड़े उत्साह और गर्व के साथ दुनिया के मानव मात्र को यह पाठ पढ़ाया गया है कि अयम निजः परोवेति गणना च लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ऐ दुनिया के लोगो, तुम बड़े दिल वाले बनो, छोटे दिल वाले मत बनो। बड़े दिल वाले बन करके पूरी दुनिया के लोगों को भाई की दृष्टि से देखो, विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करो, तो ऐसी विश्व शांति की कल्पना भला और कहाँ हो सकती है। अतः हमें वेद शास्त्रों का प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए और संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर मानव मात्र की अनमोल ज्ञान निधि के रूप में वेद शास्त्रों को मानते हुए उन्हें नित्य प्रति पढ़ें और वैदिक मार्ग पर चलें। हम वेद पढ़ें, वेदों को अपनाएं और वेदों के मार्ग पर गर्व करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति पर नाज करें।

वेद शास्त्रों में निहित विश्व शांति की व्याख्या, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे श्री यतीन्द्र कुमार के विचार विविधा। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अम्बेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:15 होने को हैं। श्रोताओं अब सुनिए हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज शेष सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे सबरस, ये कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार होंगी हरलीन कौर। रात्रि 10:00 आपको सुनवाएंगे क्षेत्र लोक एवं लोक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। 7:31 पर हम आप तक पहुंचाएंगे सुगम संगीत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंदन दास व आबिदा परवीन की आवाज में गजलें। श्रोताओं ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से आज शेष सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। और अब सुनिए कल प्रातःकाल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम व प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। कल सवेरे 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। छह बजकर 25 मिनट पर हम आप तक पहुंचाएंगे गांधी चर्चा। 6:35 पर सुनिए स्वास्थ्य संदेश, ये कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे असीम सक्सेना। 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान में भाग संख्या 319। प्रातःकाल 7:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अमृत कलश, कार्यक्रम के अंतर्गत अपने विचार रखेंगे श्री अनुराग कुमार शुक्ल, जानकारी का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। 7:31 पर होगा फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। 102.9 मॉर्निंग हिट्स आप सुन सकेंगे 8:45 पर। 9:25 पर हम आप तक पहुंचाएंगे प्रेरक प्रसंग। 9:30 पर सुनिए उर्दू प्रोग्राम बशीर बद्र साहब पर खुसूसी प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के, प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे फरीदुल्ला खां और मारिया। 10:10 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीत आपके अनुरोध पर।

धरोहर कार्यक्रम का प्रसारण होगा पूर्वाह्न 11 बजे। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष वरिष्ठ प्रसारक एवं कमेंटेटर श्री कुलविंदर सिंह की वार्ता। 11:30 पर मनभावन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे एक ही शीर्षक से गीत। 12:10 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना ना भूलें। 7:19 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
2: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

0: समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
0: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस्ड श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जनप्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
4: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
1: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
5: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत चंदन दास और आबिदा परवीन की आवाज में गजलें। पहले सुनिए चंदन दास की आवाज में ये गजल।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में गजलें। आइए अब आपको सुनवाते हैं आबिदा परवीन, इनकी आवाज़ में गजलें।

आबिदा परवीन की आवाज़ के साथ सुगम संगीत ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार थे चंदन दास और आबिदा परवीन। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं जन्नत, इस फिल्म से। इस गीत की ख्वाहिश की है आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राज दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक दिलखुश, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू दिलखुश, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति दिलखुश, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। मनकारा मंदिर, बीडीए कॉलोनी, करगाना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना, ओमवती भारती, कनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। बागरी मोहल्ला, रटलाई, जिला झाड़वाड़, राजस्थान से मन भावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुनीदी बाई बागरी। सेफ वाटर सेफ लाइफ के हिसाब से ये मैसेज हमें भेजा है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, इमराना नाच, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टैमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकी चांद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, मास्टर समर राज आर्यन, आरोही इशिका, अंजलि श्वेता वर्मा। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी समनावद, मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गढ़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गुगांव से हाजी इजहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, मोहम्मद अयूब शेरी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित अहूजा। फाजलिका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडली खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी ट्वेंची और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर, आरती गौरी और ओम कुमार। थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान, शाहिदा परवीन, इमरान खान, रेहान खान, इकराम खान, समीना बी और आसिफा के साथ हैं शबीना। मेरठ कैंट से हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा डोमीन और जानवी डोमीन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी और शबनम बानू। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता हैं सोनम और अदीबा। रेशमी नगर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सीफान सिद्दीकी, बेटी अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई सूफियान, अनस और इनके परिवार के सभी सदस्य। अनारकली बाजार जगराव से हमारे श्रोता हैं अनिल पाठक, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा पाठक के साथ हैं जयपाल यादव और विनोद पुरी। वाड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती। छत्रपति संभाजी नगर खांडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए केके की आवाज में सैयद कादरी का लिखा हुआ गीत। संगीत है प्रीतम का, फिल्म का नाम है जन्नत।

जन्नत, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा, ईशा शिपा और पूजा परिहार। छत्रपति संभाजीनगर से राजीव साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। नूर महल मैसौर सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहानास, तलत जहानास, फरत जहानास, रिफत जहानास, नुजत जहानास, साजिया शाहीन नास और नाजिया नूरी नास। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरेडी नानाजी लामसे मीना से हमारे श्रोता हैं तेजस और हर्षिता। संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दीप शांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार के साथ हैं नरगिस खातून। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खांडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल डावर, जियाल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं संजय जोशी और पायल जोशी। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। बागपत से हैं ममता डिंगिया और कुणाल डिंगिया। बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीषा यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। अरुण काले से हमारे श्रोता हैं अतुल, गौतमी और दमदीना।

एयरपोर्ट रोड वंद्रा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्ची, ललिता खर्ची, गणेश खर्ची, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी।

करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी और समा अंसारी के साथ हैं अनीस अहमद केसरपुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय, अमित, अशोक, मधुकर, अमर और सुमेंद्रो। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे श्रोता हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, प्रीति पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौर सीतामढ़ी से हमारे श्रोता हैं अक्रम हुसैन, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और इन्हीं के साथ कलेर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए जहर इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज, जन जन के मन की सच्ची परवाज। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कयामत, इस फिल्म का गीत, आवाज होगी अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की। शब्द लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएंगे आपको, हाँ मैंने भी प्यार किया है, इस फिल्म से। इस गीत के लिए फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली के साथ हैं नगमानास मंसूरी। बटीडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। करणवीर हाउस भुजो कैचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, कुलदीप सेमू, एकम दमन और अभिजोत। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुजारिन अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन और दीपक मयंक मूड़त के साथ हैं चेतन नहाटा, दीक्षा और कुश मूड़त। सक्षम अजीत चहड़वाड़, श्रेणिक चहड़वाड़, ज्योति लता राज राम चहड़वाड़, ये हमारे श्रोता हैं चांदनी चौक सिंगाली महाराष्ट्र से। वारसी क्लब सिद्धौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता हैं रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, ललिता नारायण भाऊ खरसे, आराध्या खरसे और इनके परिवार के सभी साथी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, शोएब खान, सायमा खान, मुस्तफा खान, आफिया खान, शाहिद भाई और राहु भाई। चौलहदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले और इनके परिवार के सभी सदस्य। जादुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर। नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिद्दा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव और शाइना शर्मा के साथ हैं निवान शर्मा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। बेरेडी से राजवी सोनी, कंचन सोनी, गायत्री टामड़े, वैष्णवी टामड़े, चंचल, अर्जुन और धीरज। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए हाँ मैंने भी प्यार किया है, इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। शब्द लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। कार्यक्रम का ये गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकांक्षा के साथ। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनवाएंगे आपको कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने गांधी समाधि रोड।

रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और इनके परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहित चौहान, कल्पित चौहान और गर्वी। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। मोहल्ला मजार चांदमिया रामपुर से मोहम्मद रमजान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में ये गीत।

एक रिश्ता, इस फिल्म का गीत अभी हम आपको सुनवा रहे थे। गीत गाता चल संपन्न करने की अब आकांक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की

0: शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र

0: आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
2: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरल में दस्तक, केरलम कर्नाटक।

0: Then Boria climbs to world number 1 while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लैक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज किया है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंगास और विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरिकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में तशराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रुनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को ख़त्म कर दिया और इस खित्ते को तनाज़ों के एक मरकज से बदल कर मौके का मरकज बना दिया है। शुमाल मशरकी कौंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मनसूबाबंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही वो लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फरोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमनो कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरिश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मस्नूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी, गैर मुल्की तजारत और सेहत से मुतालिक सियाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कान तलाश करें। शुमाल मशरक खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज़्म के तहत मुत्तहिद हों कि एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी साज शामिल हैं। इस इजलास से मुतालिक बातचीत करते हुए मेज़बान वज़ीर आला कोनार्ड के सिंगमा ने कहा कि मरकजी दाखिला और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारतों की शुमाल मशरकी रियासतों के 8 वज़राए आला को हिदायत के मुताबिक सब मुश्तरका हदफ की हुसूलियाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि योगा भारत की जानिब से इंसानियत को एक ऐसा तोहफा है जिस पर वक्त की गर्द नहीं जमी। अहमदाबाद के एका अरीना में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा जहन, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करता है और एक ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा यकजहत

0: पर मबनी दुनिया की तरगीब देता है।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
0: वजीर आजम ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि अव्वलीन आलमी योगा चैंपियनशिप योगासन को एक आलमी खेल की शिनाख्त अता करेगी और नौजवानों के लिए वसी तर मौके फराहम करेगी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हर बड़ा खेल अपने साथ अपना जाम निजाम लेकर आता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद की एक एरिना ने 60 से ज्यादा मुल्कों के 400 शुरका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें अमेरिका, घाना, कीनिया और मलेशिया से आने वाले बैन अल-अक़वामी दस्ते शामिल हैं। मेजबान मुल्क भारत 122 मेंबरान पर मुश्तमिल मजबूत दस्ता उतार रहा है, जो उम्र के एतबार से 6 जुमरों में मुकाबला करेंगे। ये 6 जुमरे सब जूनियर से सीनियर्स मास्टर्स के जुमरे पर मुश्तमिल हैं। आलमी पैमाने पर पहली मरतबा इस खेल के लिए एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ताकि तमाम सकनात, तवाजुन और हरकत के फैसले में कतई शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ये चैंपियनशिप योग आसन के लिए एक बड़ी तब्दीली की अलामत है और इसे रूहानी खुशी के एक शोबे से बहुत बुलंद करके एक इंतहाई तकनीकी और मुकाबला जाती खेलों का मुकाबला बना देती है, जिसका मकसद ओलंपिक तक रिसाई हासिल करना है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कार्रवाई जाति कारकर्दगी को मुस्तहकम करने की गरज से फील्ड कमोडोर्स के लिए मालियाती हद में दुगने इजाफे को आज मंजूरी दे दी। उन्होंने तिब्बी और दीगर प्रोजेक्टों समेत दिफाई सर्विसेज के लिए मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज भी जारी की। वजारत दिफा ने कहा कि मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज इस साल की बजट जाति मुख्तस रकम के मुताबिक महसूल के जरिए 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की राह हमवार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल के मुतालिक जवाबित का एक मुसव्विदा जारी किया है, जिसमें उसने वाजह कर दिया है कि कोई भी अदालती फैसला मुकम्मल तौर पर AI पर मबनी तज्जियात या एल्गोरिदम पर मबनी फैसले साजी पर मबनी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में अवाम से इस माह की 20 तारीख तक उनके मशवरे तलब किए गए हैं। यह मुसव्विदा AI के तआवुन से अमल में आने वाले कई मामलों की इजाजत देता है, जैसे केस का मैनेजमेंट, समाअत की तारीख, वजूहात की फहरिस्तों की तैयारी, कानूनी तहकीक, दस्तावेजात की खुलासा साजी, तर्जुमा और रस्मुलखत की मुंतकली। अलबत्ता इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती निजाम से मुतालिक तमाम मामलात इंसानी अदालती कंट्रोल में ही रहेंगे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और सड़क आमोदरफ्त और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मारुति सुजुकी की जानिब से तैयार भारत की पहली फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली मुसाफिर गाड़ी का इफ्तिताह किया। फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली गाड़ियां इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से E20 से लेकर E100 की रेंज तक चल सकती हैं। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिर गाड़ी के जुमरे में फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी की शमूलियत महज किसी प्रोडक्ट का इफ्तिताह नहीं है, बल्कि ये मुल्क में तवानाई की काया पलट के सिलसिले में एक नए बाब का आगाज है। जनाब पुरी ने कहा कि फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इख्तियार करके इथेनॉल पर मबनी नकलो हरकत के असरात को खातिर खा हद तक बढ़ाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने इस इफ्तिताह को एक यादगार और पेशबीनी पर मबनी हुसूल याबी करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात का जिक्र किया कि यह संग मील वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साफ, पायदार और खुद कफील नकलो हरकत के तस्वुर से कतई मेल खाता है।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता

0: आवश्यकता थी और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजन है।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। यह करारदाद जंग को मुस्तरद करने के कामयाब मुजाहरे में चार रिपब्लिकन अराकीन के डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने के बाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से कामयाब रही। ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात को लगाम लगाने की गरज से ऐवान के जरिए यह चौथी कोशिश है जिसके लिए बकौल निगारों के कांग्रेस की मंजूरी का फुकदान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक का एक निजाम वजा किया है ताकि इम्तिहान के अमल की सालमियत को बेहतर बनाया जा सके और असल की जगह फर्जी फर्द के जरिए इम्तिहान देने की रोकथाम की जा सके। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िदा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इब्तदाई इम्तिहान 2026 के दौरान कामयाबी के साथ चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक के अमल को नाफिज किया। चेहरे की तस्दीक का प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाता है कि दरखास्त फॉर्म पुर करने के वक्त उम्मीदवार का जो फोटो अपलोड किया गया था वो उम्मीदवार वही है जो इम्तिहान देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ इम्तिहान देने पहुंचा है। एक भारतीय निजात दिल के इमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ग्याना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ग्याना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाकये में जख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने जख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और अहदेदारान को सभी जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाकये में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपये की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुनूब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माहे पुडुचेरी और क्राइकल में बहुत और बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश कोंकण गोवा लक्षद्वीप मध्य महाराष्ट्र जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम तेलंगाना उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में आज तेज बारिश हुई जिसके सबब गर्मी और हब्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है जबकि सिंगल जुमरे में PV सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जाबंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगास 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर 1 का अपना मकाम बरकरार रखा है जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI मशीन लर्निंग और ब्लॉक चैन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू

हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सबरस।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सब रस। कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं हरलीन कौर के स्वर में शब्द।

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर रात्रि के 9:59 हुए हैं। कुछ ही पलों में रात्रि के 10 बजेंगे। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की

0: समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: वी जस्ट हर्ड अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड चानन भेल। कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोग्राम शी नाउ प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा. She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया.

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अवन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

0: क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन।
1: नमस्कार।
0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं उड़ीसा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है

आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है, मन हृदयर जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा, जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकरों में छो अभिनय छोड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिकला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा

0: क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity, virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad. The Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Ghangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल प्रातःकाल 5:52 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल प्रातःकाल 5:52 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें